0: शुभ प्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। सुबह के 7 बज चुके हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है, जो कि दोपहर के 12 बजे तक निरंतर जारी रहेगी। आज शक संवत 1948 के अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। तदनुसार 8 अक्टूबर 2026 आज दिन गुरुवार है। आपके स्वास्थ्य और सफलता की शुभकामनाओं के साथ हम आज का प्रसारण शुरू करते हैं।
1: जीवन सौरभ।
2: पहाड़ी गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था। उसका नाम था आरव। उसकी एक ही इच्छा थी, अंधेरी रात में पूरे गांव को रोशन करना। लेकिन उसके पास सिर्फ एक छोटा सा मिट्टी का दिया था। एक दिन गांव में घना अंधेरा छा गया। आसपास कोई रोशनी नहीं थी। लोग डर गए, बच्चे रोने लगे। आरव ने अपने छोटे दिए को उठाया और बोला, अगर मेरे पास सिर्फ एक दिया है तो मैं उसी से शुरुआत करूंगा। वो गांव के रास्ते पर रखा हुआ पत्थर हटाकर बीच में अपना दिया रख देता है और उसे जला देता है। दिया छोटा था, रोशनी कम थी। थोड़ी ही देर में दूसरे लोग भी बाहर निकले। किसी ने अपनी लालटेन जलाई, किसी ने अपनी मोमबत्ती और किसी ने अपनी टॉर्च, और देखते ही देखते पूरा गाँव एक छोटी सी रोशनी से चमक उठा। तभी गाँव के मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी दुनिया को रोशन करने के लिए एक छोटी हिम्मत की चिंगारी ही काफी होती है। आरव समझ गया, बड़ा बनने के लिए बड़ी चीजें नहीं चाहिए, बस छोटी सी शुरुआत और एक बड़ा दिल चाहिए होता है। इस कहानी का यही संदेश है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसी से शुरुआत करें। छोटी कोशिशें बड़े बदलाव लाती हैं। आपके पास जो भी है वही पर्याप्त है। शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। पहला कदम छोटा होता है पर मंजिलें उसी से बनती हैं। तो चलिए आज आप भी अपनी जिंदगी में एक छोटा सा दिया जलाइए। कोई

0: चार, नई कोशिश या बस किसी चेहरे पर मुस्कान लाने की चाह। अंधेरे रास्ते रोशन हो, कोई ऐसी मशाल जला जो सिर्फ उजाला ना करे, हौसलों को भी दिशा दिखा।
1: जीवन सौरभ।
2: मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है और अब जानकारी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हमारा अगला कार्यक्रम होगा वैदिक ऋचाओं पर आधारित अक्षय निधि। 7:15 पर सुने भक्ति संगीत का कार्यक्रम। महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित वतन का राग कार्यक्रम आज केंद्रित होगा हिंदी के साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर। सुबह 8:30 पर बाल सभा कार्यक्रम का विषय होगा गणेश उत्सव से हमने क्या सीखा। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी मनीषा चतुर्वेदी। सुबह 9:00 हमारी सेना हमारा गर्व कार्यक्रम का विषय होगा भारतीय सेना में उच्च अधिकारी भर्ती प्रक्रिया की जानकारी। इस विषय पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा से अदिति गौर की बातचीत आप सुन सकते हैं। सुबह 9:30 पर विश्व पशु कल्याण दिवस पर कार्यक्रम जानकारी देंगे डॉक्टर अंकुर नारद और इनसे बातचीत करेंगी मनीषा चतुर्वेदी। सुबह 10:00 देश के संस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत अर्थव्यवस्था का प्रहरी भारतीय रिजर्व बैंक, इस विषय पर कार्यक्रम सुनेंगे जिसको स्वर देंगे संदीप शर्मा और भगवती सक्सेना। सुबह 10:30 पर आजाद हिंद कार्यक्रम आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जीवन पर आधारित होगा। सुबह 11:00 देशभक्ति गीत और 11:30 पर कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो ये थी जानकारी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। 90.8 पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं वैदिक ऋचाओं पर आधारित कार्यक्रम अक्षय निधि।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 36 से वाचन। ऋषि हैं ग्रत्समत एवं भार्गव शौनक। देवता हैं इंद्र एवं मधु, मरुत एवं माधव, त्वष्टा एवं शुक्र, अग्नि एवं शुचि, इंद्र एवं नभ, मित्रा वरुण एवं नभस्य, और छंद है जगति।
1: तुभ्वं हिन्वानो वसिष्ठ गा अपोधु क्षंसीम विभिरद्रिभिर्नरः पिबेन्द्र स्वाहा प्रहुतं वशट्कृतं होत्रादा सोमं प्रथमो य ईशिसे। हे इंद्रदेव, इस सोम रस में गौ दुग्ध तथा जल मिश्रित है। याज्ञिको द्वारा पत्थर से कूट कर निकाले गए इस सोम रस को ऊन की छननी से शोधित किया जाता है। हे इंद्रदेव, आप समस्त संसार के शासक हैं, अतः याजकों द्वारा वशटकार पूर्वक स्वाहा के साथ समर्पित किए गए सोम को यज्ञ में आकर सबसे पहले आप पान करें। यज्ञैः सम्मिश्लाः प्रशतिभिर् ऋष्टिभिर् यामच्छ्रुभासो अञ्जिषु प्रिया उत आसद्या बहिर् भरतस्य सूनवः पोत्रादा सोमं पिबता दिवो नरः। यज्ञीय कार्य में सहायक, भूमि को सिंचित करने वाले, शस्त्रों से सुशोभित, आभूषण प्रेमी, भरण पोषण में समर्थ, देवपुत्र तथा नेतृत्व प्रदान करने वाले हे मरुद्गणों, आप यज्ञ में विराजमान होकर पवित्र सोमरस का पान करें। अमेवह नह सुहवा आही गंतन नी बरहिषि सदतना रणिष्टन अथा मंदस्व जुजुषाणो अंध सस्त्वष्टर देवेभिर् जनिभिः सुमद्गणः। हे यशस्वी मरुतो, आप हमारे पास आए और कुश आसन में विराजमान होकर सुशोभित हो। हे त्वष्टा देव, आप देवगणों तथा दैवी शक्तियों के सोमरस का पान करके हर्षित हो। आवक्षि देवाम इह विप्र यक्षी चोषन होतरनी सदा योनिषु त्रिषु प्रतिवीहि प्रस्थितं सोम्यं मधु पिबाग्निर् धात्तव भागस्य त्रिपणुहि। हे मेधावी अग्निदेव, हमारे इस यज्ञ में देवगणों को सत्कार पूर्वक बुलाएं। हे होता अग्निदेव, हमारे यज्ञ की कामना से आप तीनों लोकों में प्रतिष्ठित हो। शोधित सोमरस को स्वीकार करके इस यज्ञ में सोमपान करें। समर्पित किए गए भाग से आप तृप्त हो। एषस्य ते तन्वो नृम्णवर्धनः सह ओजः प्रदिवि बाह्वोर्हितः तुभ्यं सुतो मघवन्तुभ्य माभृतस्वमस्य ब्राह्मणादा त्रिपत्पिब। हे इंद्रदेव, यह सोमरस आपके शरीर में शक्ति की वृद्धि करने वाला है। इसी सोम से आपकी भुजाएं बलशाली हैं तथा आप तेजस्वी एवं ओजस्वी हैं। हे इंद्रदेव, आपके निमित्त ही यह सोमरस लाया गया है तथा शोधित किया गया है। ज्ञानी जनों द्वारा प्रदान किए गए सोमरस का पान करके आप तृप्त हों। जुषेथाम यज्ञम बोधतम हवस्य मे सत्तो होता निविदह पूर्व्या अनु अच्छा राजाना नम एत्यावृतम प्रशास्त्रादा पिबतम सोम्यम मधु। हे मित्रा वरुण, आप हमारे यज्ञ में आए। होता गण उत्तम स्तोत्रों से स्तुति करते हैं, अतः हमारे आवाहन को सुनकर यज्ञ में बैठकर सुशोभित हो। हे देवो, याजकों द्वारा शोधित यह सोमरस दुग्ध मिश्रित है, अतः हमारे इस यज्ञ में आकर इस सोमरस का पान करें।
0: अभी आप सुन रहे थे ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 36 से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्बू त्रिपाठी।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम। जीवन में उदास रहने के अनेक कारणों के बीच खुशी की भी हजार वजहें होती है, जैसे तितलियां, फूल, पहाड़, चांद या कोई खिलखिलाता बच्चा। असल में खुश रहना हम चुनते हैं और उदास रहना हम स्वीकारते हैं।

भावनाएं हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन उन्हें हमारे फैसलों का मालिक ना बनाएं। गुस्सा, डर, निराशा कुछ समय के लिए आते हैं, लेकिन यदि हम उसी पल निर्णय लेंगे तो बाद में पछताना पड़ता है। मन को शांत होने का समय दें, भावनाओं को समझना सीखें तो परिस्थितियां बेहतर संभल पाती हैं।

जब लगे कि अब और नहीं हो सकता, उसी समय एक कदम और बढ़ाने का प्रयास करें। बस यही अतिरिक्त प्रयास लोगों को भीड़ से अलग बनाते हैं। असाधारण सफलता चमत्कार से नहीं, हर दिन किए अतिरिक्त प्रयास से मिलती है।

अधिकांश लोग अपनी खुशी की तुलना उस जगह से करते हैं जहां वे अभी तक नहीं पहुंचे हैं, इसीलिए उपलब्धियां भी उन्हें अधूरी लगती है। लेकिन नजर यदि इस बात पर जाए कि कुछ समय पहले हम कहां थे और आज कहां पहुंच चुके हैं, तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। हर छोटा कदम प्रगति है।

जैसा सोचेंगे जिंदगी वैसी ही हो जाएगी। जब हम इस अवधारणा को अपनाते हैं और अपने मन के प्रति सचेत हो जाते हैं, तो हम चुन सकते हैं कि कौन से विचार हमारे योग्य हैं और बाकी को अस्वीकार कर सकते हैं। जब हम एक सफल जीवन बनाने की दिशा में काम करते हैं, तो यह मानसिक युक्ति सबसे महत्वपूर्ण है।

सफल होने के लिए सिर्फ सपने देखने से ही कुछ हासिल नहीं होता, असफलता से सीखकर काम करने से ही सफलता मिलती है।

साहसी व्यक्ति में क्षमा करने का गुण होता है। विद्वान व्यक्ति में दूसरों की गलतियां नजरअंदाज करने का गुण होता है, जबकि कमजोर व्यक्ति बदला लेने की भावना रखते हैं।

जब तक समस्याओं के हल नहीं खोजेंगे तब तक हल मिलेगा ही नहीं। लक्ष्य कभी भी बिना काम किए पूरा नहीं हो सकता। हर स्थिति में काम करना और आगे बढ़ते रहना जरूरी है।

0: नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित हमारा कार्यक्रम वतन का राग। आज की कड़ी में हम हिंदी के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। सन 1909, उन दिनों नवाब राय के नाम से उर्दू में एक कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ, सोजे वतन, अर्थात देश का दर्द। 5 कहानियों का ये संग्रह देशभक्ति की भावना से भरा हुआ था। उन दिनों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देशभक्ति की बात करना जुर्म था। इस संग्रह की एक कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन का आखिरी वाक्य था, खून का वो आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। ऐसे वाक्य लिखने वाले को अंग्रेज सरकार कहां बर्दाश्त कर सकती थी। खुफिया पुलिस ने खोज करना शुरू किया और पता लगाया कि नवाब राय नामक किसी लेखक ने ये पुस्तक लिखी है। लेखक की खोज हुई और नवाब राय को हमीरपुर के कलेक्टर ने तहसील कुलपहाड़ बुलवाया और कहा, खैर मनाओ कि

वाले प्रेमचंद 15-16 साल की आयु से ही गृहस्थी की उलझनों में फंस गए। दो सौतेले भाई, सौतेली माँ और अपनी पत्नी के परिवार को पालना उनके लिए कठिन कार्य हो गया था। वे गांव में रहते, ट्यूशन करते और शहर पढ़ने जाते। 5 मील वापस आकर रात को कुप्पी जलाकर फिर पढ़ने बैठते। कॉलेज में भर्ती होने के लिए उन्हें बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वे बनारस शहर में रहने लगे। 5 रुपए की ट्यूशन की और एक वकील के यहाँ अस्तबल के ऊपर कच्ची कोठरी में रहने लगे। उनकी दिनचर्या थी खुद खाना पकाना और दिन भर उपन्यास पढ़ना। ये उपन्यास प्रेमचंद के दुखी जीवन के साक्षी थे। वे मुसीबतों में उन्हें ढाढ़स बंधाते थे। कुछ देर के लिए जीवन की कठिनाइयों को वो भूल जाते थे। ये 19वीं सदी का आखिरी साल था। इस बीच उनकी मुलाकात एक मामूली स्कूल के हेडमास्टर से हो गई, जिसने उन्हें 18 रुपए महीने पर अपने यहाँ मास्टर रख लिया। ये प्रेमचंद का 20वीं सदी और अपने नए जीवन में प्रवेश था।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। सन 1909, उन दिनों नवाब राय के नाम से उर्दू में एक कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ, सोजे वतन, अर्थात देश का दर्द। 5 कहानियों का ये संग्रह देशभक्ति की भावना से भरा हुआ था। उन दिनों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देशभक्ति की बात करना जुर्म था। इस संग्रह की एक कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन का आखिरी वाक्य था, खून का वो आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की

सबसे अनमोल चीज है। ऐसे वाक्य लिखने वाले को अंग्रेज सरकार कहां बर्दाश्त कर सकती थी। खुफिया पुलिस ने खोज करना शुरू किया और पता लगाया कि नवाब राय नामक किसी लेखक ने यह पुस्तक लिखी है। लेखक की खोज हुई और नवाब राय को हमीरपुर के कलेक्टर ने तहसील कुलपहाड़ बुलवाया और कहा, खैर मनाओ कि अंग्रेजी अमलदारी में हो, मुगल साम्राज्य का जमाना होता तो हाथ काट लिए जाते। नवाब राय उर्फ मुंशी जी खून के आंसू पीकर रह गए। सरकार ने किताब की सारी प्रतियां बुलवा ली और उन्हें आग के हवाले कर दिया। दुखी मुंशी जी ने अपना नाम नवाब राय से बदलकर प्रेमचंद कर लिया, वही नाम जिससे वो आज पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। मानव मन के अप्रतिम चितेरे मुंशी प्रेमचंद का जन्म बनारस के पास लम्ही नामक गांव में सन 1880 में हुआ था। बचपन में ही माँ बाप को खोने वाले प्रेमचंद 15-16 साल की आयु से ही गृहस्थी की उलझनों में फंस गए। दो सौतेले भाई, सौतेली माँ और अपनी पत्नी के परिवार को पालना उनके लिए कठिन कार्य हो गया था। वे गांव में रहते, ट्यूशन करते और शहर पढ़ने जाते। 5 मील वापस आकर रात को कुप्पी जलाकर फिर पढ़ने बैठते। कॉलेज में भर्ती होने के लिए उन्हें बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वे बनारस शहर में रहने लगे। 5 रुपए की ट्यूशन की और एक वकील के यहाँ अस्तबल के ऊपर कच्ची कोठरी में रहने लगे। उनकी दिनचर्या थी खुद खाना पकाना और दिन भर उपन्यास पढ़ना। ये उपन्यास प्रेमचंद के दुखी जीवन के साक्षी थे। वे मुसीबतों में उन्हें ढाढ़स बंधाते थे। कुछ देर के लिए जीवन की कठिनाइयों को वो भूल जाते थे। ये 19वीं सदी का आखिरी साल था। इस बीच उनकी मुलाकात एक मामूली स्कूल के हेडमास्टर से हो गई, जिसने उन्हें 18 रुपए महीने पर अपने यहाँ मास्टर रख लिया। ये प्रेमचंद का 20वीं सदी और अपने नए जीवन में प्रवेश था।

अपनी बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रेमचंद ने गोरखपुर, कानपुर, बनारस आदि कई जगह पर रहकर अध्यापन का कार्य किया। इस दौरान उन्हें पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गरीब जनता के दुख दर्द का गहरा अनुभव हुआ। महोबा में वे 6 साल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सब इंस्पेक्टर की हैसियत से रहे। इस दौरान स्कूलों का दौरा करते हुए वे अपने उपन्यास और कहानियों के पात्रों को अपनी स्मृति में सहेजते रहे। उनका एक उपन्यास 1901 में प्रकाशित हुआ और दूसरा 1904 में। प्रेमचंद जी ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ कहानियों का अनुवाद भी किया और फिर सन 1907 में कहानी लिखना आरंभ किया। तब तक पहले विश्व युद्ध का वातावरण बनने लगा था। प्रेमचंद समझ गए थे कि इस युद्ध की तैयारियों का हिंदुस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। युद्धकाल में ही उन्होंने अपना महान उपन्यास सेवा सदन लिखा। सेवा सदन की मुख्य समस्या भारतीय नारी की पराधीनता है। इसमें प्रेमचंद ने किसी तरह तमाम पुरानी सांस्कृतिक परंपराओं को तोड़ते हुए वर्तमान समाज में नारी की पराधीनता को स्पष्ट रूप से चित्रित किया। ये उपन्यास उन्होंने पहले उर्दू में लिखा था, बाद में इसे हिंदी में छपवाया। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उन्होंने प्रेमाश्रम पूरा किया, जिसके बारे में आलोचकों ने लिखा कि प्रेमचंद का हृदय संकुचित राष्ट्रवाद से ऊपर था। वो जानते थे कि इंसाफ और नई जिंदगी के लिए आम जनता जो लड़ाई लड़ रही है, हिंदुस्तान का स्वाधीनता आंदोलन उसी का हिस्सा है। वो हिंदुस्तान के लोगों में एक नया भाव पैदा होते हुए देख रहे थे। दुनिया के तमाम मेहनत करने वाले लोग भाई भाई हैं। प्रेमाश्रम में प्रेमचंद हमें ठेठ किसानों के बीच ले जाते हैं। उनके अलाव, उनके खेत और ताल, उनके अखाड़े और लावणी ख्याल, उनके अंधविश्वास और नए जीवन के कसमसाते हुए भावांकुर, प्रेमाश्रम में ये सब कुछ सजीव है। ये उपन्यास असहयोग आंदोलन के बाद छपा, किंतु फिर भी इसमें प्रेमचंद का गंभीर चिंतन, उनके ऊंचे विचार, एक नई मनुष्यता, एक नई नैतिकता का चित्रण दिखाई देता है, जो हिंदुस्तान के किसानों में किरण की तरह फूट रहे थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन छिड़ने पर प्रेमचंद जी ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। वे अध्यापन के साथ पत्र पत्रिका में संपादक के रूप में काम करने लगे। इस समय सन 1929-30 में वे माधुरी का संपादन करते थे, जिसने हिंदी की अपूर्व सेवा की। किंतु राष्ट्रीय आंदोलन का साथ देने वाले नए जनवादी विचारों की समर्थक पत्रिका की खोज में उन्होंने सन 1930 में हंस का प्रकाशन आरंभ किया। हंस पत्रिका का जन्म स्वाधीनता आंदोलन की प्रगति के साथ हुआ, इसलिए अंग्रेज हुकूमत की कोप दृष्टि इस पर पड़ी, क्योंकि प्रेमचंद ने इसे स्वाधीनता संग्राम का सबल सैनिक बना दिया था।

0: प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखीं और उनकी कहानियों में आम आदमी का दर्द साफ देखा जा सकता है। उनके पात्र समाज के मध्यम वर्ग, गरीब तबके के संघर्षशील पात्र हैं और वो राष्ट्रवाद में अपना भविष्य देखते हैं। उनकी कहानी समर यात्रा में एक बूढ़ी महिला नोहरी स्वाधीनता सेनानियों के स्वागत में उल्लास प्रकट करती है। अलौकिक आनंद की रेले में वो अपना सारा दुख संताप भूल जाती है। लोग उसे रोकते हैं, पर नोहरी कहती है,
1: क्या तुम आज भी बूढ़े हो? मेरा बुढ़ापा तो जैसे भाग गया। इन वीरों को देखकर भी तुम्हारी छाती नहीं फूलती? हमारा दुख दर्द हरने के लिए ही तो इन्होंने ये परंठाना है। इन्हीं हाथों से हाकिमों की बेगार बजाई है। अब तो जोर जुलुम का नाश होगा। हम और तुम क्या अभी बूढ़े होने जोग थे? हमें तो पेट की आग ने जलाया है। क्या किसी ने 6 महीने से पेट भर रोटी खाई है? धन है महात्मा और उनके चेले भी, कि दीनों का दुख समझते हैं और उनके उद्धार का जतन करते हैं।
0: प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अधिवेशन के दौरान उन्होंने कहा था कि जब तक साहित्य का काम केवल मन बहलाव का सामान जुटाना, केवल लोरियां गाकर सुनाना, केवल आंसू बहाकर जी हल्का करना था, तब तक इसके लिए कार्य की आवश्यकता नहीं थी। हम साहित्य को केवल मनोरंजन और विलासिता की वस्तु नहीं समझते हैं। भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृष्टि की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो जो हम में गति और बेचैनी पैदा करे। सुलाए नहीं, क्योंकि अब और ज्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। प्रेमचंद ने अपने उपन्यास रंगभूमि में दिखलाया कि जनता अब भी लड़ रही है, वो हारी नहीं है, वो जीतेगी। गोदान उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसमें उन्होंने पढ़े लिखे नौजवानों और किसानों की एकता की तरफ संकेत किया और किसानों के महाजनी शोषण का चित्र खींचा। जबकि कर्मभूमि में खेत मजदूरों की भूमि समस्या पर उन्होंने अपनी लेखनी केंद्रित की और लगान बंदी की लड़ाई को मुख्य लड़ाई बताया। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में जो संघर्ष स्वाधीनता आंदोलन के रूप में दिखाए, वो सब हमारे सामने आए। अपने लाहौर के भाषण में बुद्धिजीवियों से उन्होंने कहा, इंटेलिजेंसिया में जो कुछ भी शक्ति और प्रभाव है वो जनता से ही आता है। जनता से साहित्यकार ताकत पाता है, इसलिए अपनी ताकत पहचान कर उसे जातीय पुनर्जीवन के काम में आगे बढ़ना चाहिए। साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाली चीज नहीं है, उसके आगे आगे चलने वाला एडवांस गार्ड है। वो उस विद्रोह का नाम है जो मनुष्य के हृदय में अन्याय, अनीति और कुरीति से होता है। राष्ट्र का बल वो अपनी राष्ट्रभाषा में ही देखते थे, इसीलिए वे निडर होकर जनता के पक्ष का समर्थन करते थे। जीवन का यथार्थ उनके चित्रण का मूल मंत्र है। वे हमेशा कहते रहे कि साहित्य का आधार जीवन है। वे अपनी लेखनी से जीवन के सभी पहलुओं को छूते रहे। 8 अक्टूबर सन 1936 को अपनी कलम से जन जन को जागृत करने वाला ये महान रचनाकार हमसे विदा जरूर हुआ, लेकिन उसके शब्दों का उजास आने वाली पीढ़ियों को राह दिखाता रहेगा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। आज की कड़ी हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर केंद्रित थी। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। हमारा अगला कार्यक्रम है बच्चों के लिए उनका मनपसंद कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम में आज का विषय है गणेश उत्सव में हमने क्या सीखा।
1: 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय है गणेश उत्सव से हमने क्या सीखा।
2: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
1: बच्चों नमस्ते, मैं हूँ आपकी मनीषा दीदी। हाजिर हूँ लेकर आपका एक बहुत ही प्यारा सा कार्यक्रम जिसे आप सब प्यार से बाल सभा कहते हैं। आप सब अपने घर में बैठे हैं, मैं स्टूडियो में बैठकर आपसे बातें कर रही हूँ। हर बार कोई ना कोई बातों का ऐसा धागा शुरू होता है कि हम बातों से पूरा एक प्रेम रूपी चादर बुन देते हैं। तो आज हम आपसे जानते हैं क्या बात करने वाले हैं। हम आपसे बात करने वाले हैं, अभी अभी गणेश उत्सव हो कर चुका है और उससे हमने, आपने, हम सब ने क्या सीखा। क्योंकि बच्चों जब भी कोई उत्सव, जब भी कोई त्योहार आता है, हमारे लिए क्या क्या खास होता है उसमें। कोई बच्चा सोच रहा होगा मिठाई खास होती है, कोई बच्चा सोच रहा होगा नए कपड़े खास होते हैं, किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा स्कूल से छुट्टी मिल जाती है, किसी बच्चे के दिमाग में चल रहा होगा अरे त्योहारों का तो पूरा सीजन ही आने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं बच्चों। हमारा देश एक बहुत प्यारा, बहुत सुंदर और उल्लास और उत्साह से भरा पूरा देश है। इसीलिए तो हम कितने सारे उत्सवों को एक साथ मनाते हैं। अभी गणेश उत्सव जब जाकर चुका है, हम श्री गणेश का विसर्जन कर चुके हैं, तब ये बहुत ज़रूरी बात है कि क्या सीखा आखिर हमने इस उत्सव से, क्या हमारे दिमाग में आया, आपने क्या खास किया। जब आप श्री गणेश की स्थापना हुई तब से लेकर उनके विसर्जन तक ऐसी क्या खास बात थी जो आपको लगता है कि उसका जिक्र आज होना चाहिए। देखिए मुझे तो बहुत सारे बच्चे मिले हैं तो मैं तो आज बहुत सारी बातें आपसे करने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये बता दूं कि कोई कहानी के पात्र की बात नहीं करूंगी मैं आज। आज मैं कोई किताब भी नहीं खोलूंगी, किसी नए पन्ने को देखकर कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी। आज हम बात करेंगे मिट्टी की और हमारी कल्पना की। क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने सभी से अपील की थी कि हम गणेश उत्सव में प्रकृति का बहुत ख्याल रखें। और वो क्यों की थी पता है आपको बच्चों? वो इसलिए की थी ताकि हम मिट्टी से जैसा हमारे मन में है वैसा प्रभु श्री गणेश का रूप गढ़ें। हाँ, और आकार से बड़ी आस्था होती है। तो उस खास बात में ये बात थी बच्चों कि कई लोग ये महसूस करते हैं कि जब हम स्वयं अपने आराध्य की मूर्ति बनाते हैं तो उसका रूप ही अलग होता है। आपको पता है यहाँ एक जगह है भोपाल में नदी का घर, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे रोज आते थे कार्यशाला में भाग लेने और सीखने कि कैसे मूर्ति बनाई जाती है। और जब वो बच्चे आते थे, क्योंकि मैं रोज जाती थी उस कार्यशाला में बच्चों, क्योंकि मुझे बच्चों से मिलना, बच्चों से बातें करना बहुत पसंद है। आप यकीन करिए बच्चों, पहले दिन आकर कुछ बच्चों ने सीखा और फिर दूसरे दिन से उन्होंने मिट्टी के गोले लेकर नीचे अखबार रख कर क्या आकार देना शुरू किया है। मैं तो देखकर दंग रह गई। मतलब इतने सुंदर सुंदर आकार बनाए उन्होंने, जो जो उनकी कल्पना थी वो सब कुछ उन्होंने मिट्टी में गढ़ने की कोशिश की। आपको बताएं, एक बच्चे ने तो एक बहुत ही प्यारी सी पहले मूर्ति बनाई और उसके बगल में एक छोटा सा चौकोर मिट्टी से लेकर बना दिया। तो मैंने कहा ये क्या है? बोले ये दीदी मेरा मोबाइल है। मैंने कहा मोबाइल है मतलब? मैंने कहा ये यहाँ क्यों बनाया? तो बोला कि मैंने सोच लिया है दीदी अब से मैं मम्मी का मोबाइल नहीं छूऊंगा। मुझे इस कार्यशाला में आकर इतना मज़ा आ रहा है कि मैंने ये मोबाइल भी अर्पण कर दिया है प्रभु को, और अब से मैं मोबाइल कभी नहीं छूऊंगा। मुझे इतना अच्छा लगा कि जब बच्चे अपनी कल्पनाओं में जाते हैं ना, तब वो क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या चलता है, आप उसका पीछा तो छोड़िए, आप उसको सोच भी नहीं सकते। कितनी बड़ी बात है बच्चों। आप कभी ऐसे अपनी कल्पनाओं में गए हैं? आपने कभी मिट्टी को हाथ में लेकर ऐसे अपने आराध्य की मूर्ति गढ़ी है? आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि गणेश उत्सव बीत चुका है, अब हम कैसे मूर्ति बनाएं। नहीं, आप अभी भी जिसकी चाहे उसकी मूर्ति या कोई आकार देकर देखिए बच्चों, बहुत अच्छा लगता है। और ये संदेश सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं था कि हमें अपने आराध्य की मूर्ति मिट्टी से बनानी है। बहुत अच्छी बात थी कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ये संदेश मिल चुका है कि हमें अपनी प्रकृति का ख्याल रखना है। हमें POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति को नहीं स्थापित करना है, क्योंकि हमारे जलाशय, हमारे तालाब, हमारी नदियाँ, हमारी प्रकृति कितनी खूबसूरत है, और अगर हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे बच्चों, तो भला कौन रखेगा? आपको पता है वहाँ कोई सांचा नहीं था बच्चों के पास। किसी के गणेश जी मोटे बन रहे थे, किसी के छोटे से बन रहे थे, किसी का एक कान थोड़ा सा बड़ा बन गया तो उसने फिर से मिट्टी ली और उसको थोड़ा सही करके हाथ से आकार देकर छोटा किया। एक बच्चा अपने साथ बहुत सारे कुछ लेकर आया था, छोटी सी सुई, छोटी सी एक पेंसिल, एक छोटा सा कटर। मैंने पूछा, तुम इतनी सारी चीज़ें मूर्ति बनाने के लिए क्यों लेकर आए हो? तब उसने बोला कि मैं इस पेंसिल से थोड़ा सा, जब मिट्टी गीली रहेगी ना दीदी, तो मैं गणेश जी को धोती पहनाऊंगा और इसी से उसका जनेऊ भी बनाऊंगा। मुझे लगा कितनी अच्छी बात है। मतलब जब आप पहली सीढ़ी चढ़ गए हैं, आपको आकार देना आ गया है, तब आप उसमें परफेक्शन लाने की कोशिश कर रहे हैं, तब आप सोच रहे हैं कि अब चलो अब मुकुट भी खुद बनाते हैं और फिर मुकुट को सजाते भी हैं। मतलब जब भी आप कोई भी काम जिसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, जिसमें थोड़ी सी कल्पनाशीलता लगती है और थोड़ी सी आपकी एकाग्रता लगती है बच्चों, वो हर काम कमाल का काम होता है। तो मैंने तो इस गणेश उत्सव से, सच बताऊं बच्चों, सबसे ज्यादा बच्चों से ही सीखा। अब बात आई कि भाई हमने मिट्टी की मूर्ति अपने अपने हिसाब से गढ़ी है, अब आप क्या करेंगे, अब भाई स्थापना कैसे करें? तो स्थापना के लिए बच्चों ने बड़े सुंदर सुंदर से कपड़े, मैंने देखा, जोड़ जोड़ के और फिर उनसे एक बहुत सुंदर चादर बनाई। कोई बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ जाकर बहुत खूबसूरत सा गणेश जी के लिए आसन लेकर आया, कोई चौकी लेकर आया, किसी ने उनको बहुत प्यार से अपने घर के बीचों बीच बिठाया, किसी ने पूरे पीछे लाइट लगा दी, किसी ने कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत सुंदर रखा, किसी ने केले के बड़े बड़े पत्तों को पीछे घर जैसा सजाया और फिर साहब ने बहुत छोटे छोटे से खिलौने भी रखे। मतलब मैं जिस बच्चे के घर गई ना बच्चों, सब का श्रृंगार एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। और सबसे बड़ी बात इनमें एक और थी कि कोई बच्चा, जितने दिन गणेश उत्सव चला उस दौरान कोई बच्चा मोबाइल की, टीवी देखने की जिद नहीं कर रहा था। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी। तब मुझे एक और बात दिमाग में आई बच्चों कि ये सब जिद हम तब करते हैं, स्क्रीन की जरूरत हमें तब पड़ती है बच्चों, जब हम सच मायनों में खाली होते हैं। खाली सिर्फ इस बात से नहीं कि हमारे पास करने को कुछ नहीं है, खाली इस बात से कि हमारे दिमाग में भी कोई आइडिया आता नहीं है, और आ जाए तो उसे हम आगे बढ़ाते नहीं हैं, क्योंकि लेटे लेटे अपनी छत को ताकते ताकते ढेर सारे आइडियाज आना और उनका वहीं पे खत्म हो जाना, ये बहुत खराब बात है बच्चों। आपको पता है आजकल मैं बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ, लेटे लेटे सोचते रहते हैं कल से हम ये करेंगे, परसों से हम वो करेंगे, लेकिन कभी कल आता ही नहीं। और जब बच्चों कल ही नहीं आएगा तो परसों कहाँ से आएगा? ऐसे ही आप सपने देखते रह जाओगे ना बिस्तर पे लेटे लेटे। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी, बहुरी करे को कब। तो हमेशा याद रखिए कि कल कभी नहीं आता। आपको जो करना है, जैसे करना है, उसकी एक आदत डालिए। और आपको एक और बात बताऊं कि आज मेरे एक मित्र हैं बहुत अच्छे, वो मुझसे कह रहे थे कि हम जब बात करते हैं ना बच्चों को कि मोटिवेशन मोटिवेशन, तो कभी कभी हमें ये भी सोचना चाहिए कि मोटिवेशन ही सब कुछ नहीं होता, हमारी आदत बहुत बड़ी चीज़ होती है। उन्होंने तो मजाक मजाक में एक बहुत ही अच्छी बात कह दी मुझसे। उन्होंने कहा मोटिवेशन को आप ऐसा समझ लो मोटी बेसन की पकौड़ी, बस एकदम से एक झटके में खाई और फिर उसको हम भूल गए। लेकिन अगर हमने किसी चीज को करने की आदत डाली है ना बच्चों, तो वो काम फिर जरूर होता है। इसलिए लेटे लेटे ढेर सारे आइडियाज में मत जाइए, बहुत डीप थिंकर मत बनिए, पहले करिए, अपने शरीर को चलायमान बनाइए, है ना। एक जगह बैठे तो बैठ के रह गए। याद आ रहा है आपको गणेशोत्सव कितना डांस कर रहे थे आप कॉलोनी में, मोहल्ले में, जहाँ चौकी पर बड़े से गणेश जी विराजित थे, आप कितना आनंद ले रहे थे। किसी बच्चे ने फैंसी ड्रेस में भाग लिया था, किसी बच्चे ने ड्राइंग में भाग लिया था, कोई बच्चा घर से मोदक भी बना के लाया था। हाँ, ऐसे मोदक जिसमें आपको गैस या आग जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जो आपको बिना कुछ जलाए दूध और मावा इन सब से ही बन गया। तो बच्चों ने मम्मियों की बहुत मदद की उस दौरान। तो बस मैं भी यही चाहती हूँ बच्चों कि आप लोग कुछ ना कुछ करते रहिए, क्योंकि जब हम काम करते हैं तब हम बहुत अच्छे बच्चे बनते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि एक स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो क्यों ना हम लेटे लेटे लेटे लेटे ये सोचते रहें कि हमारी जो शरीर की मशीनरी है उसे चलाएंगे भी नहीं और हमारे मन का इंजन दौड़ाते रहेंगे, नहीं वो भी ठप हो जाएगा बच्चों। अपना शरीर भी चलाइए, है ना। अब मिट्टी से हमने इतना कुछ बनाया, लेकिन मिट्टी ने हमें क्या सिखाया? मिट्टी ने हमें ये सिखाया कि गलती से डरना नहीं है। एक बार कोई शेप बिगड़ गया, आप फिर से मिट्टी को मसल के दोबारा आप बना लीजिए। मिट्टी हमें ये सिखाती है कि अपने हाथों से हमें कुछ नया बनाना है। और शायद बच्चों सबसे सुंदर बात ये है कि जब बच्चे अपने हाथों से श्री गणेश बनाते हैं तो वो सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बनाते, वो अपनी कल्पना को आकार देते हैं। आपने देखा है जब बच्चे मूर्ति बना रहे थे, तो हो सकता है आप जो बच्चे सुन रहे हैं उनमें से भी कुछ बच्चे वहाँ पहुँचे हों, तो बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे कि किसी ने सूंड सामने उठा दी, किसी ने साइड में कर दी, और सबके भाव एक ही हैं, और भाव है श्रद्धा का, भाव है आस्था का, भाव है विश्वास का। और धीरे धीरे जो भाव आप सब में रोपित हो गया अनजाने में, वो ये है कि हमने प्रकृति से मिट्टी ली, अपने हाथों से उसको आकार दिया, अपने घर में आस्था के साथ स्थापना की, खूब उसके सामने मिट्टी के ही दीपक जलाए, फूल चढ़ाए, और फिर मिट्टी को मिट्टी में ही विलय कर दिया। है ना कितनी अच्छी बात। और धीरे धीरे पानी में घुलती हुई मिट्टी आपको ये सिखा गई कि जीवन में एक सार होना कितना जरूरी है, है ना। कितना कुछ सीखा ना हमने इस मिट्टी से। जब मिट्टी पानी में घुलती है तो आप देखते हो पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, फिर धीरे धीरे धीरे धीरे भूरा होने लगता है, है ना। और ये प्रकृति से जो हमें दोनों चीजें मिली हैं, जल और मिट्टी, ये वापस मिट्टी में ही चली गई, यानी प्रकृति को हमने वैसे का वैसा ही वापस लौटा दिया। इस पूरे चक्र में कहीं हमने प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो बस ये खूबसूरत सी बात थी जो मुझे आज आपसे करनी थी, बहुत मन कर रहा था मेरा।

0: एक और बहुत अच्छी सीख जो मुझे लगी वो ये कि बच्चों ने एक जगह गणेशोत्सव में एक बहुत अच्छी सी प्रतियोगिता रखी थी कि गणेश जी पर अपने भाव प्रकट कीजिए। एक बच्चे ने बड़ी अच्छी कहानी सुनाई, उसने अपनी दादी नानी किसी से सुनी होगी कि मुझे गणेश जी इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो माँ के बहुत बड़े भक्त थे। मैंने कहा कैसे, तो बताने लगा बच्चा कि देखिए एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा तो गणेश जी ने अपनी माँ के चारों ओर चक्कर लगा लिए। कहानी उसे विस्तार से तो नहीं पता थी लेकिन कहानी का सार उसको पता था कि माता पिता के चरणों में सारे तीर्थ होते हैं, ये उसको बहुत अच्छे से पता था। उसने बड़े भोलेपन से ये कहानी सुनाई। कहानी सुन के मुझे तो बहुत आनंद आया, साथ ही साथ और बहुत सारी कहानियाँ बच्चों ने सुनाई। एक कहानी सुनाई थी मुझे एक बच्चे ने, वहाँ पर वो गणेश जी की तो नहीं थी लेकिन कहानी बहुत अच्छी थी। कहानी ये थी कि मैडम, मैंने उसे कहा कि भाई मैडम मत बोलो, दीदी बोलो। तो बोलता नहीं, आपको देख के ना मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी क्लास टीचर हो। तो मैंने कहा ठीक है मैडम बोलो। उसने कहानी सुनानी शुरू की कि मैडम जब मैं गणेश जी को देखता हूँ तो मेरे मन में एक ही बात आती है कि हम जब किसी से भी मिलते हैं, मैं देखता हूँ, मैं कई बार अपनी मम्मी के साथ कहीं जाता हूँ तो लोग आजकल ये नहीं पूछते हैं कि तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो आजकल। सबसे पहले लोग यही बताते हैं, अरे तुम बहुत पतले हो गए, अरे तुम बहुत मोटे हो गए, अरे तुम्हारे चेहरे पे बहुत दाग हो गए, कुछ इलाज करवाया। लेकिन मैडम गणेश जी को देखकर इतना मन खुश होता है कि देखिए कोई कहीं भी हो, कितना भी हो, सबके गणेश अलग अलग हैं लेकिन कोई ये नहीं कहता कि इनके वाले ऐसे हैं, उनके वाले वैसे। सबको कितने सुंदर लगते हैं प्रभु श्री गणेश और हर रूप में कितने सुंदर लगते हैं। वो बच्चा तो अपने बालपन में ये बात कह गया लेकिन ये बात ना बच्चों मेरे घर कर गई। और मैंने इस उत्सव से ये सीखा कि आज के बाद मैं कभी किसी में कोई कमी नहीं देखूंगी। मुझे देखना होगा तो मैं उसकी खूबियां देखूंगी, क्योंकि ये तो मेरी दादी भी कहा करती थी कि किसी की तरफ जब एक उंगली उठाते हो तो आपकी तरफ तीन उंगलियां आती हैं। तो क्या किसी की एक कमी ठीक करने के प्रयास में हम अपनी तीन कमियों को इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं? तो बेहतर होगा कि दूसरे से हम अच्छाई सीखें और अपनी बुराई देखें, क्योंकि बच्चों ये सबसे अच्छा प्रयास होता है। क्योंकि हम जब किसी में कमियां देखते हैं तो हम बहुत धीरे धीरे धीरे धीरे करते ना, हम बहुत मीन मेक निकालने लगते हैं सब में, कोई मिला नहीं कि बस हम शुरू हो जाते हैं ये बिना सोचे कि उसे कैसा लगेगा। जैसे अभी कॉलोनी में मैं देख रही थी कि एक बच्चा, बहुत दिन से उसको कोई प्रॉब्लम हुई और उसको डॉक्टर ने बोला कि थोड़े दिन आपको आराम करना है, अब बच्चे जब खाएंगे पिएंगे और आराम करेंगे तो थोड़ा वेट बढ़ जाता है। हालांकि अपना ख्याल रखना चाहिए, मैं भी यही कह रही हूँ, लेकिन जैसे ही वो लौट के जब उसका आराम वाला समय खत्म हुआ और वो पार्क में आया तो बच्चे बड़ी आसानी से उसे बोलने लगे मोटू आ गया, मोटू आ गया। ये क्या बात हुई? वो पता है फिर 4-5 दिन फिर नहीं आया। फिर मैं उसके घर गई एक दिन उसकी मम्मा से मिलने, मैंने कहा बेटा आप आते नहीं हो पार्क में। उसने बोला आंटी मैं जाता हूँ तो बच्चे चिढ़ाते हैं मोटू आ गया, मोटू आ गया। तो मैंने कहा बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है? बोला नहीं आंटी मुझ पर तो फर्क पड़ता है। सुना बच्चों आपने, हो सकता है किसी पे फर्क ना पड़ता हो लेकिन किसी पे फर्क पड़ता है। तो इस उत्सव से मैंने ये भी सीखा कि जो है जैसा है, हमें उसकी कमियां नहीं, हमें उसकी अच्छाइयां देखनी है। हम कोई नहीं होते बच्चों किसी की कमी निकालने वाले, है ना? वो खुद जब समझेगा समय रहते हर चीज ठीक कर लेगा। एक और अच्छी चीज मैंने इस उत्सव से सीखी वो ये सीखी कि कई लोगों ने इस बार अपने घर की सजावट करने में प्लास्टिक का बहुत कम उपयोग किया, बहुत सारे विकल्प तलाशे, है ना? कई लोगों ने धागों से, कई लोगों ने मौली जो होता है उससे फूलों की माला बनाई, कुछ लोगों ने आम्र पत्र से अपने घर की सुंदरता बढ़ाई, कुछ लोगों ने और बहुत सारी चीजें लाई जिनसे अपने घर को सुंदर बनाया, और कुछ लोगों ने बाजार से जो प्लास्टिक की चीजें आती हैं वो भी खरीदी और वो भी उन्होंने उससे अपने घर को सजाया। ठीक है, लेकिन अब जब उत्सव ये बीत चुका है तब एक बार हमें फिर से ध्यान देने की जरूरत है कि अब से दिवाली भी आएगी, दशहरा भी आएगा, बहुत सारे त्योहार आएंगे, लेकिन हम कोशिश करें कि हम प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करेंगे, है ना बच्चों? इस बार हम ज़रूर सोचें कि त्योहारों के सीज़न में हम जितना कम प्रकृति को आहत करें, जितना कम से कम, कोशिश करें कि करें ही नहीं। अगर बहुत ज़रूरी कुछ है तो उसको बहुत न्यूनतम पे ले आएं, है ना बच्चों। अब देखिए इतनी सारी बातें हो गई हैं, तो जल्दी से आपके साथ फिर से आंख मूंद कर संकल्प ले लिए जाए। आपको तो पता ही है कि जब कोई बात मैं करती हूँ तो उससे संबंधित कुछ संकल्प ज़रूर हम लोग बाल सभा में लेते हैं। तो चलिए मैं एक बार थोड़ा सा पानी पीती हूँ, आप लोगों के पास भी पानी रखा है तो पीजिए, और फिर आंखें बंद करके बैठिए, शांति से धीमा सा संगीत सुनिए। सबने आंखें बंद कर ली, चलिए हाथ जोड़ लीजिए। मैं पहला संकल्प लेता हूं या लेती हूं कि उत्सवों को बहुत उत्साह और उल्लास से मनाऊंगा या मनाऊंगी। आज का हमारा दूसरा संकल्प है कि हम हर त्योहार प्रकृति के अनुरूप मनाने का प्रयास करेंगे। आज का हमारा तीसरा संकल्प है प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करेंगे। चौथा और बहुत जरूरी संकल्प बच्चों, हर त्योहार हर उत्सव में अपनी कल्पनाशीलता को हम और बढ़ावा देंगे। अपनी सृजन क्षमता को और बढ़ावा देंगे। और अब आखिरी संकल्प, हम अपने हर व्यवहार से प्रकृति के प्रति कृतज्ञ रहेंगे। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथ आपस में रगड़िए और बहुत प्यार के साथ आंखों पे लगाइए। अब धीरे से आंखें खोल लीजिए और एक बार पुनः उन सब बातों का स्मरण कीजिए जो मैंने आज आपसे बाल सभा में कही हैं, है ना। अच्छा संगीत सुनिए, अच्छी बातें कीजिए, अच्छे दोस्त बनाइए, किसी की कमी मत निकालिए, जो देखना है अच्छा देखिए, गांधी जी के तीन बंदरों का ख्याल कीजिए, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। तो बस इसी विचार के साथ अब चलूं, अपना ध्यान रखिएगा और अपने अपनों का भी ध्यान रखिएगा। चलती हूँ बच्चों, नमस्ते। अभी आप बाल सभा सुन रहे थे। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम, और मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: बाल सभा,
2: नजीब।
3: अभी आप सुन रहे थे बच्चों का मनपसंद कार्यक्रम बाल सभा 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। हमारा अगला कार्यक्रम है हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम में आज का विषय है भारतीय सेना में उच्च अधिकारी भर्ती प्रक्रिया की जानकारी। जानकारी देंगे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, और इनसे बातचीत कर रही हैं अदिति गौड़।
4: करके देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गजल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
5: नब्बे दशमलव आठ मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामाजी से चर्चा।
2: श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, सेवानिवृत्त। कर्नल भामा ने लगभग 2 दशकों से अधिक समय तक भारतीय थल सेना में अपनी सेवाएं प्रदान की, जिसमें उन्होंने राजस्थान से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक भारत की सीमा पर महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में योगदान दिया। इंडियन आर्मी में आपकी कमिश्निंग, वर्ष 1988 में इन्फेंट्री ऑफिसर के तौर पर 6वीं बटालियन मद्रास रेजिमेंट में हुई। आपने सियाचिन ग्लेशियर, करगिल, सिक्किम, पंजाब, राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्यों में कई महत्वपूर्ण काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस क्रियान्वित किए।

0: जी
1: एक शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है।
0: जी
1: परमानेंट कमीशन का मतलब होता है कि आप सिलेक्शन के बाद, ट्रेनिंग के बाद जब आप कमीशन हो जाता है आपका, तो आप मिनिमम 20 इयर्स आपकी पेंशनेबल सर्विस होती है, और वो सर्विस आप जिस लेवल तक जाते हैं वो पूरी कर सकते
0: जी
1: हैं। शॉर्ट सर्विस में जो सर्विस है वो 10 साल की होती है, वो एक्सटेंडेबल होती है। 10 साल के बाद अगर आप करना चाहते हैं और आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से परमिटेड है तो 4 साल और आगे कर सकते हैं, तो ये शॉर्ट सर्विस कमीशन कहलाता है। अब इनके लिए जो एंट्री है उसके बारे में हम विस्तार से जिक्र करते हैं। देखिए, जब स्कूल में सबसे पहले जो एंट्री लेवल होता है वो 10+2 का होता है, अधिकारी वर्ग के लिए। 10+2 में जो बच्चे जाना चाहते हैं उनके लिए जो स्कीम होती है वो सबसे पहले स्कीम है NDA के थ्रू है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है ये ट्राई सर्विस यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के कंबाइंड
0: एंट्रेंस
1: एग्जाम होता है, और इसमें तीनों विंग के जो है बच्चे होते हैं। ये साल में 2 बार होता है, मतलब इसमें 6-6 महीने के टर्म्स होते हैं, तो 1 साल में 2 टर्म्स होते हैं, और इसमें टोटल वैकेंसी जो होती है 320 वैकेंसीज होती हैं पर टर्म। 6 महीने में 320 वैकेंसीज आती हैं, जिसमें से कि आर्मी की तकरीबन 208 वैकेंसीज होती हैं, नेवी की 42 के करीब होती हैं, और एयरफोर्स की 70 वैकेंसीज होती हैं। इसका नोटिफिकेशन आता है, और इसमें जो एग्जाम होता है वो UPSC के थ्रू होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसका एग्जाम कंडक्ट कराते हैं।
0: नोटिफिकेशन हर महत्वपूर्ण समाचार पत्र में आता होगा?
1: बिल्कुल आता है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में मिलेगा, डेली न्यूज़पेपर्स जो आते हैं उसमें भी आता है, और फिर इसके अलावा वेबसाइट्स हैं, जिस वेबसाइट का जिक्र किया था joinindianarmy.net,
0: उसके अलावा संस्था की अपनी वेबसाइट पर भी आता होगा इसका विज्ञापन,
1: वो भी आता है। और लेकिन सबसे ज्यादा ये UPSC जो साइट है और जो हमने अभी जिक्र किया है, joinindianarmy इज द बेस्ट साइट एक्चुअली, जिसमें के सारे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। इसकी जो एज लिमिट है, आपकी उम्र 16.5 साल से ज्यादा होनी चाहिए और 19 साल से कम होनी चाहिए, और ये जो एज का कट ऑफ होता है वो जिस दिन से कोर्स शुरू हो रहा होता है, जैसे एक कोर्स जनवरी में शुरू होता है, एक कोर्स जुलाई में शुरू होता है, जो फर्स्ट डे ऑफ द कोर्स होता है उस दिन जो है इस एज ग्रुप
0: में ये एज होनी चाहिए,
1: ये एज होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन जैसे हमने बात करी थी कि 12th क्लास होना चाहिए, आर्मी के लिए नॉर्मल मतलब किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है, लेकिन फॉर अगर वो एयरफोर्स या नेवी के लिए अप्लाई करते हैं तो फिजिक्स मैथ्स कंपलसरी होता है, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री कंपलसरी होता है।
0: कर्नल साहब, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनने एज क्राइटेरिया पूरा कर लिया है, पर मान लीजिए वो दूसरे टर्म में बैठे हैं, जुलाई के बाद वाले टर्म में अप्लाई कर रहे हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं क्या, क्योंकि उनने अभी
1: बिल्कुल जब आप 10+2 कर रहे हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल क्राइटेरिया क्लियर है, आपकी एज 16.5 साल से ज्यादा होनी चाहिए
0: जी,
1: और 19.5 से आपकी कम होनी चाहिए, और आपने 10+2 अपीयर कर रहे हैं, फाइनल एग्जाम देने से पहले भी आप कर सकते हैं
0: जी।
1: और उसमें कट ऑफ ये है कि जिस दिन आप ज्वाइन करने जा रहे हो उससे पहले आपका रिजल्ट आ चुका होना चाहिए और आप पास हो चुके होने चाहिए। जब आपने अगर 10+2 कर लिया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपकी एज 19.5 से कम है
0: जी।
1: और आपकी शादी नहीं होनी है
0: जी, जी,
1: तो अनमैरिड होना कंपलसरी है, और अगर आप एयरफोर्स और नेवी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है फिजिक्स मैथ्स होना कंपलसरी है, आर्मी के लिए ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। ये कोर्स NDA में 3 साल का होता है, और तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के स्टूडेंट एक साथ पढ़ाई करते हैं, और NDA खत्म होने पे इनको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से डिग्री मिलती है, BSc की ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है। तो 3 साल खत्म करने के बाद NDA में जिन लोगों ने आर्मी के लिए अप्लाई किया है वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून जाते हैं, जहाँ पे कि उनका 1 साल का और ट्रेनिंग होता है
0: जी,
1: और फिर उनका वहां से कमीशनिंग होती है
0: इंडियन आर्मी के लिए।
1: इंडियन आर्मी के लिए
0: तो आपने अगर NDA क्लैरिफाई कर लिया है तो आप 4 साल मानिए, 1 साल IMA का।
1: बिल्कुल, 3 साल NDA और 1 साल IMA, और 3 साल NDA के दौरान आप ग्रेजुएशन हो जाता है आपका, जो कि आप बाहर भी करते हैं। इसमें यह है कि पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है, और इसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं वहाँ पे। इसमें क्या होता है कि पढ़ाई के अलावा अपनी अच्छी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, हॉबीज क्लासेस होती हैं। इफ यू गो देयर देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरह की वो एकेडमी है, क्यों उसको वर्ल्ड क्लास एकेडमी कहा जाता है। हर चीज, बॉक्सिंग, हॉर्स राइडिंग, एनी काइंड ऑफ अदर थिंग विच यू वॉन्ट यू कैन थिंक ऑफ। इसी तरह से क्या होता है, 10+2 करने के बाद एक और एंट्री के थ्रू वो जा सकते हैं, जिसको हम टेक्निकल एंट्री स्कीम बोलते हैं
0: जी।
1: इसमें क्या है, जो बच्चे बीटेक करना चाहते हैं तो इनके लिए ये लागू होता है। जैसे 10+2 में उन्हें फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री है जिनके पास, उसमें उन्होंने अप्लाई किया, पर इसमें कंपलसरी क्या है कि वो JEE का एग्जाम दिया होना चाहिए उन्होंने, मतलब JEE का जो मार्क्स है वो जरूरी है
0: जी। और उसके बाद वो अप्लाई कर सकता है।
1: हाँ, उसके बाद वो अप्लाई कर सकता है।
0: वो कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, किस
1: सेम इसमें भी अगेन आपको जो है joinindianarmy.net में आता है, उसमें नोटिफिकेशन आता है, वो इसी के थ्रू अप्लाई करना होता है। साल में दो बार मतलब इसकी वैकेंसीज निकलती हैं। अगेन जितने जो न्यूज़पेपर्स हैं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज है, सब में ये आता है।
0: इंटरनेट का समय है तो सिर्फ टेक्निकल एंट्री इन इंडियन आर्मी टाइप करे तो उसको जानकारी मिल जाएगी।
1: बिल्कुल मिल जाएगी। और यह सबसे आसान है कि जॉइन इंडियन आर्मी साइट है, उसमें आप जाइए, उसमें इन डिटेल सब कुछ दिया हुआ है। इनका भी जो एज क्राइटेरिया है वो 16.5 से ज्यादा होना चाहिए और 19.5 से कम होना चाहिए।
0: लेकिन ये कंपल्सरीली उन बच्चों के लिए है जो बीटेक करना चाहते हैं या इंजीनियरिंग जैसी सर्विसेज में जाना चाहते हैं।
1: बीटेक करना चाहते हैं उन्हीं के लिए है
0: जी।
1: और इनका कोर्स भी जो है 5 साल का होता है। हर कोर्स में 90 वैकेंसीज होती हैं
0: टेक्निकल एंट्री के लिए
1: जी। इसमें भी साल में दो बार होता है और दो फेजेस में होता है। फेज वन में पहले 1 साल की प्री कमीशन ट्रेनिंग होती है गया में, एंड उसके बाद जो है उनको टेक्निकल इंस्टीट्यूट में भेजा जाता है। अलग अलग टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं, जैसे जो बच्चे सिग्नल्स में जाना चाहते हैं, कम्युनिकेशन है, उनके लिए अलग है
0: जी।
1: जो सिविल इंजीनियरिंग करते हैं उनके लिए अलग है, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच लेते हैं उनके लिए अलग है। अभी जैसे हमने दो एंट्री की बात करी
0: जी, टेक्निकल और साधारण,
1: टेक्निकल और एनडीए की बात करी और टेक्निकल एनडीए, ये दोनों एंट्री हैं 10+2
0: जी।
1: अब 10+2 के बाद किसी कारणवश आपने इसमें अप्लाई नहीं किया
0: जी,
1: तो जब आपका ग्रेजुएशन हो जाता है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं
0: जी।
1: यानी कि जो बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, 3 साल का ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद एक कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम होता है
0: जी,
1: जो कि यूपीएससी के थ्रू होता है। इसको हम कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन एंट्री स्कीम है
0: जी।
1: तो इसमें अगर अप्लाई करते हैं तो परमानेंट कमीशन के लिए हर साल जो है 200 सीटें ट्वाइस एन ईयर होती
0: जी।
1: है। इनका भी कोर्स जैसे वही जनवरी और जुलाई में शुरू होता है। इसमें अप्लाई करने के लिए आप यूपीएससी की वेबसाइट पे अप्लाई करते हैं और इसके बारे में जो नोटिफिकेशन होते हैं सारे के सारे न्यूज़पेपर्स में आते हैं, और इवन ये जो साइट हमने बताया था जॉइन इंडियन आर्मी, इसमें भी इसके बारे में पूरी डिटेल्स रहती हैं। इसका क्वालिफिकेशन ये है कि एज आपकी 19 से ज्यादा होनी चाहिए और 24 साल से कम होनी चाहिए। दूसरा ये है कि आपकी क्वालिफिकेशन यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से
0: और किसी भी स्ट्रीम में,
1: किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है। देन सेकंड थिंग इज कि आपकी ट्रेनिंग जो होती है वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में होती है, और डायरेक्ट एंट्री होने के कारण ये 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है
0: जी।
1: तो हमने जैसे जिक्र किया था एनडीए का
0: जी,
1: एनडीए में जो बच्चे 3 साल कंप्लीट करते हैं
0: जी
1: वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी आते हैं और 1 साल की ट्रेनिंग करते हैं। जो डायरेक्ट एंट्री जाते हैं वो वहाँ पे 1.5 साल की ट्रेनिंग करते हैं। इसमें आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी 3 टर्म्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो एनडीए वाले हमेशा सेकंड टर्म आके ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरह से फिर पासिंग आउट सबका एक साथ रहता है। इसको हम जो है कंबाइंड डिफेंस सर्विस के थ्रू परमानेंट कमीशन के लिए ये स्कीम होती है। इसी तरह से शॉर्ट सर्विस के लिए इसमें ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 175 सीट्स होती हैं, वैकेंसीज होती हैं ट्वाइस ए ईयर
0: जी।
1: इनके भी 2 कोर्सेज होते हैं और इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो ओटीए चेन्नई में होती है। सेम इसमें जो एज लिमिट है वो 19 साल कम से कम होनी चाहिए और 25 साल ज्यादा हो सकती है
0: जी।
1: और ग्रेजुएशन सेम इसमें जो है होना चाहिए। और ये सारे के सारे जो जाहिर है क्योंकि फौज की सर्विस ऐसी है तो इसमें अनमैरिड होना कंपलसरी है
0: जी।
1: चाहे कोई भी एंट्री होती है तो उसमें अनमैरिड होना कंपलसरी माना जाता है। इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो तकरीबन 49 वीक्स की होती है, वही 1 साल की इनकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद इनका कमीशन होता है
0: जी।
1: देखिए क्या है कि ये तो था यूपीएससी के थ्रू एग्जाम में हमने देखा, यानी हमने पहले देखा कि 10+2 के बाद आप 2 एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ग्रेजुएशन के बाद जो है आप एक परमानेंट कमीशन के लिए जा सकते हैं, एक अपना शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जा सकते हैं। अब एक और भी ब्रांचेस ऐसी होती हैं, जैसे एक जज एडवोकेट जनरल ब्रांच होती है जिसमें कि लॉ क्वालिफाइड लोग जाते हैं। इसकी वैकेंसी होती है हर कोर्स की तकरीबन 10 वैकेंसी होती है। ये भी साल में जो है 2 बार होता है, और इसमें जिन बच्चों ने लॉ किया होता है, जो लॉ क्वालिफाइड होते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं।
0: कन्हैया साहब, ये सिर्फ आर्मी के लिए है कि तीनों सशस्त्र सेनाओं के लिए लागू है?
1: ये अभी हम आर्मी की बात कर रहे हैं, जो बाकी उसमें जाएंगे उसमें भी होता है, लेकिन उसमें कंडीशंस क्या है वो हम डिटेल में बात करेंगे। अभी हम जब आर्मी की बात कर रहे हैं तो इसमें इनकी जो एज ग्रुप है 21 से 27 साल होती है, तो इस एज ग्रुप में अगर वो हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इनकी भी ट्रेनिंग जो होती है वो ओटीए चेन्नई में ही होती है। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद इनको जो है कमीशन मिलता है। इसी तरह से एक स्पेशल एंट्री होती है एनसीसी के बच्चों के लिए, जिसमें कि 50 वैकेंसीज होती हैं ये भी साल में दो बार होता है। इसका नोटिफिकेशन जो होता है वो डायरेक्टर जनरल रिक्रूटमेंट से आता है। अप्लाई जब करते हैं तो जो एनसीसी का डायरेक्टरेट होता है उसके थ्रू अप्लाई करते हैं। इसमें उम्र जो होती है बच्चे की वो 19 साल से ज्यादा होनी चाहिए, 25 साल से कम होनी चाहिए, और कंपलसरी बात यह है कि इसमें सी सर्टिफिकेट होना चाहिए उसका, एनसीसी सीनियर डिवीजन का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए विद बी ग्रेड मिनिमम, ये कंपलसरी है। तो इनको क्या होता है कि ये लोग जो होते हैं जो यूपीएससी का एग्जाम नहीं देते हैं, इनका डायरेक्ट एसएसबी होता है
0: जी,
1: सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में ये लोग डायरेक्ट जाते हैं और वहां से फिर क्वालिफाई होने के बाद जो है एकेडमी ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा जो है और भी स्कीम्स आती है, जैसे एक टेक्निकल ग्रेजुएट्स एंट्री स्कीम होती है, इसमें भी क्या होता है कि तकरीबन 60 वैकेंसीज होती हैं, साल में दो बार होती हैं, जिसमें कि जिन बच्चों ने बी कर लिया होता है, बी टेक जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया होता है, जिनकी उम्र 20 साल से ज्यादा है और 27 साल से कम है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इनकी एक साल की ट्रेनिंग होती है आईएमए देहरादून में, जिससे टेक्निकल एंट्री परमानेंट कमीशन हो गया जब वो आईएमए में जा रहा है। इसी तरह से एक शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए भी एक एंट्री होती है,
0: टेक्निकल एंट्री होती
1: है। इसमें मतलब 100 वैकेंसीज होती हैं साल में दो बार जो होती हैं, और इनकी ट्रेनिंग जो है ओटीए चेन्नई में होती है
0: जी।
1: काफी सारी एंट्रीज होती हैं, जैसे कि हमने बहुत पहले भी बताया था कि इट्स अ वेरी वास्ट स्पेक्ट्रम, काफी बड़ा स्पेक्ट्रम होता है आर्मी में, तो इसमें काफी और मतलब जो है तरह से आप जो है एंट्री कर सकते हैं। ये मेजर हैं जिनसे जा सकते हैं। अभी एक और सर्विस होती है जो कि बहुत फेमस है, दैट इज मेडिकल सर्विसेज
0: जी।
1: मेडिकल सर्विसेज का एक आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज होता है जो कि आर्मी का है, जिसमें कि डॉक्टर के लिए मतलब एंट्री लेवल उसका 10+2 होता है, उसके बाद क्वालिफाई करने के बाद वो पूरा का पूरा अपना मेडिकल की पढ़ाई वहीं उसी इंस्टीट्यूट में करते हैं, ये पुणे में है, और फिर इनके बाद ये आर्मी नेवी एयरफोर्स में डॉक्टर्स एज ए कमीशन ऑफिसर बन के कार्य करते हैं। इनका शॉर्ट सर्विस कमीशन भी होता है मेडिकल ऑफिसर्स का
0: जी।
1: उसकी एंट्री अलग होती है। इसी तरह से एक मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज होती है
0: जी।
1: उनकी भी एक एंट्री अलग होती है जिसमें कि लड़कियां जो है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ज्वाइन कर सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है जिसमें कि आप इस जब साइट पर जाते हैं joinindianarmy.in पे आपको पूरी डिटेल्स पता चल सकती है।
0: लेटरल एंट्री की हम लोग आजकल बात करते हैं, जैसे अग्निवीर योजना की बात की उसमें लेटरल एंट्री हो गई, आर्मी में क्या इस तरह की लेटरल एंट्री संभावित है किसी स्पेशल विशेष कार्य के लिए?
1: समय समय पे ये तो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, उसके हिसाब से अगर कोई चेंजेस आते हैं तो वो इम्प्लीमेंट करे जाते हैं। अग्निपथ स्कीम आई है, ये एक तरह से बिल्कुल ही नया एक्सपेरिमेंट है
0: जी।
1: तो हो सकता है आगे चल के कुछ और आए, तो अभी तक लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हमने जितनी बात करी वो सिर्फ मेल
0: एस्पिरेंट्स जो है
1: उनके लिए थी, इसी तरह से इवन फीमेल विमेन के लिए भी एंट्रीज हैं
0: जी।
1: थोड़ा सा हम उसके बारे में भी जानकारी देना चाहेंगे। विमेन के लिए भी जो है 10+2 के बाद वो एनडीए में अप्लाई कर सकती हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में। अभी इनके जो वैकेंसीज आती हैं वो एज पर नोटिफिकेशन होती हैं, क्वालिफिकेशन और बाकी चीज़ें सेम हैं जैसे हमने आपको पहले बताया था, उसमें कोई चेंज नहीं है, और एग्ज़ाम भी और कोर्सेज भी इनके सेम वही उसी तरह से हैं। 3 साल एनडीए करने के बाद 1 साल लिए आईएमए में ट्रेनिंग करके कमीशन ऑफिसर्स बनेंगे। वुमेन के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन में भी जो है वैकेंसीज होती हैं, इनकी 12 वैकेंसीज होती हैं साल में दो बार, और अगेन उसका भी एज क्राइटेरिया और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है जो मेल का था, यानी कि 19-25 ईयर्स एज होनी चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, अनमैरिड होने चाहिए, और इनका भी ओटीए चेन्नई में ट्रेनिंग होता है। एनसीसी में भी अगेन जो है सेम जैसे मेल का एंट्री होती है वैसे ही फीमेल के लिए वुमेन के लिए भी एंट्री है, जिसमें साल में इनके लिए अगेन 4 सीट्स होती हैं, ट्वाइस ए ईयर होता है, एज क्राइटेरिया सेम है 19-25, और सीनियर डिवीजन में मिनिमम बी ग्रेड के साथ सीटर सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। इनका डायरेक्ट एसएसबी होता है। जैग ब्रांच में भी जो कि हमने बोला था जज एडवोकेट एंड जनरल ब्रांच जिसमें कि लॉयर्स जाते हैं, इसमें भी वुमेन्स की वैकेंसी होती है और उसमें भी वो अप्लाई कर सकती हैं। एज क्राइटेरिया सेम है 21 से लेके 27 साल, और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी सेम है कि लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए 55% एग्रीगेट के साथ, और इनकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट के साथ, ये कंपलसरी होता है। इन एडिशन उनका जो है क्लैट पीजी स्कोर जो है प्रिसीडिंग ईयर का मैंडेटरी होता है, एंड इसके अलावा अगर कोई और क्वालिफिकेशन अगर उस समय जरूरत होती है तो टाइम टू टाइम जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन आते हैं
0: जी.
1: या उस ब्रांच के नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको साइट पे उसकी जानकारी मिलती है. देन इसके अलावा वेमेन का जो है टेक्निकल एंट्री भी होती है शॉर्ट सर्विस कमीशन की. सेम वही उनका एज क्राइटेरिया 22-27 ईयर्स है. ओटीए चेन्नई में जाते हैं. साल में दो बार इनके लिए एग्जाम होता है. 20 वैकेंसी पर 6 मंथ्स होती है. इसका भी सेम जैसे मेल का रहता है इनका भी नोटिफिकेशन जो होता है सारे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में और डेली न्यूज़पेपर्स में आते हैं. मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था कि मेडिकल ऑफिसर्स के लिए भी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में तो स्पेशली लेडीज ही जाती हैं. आर्मी डेंटल कोर की वैकेंसीज होती हैं उसमें भी फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं. तो ये मतलब सारी की सारी एंट्रीज हैं जिसमें कि फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं. एक और बात हम थोड़ा मिस कर गए थे जो अग्निवीर स्कीम है उसमें भी हमारा आर्मी में कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस है
0: जी.
1: उसमें फीमेल यानी कि महिलाएं जाती हैं तो उनके लिए भी वो स्कीम लागू है
0: जी.
1: बाकी उनके जो क्राइटेरिया है सेम है सेम एज जो हमने बताया था वही उनके लिए भी लागू होते हैं. आर्मी में जाने के लिए अफसर बनने के लिए आपको रिटन एग्जाम के अलावा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में अपीयर होना होता है.
0: वो एक तरह का इंटरव्यू होता है
1: जी. सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एक तरह का इंटरव्यू होता है लेकिन ये 5 दिन का होता है
0: जी.
1: तो 5 दिन का जो इंटरव्यू होता है ये काफी टफ होता है एंड इसके लिए काफी तैयारी करनी चाहिए. इसमें क्या होता है कि जैसे जिस दिन जाते हैं आप ये 2 स्टेजेस में होता है. इसमें पहले दिन जो है आपका एक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है
0: जी.
1: उसके अलावा एक पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट बोलते हैं. ये इनिशियल स्क्रीनिंग होती है. इसमें जो बच्चे पास कर लेते हैं वो अगले 4 दिन के लिए टेस्ट देते हैं जिसमें कि साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, ग्रुप टेस्ट होते हैं, ग्रुप टास्क होते हैं और इंटरव्यूज होते हैं. तो ये पूरा का पूरा 5 दिन के लिए होता है. एंड इसके लिए जो सर्विस सिलेक्शन सेंटर्स होते हैं जैसे भोपाल में है, बैंगलोर में है, जालंधर में है और इलाहाबाद में है. तो ये जो है सेंटर्स हैं. इसी तरह से एयरफोर्स के भी हैं सेंटर्स जो हैं अलग हैं, नेवी के भी हैं. SSB जो है किसी भी ब्रांच में किसी भी विंग में ऑफिसर बनने के लिए कंपलसरी होता है
0: जी.
1: और यही डिसाइड करता है आपका सिलेक्शन जो है होगा या नहीं. श्रोता हैं वो और ज्यादा इसके बारे में जो है नेट के ऊपर जो है जानकारी हासिल कर सकते हैं एंड वी विश देम ऑल द बेस्ट.
0: बिल्कुल ऑल द बेस्ट. श्रोताओं के साथ साथ हम आपको बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां बताई और इतने अच्छे तरीके से बताई. इस तरह से बताएं कि कोई भी हमारा युवा हतोत्साहित नहीं होगा. महिलाओं के लिए भी है, ग्रेजुएट्स के लिए भी है, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए भी है, सबके लिए हर स्तर पर कोई ना कोई एक अपॉर्चुनिटी उपस्थित है. कर्नल साहब जो सिलसिला शुरू किया है हमने महत्वपूर्ण जानकारियों का वो आगे भी जारी रहेगा. आप हमारे श्रोताओं से और महत्वपूर्ण बातें जानकारियां साझा करें. इसी विनती के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और गौरव की बात है कि आप हमारे साथ आए और हमारे साथ आपने जानकारियां साझा की. उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
1: थैंक यू अदिति. जय हिंद श्रोताओं.
2: इस कार्यक्रम की परिकल्पना और निर्देशन का श्रेय जाता है अदिति गौड़ को. ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने.
3: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व. सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए.
4: नमस्कार, मैं हूं कनिका तिवारी और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के.

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम में आज का विषय था भारतीय सेना में उच्च अधिकारी भर्ती प्रक्रिया की जानकारी। जानकारी दी सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा ने और इनसे बातचीत कर रही थी अदिति गौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहें रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जो आओ डी बैरोस ब्रिटिश और बर्मी साम्राज्य के बीच एक पुर्तगाली जमींदार। क्या आप जानते हैं कि 18वीं सदी के अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय इतिहास के सबसे विस्फोटक शरणार्थी संकटों में से एक को संभालने के लिए पुर्तगाली मूल के एक जमींदार पर भरोसा किया था। ये कहानी है जोआओ डी बैरोस की, जिनकी चटगांव सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित जागीर ब्रिटिश कंपनी और विस्तारवादी बर्मी साम्राज्य के बीच एक उच्च स्तरीय राजनयिक गतिरोध का केंद्र बन गई थी। ये नाटक सन 1785 में शुरू हुआ, जब अराकान पर बर्मी आक्रमण के बाद हजारों शरणार्थी ब्रिटिश कब्जे वाले चटगांव की ओर भागने लगे। इन हताश लोगों में केवूटी जैसे उच्च पदस्थ राजनीतिक विद्रोही और अराकान के दिवंगत राजा का परिवार भी शामिल था। तत्कालीन ब्रिटिश कलेक्टर चार्ल्स क्रॉफ्ट्स उलझन में थे। वे इन शरणार्थियों को जिले के कम आबादी वाले ग्रामीण इलाकों में बसाने के लिए संभावित श्रम शक्ति के रूप में चाहते थे, लेकिन उनके पास उनकी रक्षा के लिए पर्याप्त सैन्य संसाधन नहीं थे। लिमिटेड राज की स्थानीय सहयोगियों पर निर्भरता को दर्शाते हुए क्रॉफ्ट्स ने इन शाही शरणार्थियों को जोआओ डी बैरोस के घर में ठहराया। एक पुर्तगाली जमींदार के पास उन्हें रखकर कंपनी डी बैरोस को एक मानव ढाल और प्रशासनिक बफर के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। हालांकि बर्मी जनरल वानकेचा, जिसने अभी अभी अराकान जीता था, इस व्यवस्था से नहीं डरा। उसने क्रॉफ्ट्स को धमकी भरे पत्रों की एक श्रृंखला भेजी, जिसमें केवूटी और उनके अनुयायियों को तुरंत सौंपने की मांग की गई। क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ जब अंग्रेजों ने बर्मी जनरल की धमकी को हल्के में लिया? क्रॉफ्ट्स ने शुरू में चटगांव बटालियन का एक हिस्सा नाफ नदी के मुहाने पर भेजा, लेकिन प्रांत के सुदूर कोनों में अनिश्चित काल के लिए सेना रखने का खर्च वो नहीं उठा सकते थे, इसलिए उन्होंने जल्द ही उन्हें वापस बुला लिया। कमजोरी के इस संकेत को देखकर वानकेचा ने कंपनी के क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया और कंपनी की कई बंगाली प्रजा को मार डाला। शरणार्थियों को जल्द ही एहसास हो गया कि जोआओ डी बैरोस की शरण स्थली केवल खोखले वादों का एक जाल थी। वे पहाड़ियों में भाग गए। केवूटी को अंततः बर्मी लोगों ने पकड़ लिया और मार डाला। अपनी मृत्यु से पहले उसने ब्रिटिश शासन पर एक मार्मिक आरोप लगाया। उसने कहा, जो लोग सुरक्षा के लिए भागे थे, उन्हें वो सुरक्षा और संरक्षा नहीं मिली जिसकी वे अंग्रेजों से उम्मीद कर रहे थे। डी बैरोस की देखरेख में मौजूद लोगों की रक्षा करने में विफलता के विनाशकारी परिणाम हुए। सुरक्षा की उम्मीद खो चुके कई शरणार्थी जीवित रहने के लिए लुटेरे और डाकू बन गए। इसी अराजकता के कारण सन 1787 में एक ब्रिटिश नागरिक जेम्स रवि की कुख्यात हत्या हुई। जोआओ डी बैरोस की कहानी हमें एक दिलचस्प सबक सिखाती है। विचारों के साम्राज्य में जब कोई राज्य अपने सबसे कमजोर मेहमानों की रक्षा करने में विफल रहता है, तो वो केवल अपना सम्मान ही नहीं खोता, वो अपनी सीमाओं पर व्यवस्था बनाए रखने की क्षमता भी खो देता है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है विश्व पशु कल्याण दिवस पर हमारा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर नारद से मनीषा चतुर्वेदी की बातचीत हम आपको सुनवा रहे हैं।
1: श्रोताओं नमस्कार, ये है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूँ मनीषा और हर साल 4 अक्टूबर को पूरी दुनिया में विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी धरती केवल मनुष्यों की नहीं बल्कि पशु पक्षियों और असंख्य जीव जंतुओं की भी साझा घर है। विश्व पशु दिवस हमें पशुओं के प्रति अपने व्यवहार, उनकी देखभाल, उनके स्वास्थ्य और उनके अधिकारों के बारे में सोचने का अवसर भी देता है। इस वर्ष पशु दिवस की थीम है सी द वर्ल्ड थ्रू देयर आईज, यानी दुनिया को हम उनकी आंखों से देखें। इसी विषय पर आज हम विस्तार से बात करेंगे एक ऐसे विशेषज्ञ से जो रोज पशुओं के स्वास्थ्य और उनकी तकलीफ को बहुत करीब से देखते और समझते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाने माने पशु चिकित्सक ऑन्को पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अंकुर नारद। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार, और आप सभी श्रोताओं को विश्व पशु दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: हमारे सुनने वाले बिल्कुल समझ पाएंगे कि सुबह से शाम तक आप जिनके बीच में बैठे रहते हैं, जिनको देखते हैं, उनका ये खास दिन आपके लिए कितना अहम है और सभी के लिए होना चाहिए। सर, इस वर्ष पशु दिवस की थीम है सी द वर्ल्ड थ्रू देयर आईज। इस पूरी लाइन को, इस टैग लाइन को आप कैसे हमारे श्रोताओं के सामने डिस्क्राइब करेंगे?
2: सी द वर्ल्ड थ्रू देयर आईज, दुनिया को उनकी आंखों से देखें, ये एक टैगलाइन बहुत ही वास्तविक में एक बहुत ही अच्छी टैगलाइन साबित हो सकती है यदि हम हमारी रोज़मर्रा की जो सुविधाएं हैं, हम एसी में बैठे हैं, अपने डेली स्ट्रेस देख रहे हैं ऑफिसेज के, अपनी लाइफ देख रहे हैं, प्रेशर देख रहे हैं, टेंशन देख रहे हैं बॉस का, घर की चिक चिक चल रही है, लेकिन क्या हम ये महसूस कर पा रहे हैं कभी कि हमारा पेट भी हमारे साथ ही वही इन्वायरमेंट शेयर कर रहा है जो हम कर रहे हैं? यानी हमारे घर में यदि आज कहीं कोई डांट चल रही है, यदि किसी के आपस में झगड़े चल रहे हैं, या कोई हमारी कॉलोनी में किसी डॉग को मार पीट रहा है, देख रहा है, वो दृश्य हमारे डॉग की क्या साइकोलॉजी बना रहा होगा? तो यही हमारी आज की टैगलाइन है, सी द वर्ल्ड थ्रू देयर आईज।
1: सर, आपने इतनी गंभीर बात कही है, और चूंकि मैं भी पेट पेरेंट रही हूँ तो मैं देखती थी कि आपस में जब कभी हम लोग ऐसे बात नहीं कर रहे हैं या मैंने अपने बच्चों को डांटा तो बीच में आ जाती थी एकदम से चक्कर जो मेरी पैट थी, और वो बचाती थी बच्चों को कि नहीं, डांट नहीं पड़नी चाहिए। तो ये जो आपकी बात है कि घर की बातों का असर क्या हम समझ पा रहे हैं कि हमारे पेट पे पड़ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है सर ये। लेकिन हम कैसे इस चीज़ को महसूस करें कि पशु क्या महसूस कर रहा है?
2: मैम, ये साइकोलॉजी आपको एनिमल बिहेवियरिस्ट एक टाइप का कोर्स भी आजकल शुरू हो गया है, जिस कोर्स में बच्चों को, जो कि ग्रेजुएशन का कोर्स है, उसमें बच्चे आते हैं और उसमें आकर कि ये सिर्फ यही सीखते हैं कि हाउ टू कम्युनिकेट विद देयर एनिमल्स, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स, जो उनके दिमाग में चल रहा है आप उसको कैसे भाप सकते हैं। जैसे कि हम एक बात करते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर की, जो आज की तारीख में बहुत ज्यादा लोगों का एक प्रचलित बिजनेस बन गया है, कई बार एक कुछ ऐप्स भी बन गए एस्ट्रोटॉक और इंस्टप के, तो आप उसमें देखेंगे कि लोग एक फेस रीडिंग करने लगते हैं। सेम इज विद द एनिमल्स, आपके पास की जो भी नेगेटिविटीज हैं, जो भी पॉजिटिविटीज हैं, जो भी एनर्जीज हैं आपके ऑरा में, दैट ऑल आर रिफ्लेक्टेड ऑन योर पेट्स। इफ द पेट इज हैविंग सम काइंड ऑफ इन्फेक्शंस related to the skins also, then it means that your surrounding has been unhygienic. ये clear cut है। आज की तारीख में हम स्वच्छता अभियान, एक बहुत major अभियान है हमारे देश का, जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ों को eliminate कर रहे हैं, हम छोटी छोटी गलियों को साफ कर रहे हैं, स्वच्छता पे ध्यान दे रहे हैं, कई जगह स्वच्छता पखवाड़ा सेलिब्रेट हो रहा है। तो इसका सिर्फ एक मेजर इशू यही नहीं कि सिर्फ हमारी साफ सफाई हो रही है, ये एक हाइजीन है। और आज हम देख रहे होंगे कि हमारे कंट्री में, हमारे पूरे देश में कई सारी ऐसी बीमारीज है जिनका इंसिडेंस रेट कम हो गया। क्यों कम हो गया? बिकॉज ऑफ द क्लीनलेस, थोड़ी थोड़ी साफ सफाई यदि बनती जा रही है तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ एरियाज में वो चीजों का जो पहले आउटब्रेक हो जाता था आज वो नहीं है। तो सेम इज विद योर पेट्स, यदि आपके घर में भी क्लीनलेस मेंटेन्ड है, इफ योर पेट इज ग्रूम्ड, इफ योर पेट इज हाइजीनिक, इट्स नीट एंड क्लीन, उसके आईज, ईयर्स, नोज, फर, नेल्स, एवरीथिंग इज प्रॉपर, देन इट सीम्स दैट इट रिफ्लेक्ट्स योर ऑरा ऑल्सो दैट योर यू हैव बीन सो हाइजीनिक, यू हैव बीन सो पर्सनलाइज्ड, आप इतना केयर करते हैं अपने घर की मेंबर्स की, इवन योर हाउस, आपकी सराउंडिंग साफ सुथरी हैं, ये आपका पेट रिफ्लेक्ट कर देता है।
1: बिल्कुल, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि जानवरों की उम्र इंसानों की तुलना में कम और छोटी होती है, इसलिए कोई ना कोई बीमारी अंततः उनके जाने की वजह बनती है। हम कैसे पहचानें कि, क्योंकि वो बोल भी नहीं पाते, हम कैसे पहचानें कि इन्हें क्या बीमारी है?
2: देखिए मैम, ऐसा औसतन कहा जाता है, जैसे प्रचलित रहता है कि भाई थोड़ी दूर थोड़ी पास, ये थोड़ा वाला कोई डिस्टेंस नहीं है, जिसको कोई लिमिट नहीं है, कोई इसका कैलिब्रेशन नहीं है। वैसे ही हम पेट्स के लिए बात करेंगे कि आज ये थोड़ा सुस्त है, तो ये जो थोड़ा सुस्त है, दो दिन से खाना नहीं खाया, शाम से सुबह से हम वेट करते रहे, या दो दिन हम घर से बाहर होंगे, बेटी घर से गई हुई है, को आज कोचिंग नहीं आई, आज इसका फेवरेट ट्रीट नहीं मिली खाने को, शायद यही सब छोटे छोटे छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं जिस समय हमको थोड़ा चिंतित हो जाना चाहिए कि यार शायद इसको कहीं कुछ हो तो नहीं रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब हमारे ह्यूमन के एक साल इक्वलेंट टू, मतलब डॉग का एक साल हमारे ह्यूमन के 7 ईयर्स के बराबर हो जाता है, तो 14 ईयर्स एक मैक्सिमम एज मानी जाती है डॉग की औसतन। वैसे जैसे हमारी ह्यूमंस की एज आज की तारीख में धीरे धीरे घटती जा रही है, पहले 90 ईयर्स 100 ईयर्स तक भी हमारे ओल्डर पेशेंट्स अच्छे से जी लेते थे, आज हम देखते हैं तो पहले घटते घटते 60 तक, और कई बार तो आजकल 40-45 पे भी काफ़ी ज़्यादा ह्यूमंस की भी डेथ हो जाती है। तो वैसे ही हमारे डॉग्स के साथ भी है, बिकॉज क्योंकि हम भी वही एनवायरनमेंट शेयर कर रहे हैं और हमारा पेट भी वही एनवायरनमेंट शेयर कर रहा है। हम देखा जाए तो हमारा पेट भी उसी घर में रह रहा है जिस घर में हम रह रहे हैं, सेम ब्रीथ, सेम सांस जो हम ले रहे हैं वही हमारा पेट ले रहा है, शायद जो हम खा रहे हैं वो भी हमारा पेट खा रहा है, और जो हम खा रहे हैं या हम जो कंजम्पशन ले रहे हैं उन्हीं से ही उनका पेट फूड भी तैयार हो रहा है, ये भी मान सकते हैं। तो जो मेडिसिंस या प्रिजर्वेटिव्स हमारे खाने में, हमको लेज में, चिप्स में, इन सब में जो भी हम ले रहे हैं फूड्स, स्नैक्स, ये सब जो भी हैं ये ले रहे हैं स्टेपल फूड्स, तो यही जो प्रिजर्वेटिव्स हैं उनके भी ग्रेवीज में, उनके भी ड्राई फूड्स में, और साथ साथ उनकी ट्रीट्स में भी आ रही।
1: एक बात कही जाती है डॉक्टर साहब कि पालतू पशु रख लेने से या रखने वाले लोग अक्सर ये कहते हैं कि भाई हम समय पर भोजन दे रहे हैं, समय पर पानी दे रहे हैं, फिर भी हम समझ नहीं पा रहे कि ऐसा कौन सा व्यवहार करें कि हमारे डॉग को कोई बीमारी ना हो और वो कभी सुस्त ना हो, तो वो क्या एक अच्छे, जैसे बच्चों के संदर्भ में भी कहा जाता है कि अभिभावक बनना सबके बस की बात नहीं है, तो वैसे ही मुझे लगता है कि पेट पेरेंट्स बनना भी सबके बस की बात नहीं है, तो वो क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो एक अच्छे पेट के अभिभावक में होनी चाहिए?
2: सबसे अच्छे पेट अभिभावक वो हो सकते हैं जो अपने पेट के साथ समय बिताएं। आप अपने पेट को सिर्फ लायबिलिटी के तौर पे ना पालें, यदि आप अपने घर में पेट लाएं तो उसको एक सदस्य के तौर पे माने, सदस्य के तौर पे मानना ही और उसका दर्जा देना ही एक अलग बात होती है, आपको उसकी हर एक जरूरत का ख्याल रखना वो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है
1: जी।
2: उसका वैक्सीनेशन समय पर हो, उसको पेट के कीड़ों की दवाई समय पर दी जाए
1: जी।
2: उसको कुछ सप्लीमेंट्स की जरूरत है यदि सीनियर पेशेंट्स है या प्रेग्नेंट है तो उस समय उसकी सप्लीमेंट्स और इन सब की केयर देखरेख करना, साथ ही हमारे पेट्स को एक नियमित तौर पे एक्सरसाइज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, शायद हम इंसानों को भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। लेकिन क्या हो रहा है कि हमारी लाइफ ऐसी हो गई है कि अब हम लोग पार्क और ग्राउंड पे जाने की बजाय जिम में कन्फाइन हो गए। तो जब हम पार्क और ग्राउंड में जाते थे तो शायद लोग अपने पेट्स को लेकर के वहाँ घूमते थे, अब जब से जिम का प्रचलन आया है तब से लोग पेट्स को जिम में तो इनकॉर्पोरेट कर नहीं पा रहे हैं। कई बार ऑफिस में पेट को, कई बार एक आजकल चलन चला था बीच में थोड़े समय में मेट्रो सिटीज में कि कुछ पेट पेरेंट्स या कुछ ऑफिस, मतलब जो भी ऑफिस में एम्प्लॉयज थे वो अपने पेट्स को ऑफिस लाने लग गए थे। क्यों? क्योंकि वो 7-8 घंटे वहां रहते थे और उनका पेट बहुत छोटा था, कभी कभी कोई कैट हो, छोटा पपी हो, तो वो लोग अपने पेट्स को ऑफिस में साथ में कैरी करने लगे थे। और कई बार आजकल रहता है, कई लेडीज हैं जो कि किटी पार्टीज में भी एज अ शो के लिए अपने पेट्स को लेकर के जाते हैं, क्योंकि आजकल पेट बिल्कुल पॉकेट वाले हो गए, छोटे छोटे पेट्स हो गए। और जब हम ये देखते हैं कि हमारे पेट की एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो मान सकते हैं कि आजकल सोसाइटीज़ क्लोज्ड हैं, तो कहीं कहीं जगह पर हमको उनके मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं कि भाई गंदगी ना हो, रोड्स पे नहीं जाएं, किसी दूसरे डॉग से फाइट ना हो जाए। तो कुछ पेट फ्रेंडली पार्क्स भी हैं भोपाल में, जिस पेट फ्रेंडली पार्क्स में आप जा सकते हैं। इवन कई सारे ग्राउंड्स हैं हमारे भोपाल में जो कि अभी रिसेंटली जैसे कोई त्योहार नहीं है तो वो खाली भी रहते हैं, तो वहां पर पे भी आप जा सकते हैं सुबह सुबह के टाइम या थोड़ा सा शाम लेट नाइट के टाइम, और वहां जाकर के आप अपने पेट को भरपूर एक्सरसाइज कराने दे सकते हैं। आज ही रिसेंटली की बात है, कुछ पेट पेरेंट्स हमारे पास आए, उन्होंने बोला कि सर इसको हम घर के बाहर इसलिए नहीं ले जाते क्योंकि घर के बाहर हमारे बहुत सारे डॉग्स हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि आपकी कॉलोनी में लुकलाइट में काफी सारे डॉग्स हैं, बट आपकी कॉलोनी में कोई तो पार्क होगा। बोले हाँ, हमारे घर के पास एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। तो मैंने बोला आप वहाँ क्यों नहीं ले जाते? तो वो बोले हम लोग वहाँ ले जा सकते हैं बट हम ही लोग नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि ऑफिसेज और ये हस्बैंड नहीं रहते तो कार नहीं रहती, तो वहाँ तक जाना और थोड़ा डिस्टेंस रहता है। तो मैंने बोला आप कोशिश करिए कि दिन में नहीं तो 2 दिन में एक बार उसको वहाँ पे जाके वॉक कराइए। और उन्होंने ये नोटिस किया कि जब से उन्होंने लास्ट 15-10 डेज में उसको एक्सरसाइज कराना शुरू करी और वहाँ वो जाके इतना खूब खेलता है, इतना खेलता है, वो बताते हैं सर कि इसको टॉय वॉय की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये कम से कम 4-5 राउंड तो सिर्फ दौड़ता ही है। और वो यंग डॉग है, लैब्राडोर है, 1 साल का है, और वो खूब दौड़ता है। 4-5 राउंड दौड़ने के बाद बोले जब वो थक जाता है तब वो आ जाता है खुद से कि चलो अब वापस।
1: अब हो गया।
2: और अब उसके बाद से उनको ये समझ में आ रहा है कि जो उसकी एग्रेसिवनेस थी, जो उसकी बेचैनी थी, जो उसको दिन भर घर में रहती थी, वो उस चीज़ से वो छूट गई।
1: मेरे सामने ऐसे बहुत सारे घर और ऐसे बहुत सारे अभिभावक अब मेरे ध्यान में आ रहे हैं, जो आपने बताया था कि सिर्फ एक लाइबिलिटी की तरह कि भाई इसका खाना पीना देख लिया, अपने घर के बाहरी हिस्से में रखते हैं, जबकि अगर वो खतरनाक नहीं है डॉग तो घर के अंदर भी लिया जा सकता है। तो ये जो पूरे दिन अकेले रहने वाले डॉग होते हैं जिन्हें समय से ले जाया जा रहा है, एक्सरसाइज हो रही है लेकिन सब कुछ ठीक है, पर वो पूरे दिन अकेले हैं, फिर दूसरे दिन या रात में उनको वॉक पर ले जाया जाएगा, ये वाला नज़रिया कितना ठीक है कि घर के दरवाजे पर एक डॉग पूरे दिन बैठा हुआ है अकेला और आते जाते लोगों पर वो भूख रहा है क्योंकि उससे बात करने के लिए कोई नहीं है, उसके पास समय बिताने के लिए, इसको आप कैसे देखते हैं?
2: इसमें एक्चुअली क्या होता है मैम, एक फैमिली जैसे हम मान सकते हैं कि फैमिली में सिर्फ पेरेंट्स की ही ये जिम्मेदारी नहीं होती कि वो डॉग का पूरा केयर करें, लाते तो बच्चे हैं।
1: हाँ
2: सही बात तो यह है कि लाते तो बच्चे हैं, अब बच्चे शौक शौक में ले आते हैं और फिर उसके बाद उनकी स्कूल और कोचिंग की पढ़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, जिसके बाद उनका एकदम ऐसा निग्लेक्ट होता है कि भाई आए तो कोचिंग से बैग पटका और फोन उठा के शुरू, या फिर आते ही होमवर्क शुरू हो जाता है।
1: आपने बहुत सारे अभिभावकों की दुखती रग पर हाथ रख दिया है क्योंकि मैक्सिमम घरों में यही होता है डॉक्टर साहब कि लाते तो बच्चे हैं और फिर वो पूरी तरह से जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी बन जाता है।
2: ये बहुत बड़ा इश्यूज था मैम जब कोरोना खत्म हुआ था।
1: हाँ।
2: जब कोविड टाइम चल रहा था तो एक बार घर में कोरोना के कारण कई सारे लोगों के घर में डेथ भी हुई। उस डेथ को उन्होंने उससे उभरने के लिए उन्होंने कुछ पेट्स इंट्रोड्यूस किए, किसी वाइफ ने हस्बैंड खोया तो उनने एक पेट दे दिया, किसी घर में किसी के पेरेंट ग्रैंड पेरेंट्स चले गए, किसी के बच्चे की डेथ हो गई, तो वो कहीं ना कहीं उनने एक पेट को इनकॉर्पोरेट कर लिया एज अ फैमिली मेम्बर। फिर समय आया जब वापस लॉकडाउन ओपन हुआ और जो एम्प्लॉयज़ थे, जो सर्विस कर रहे थे प्रोफेशनल्स, वो वापस अपने अपने बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, जहाँ भी उनके मुंबई शिफ्ट होना शुरू हुए। अब समस्या आई पेट्स कहाँ जाएंगे, जो अब्रॉड जाने वाले थे, अभी भी एक वॉर हुआ था उस समय काफ़ी सारे दुबई से लोग आए इंडिया में, देन अगेन दे उन्होंने यहाँ पे आके पेट्स रख लिए। अब पेट्स को साथ में ले जाना है वापस दुबई, तो कई बार कुछ पेट पेरेंट्स तो अफोर्ड कर सकते थे, बिल्कुल उनकी टिकट कराए और पूरे फॉर्मेलिटीज करके यहाँ से लेकर के गए, बट कुछ पेट पेरेंट्स ऐसे थे कि नहीं अब ये पेट यहाँ उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही रहेगा, तब बड़ी एक इशू आई। लेकिन आज की तारीख में भी मैं ऐसा बता सकता हूँ कि डॉग वॉकर्स की फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे ही हम अर्बन क्लैप्स की बात करते हैं घर में क्लीनिंग के लिए, या फिर हम क्लाउड किचन की बात करते हैं घर में कोई गेस्ट आए तो फूड के लिए, वैसे ही आज डॉग वॉकर्स की भी अवेलेबिलिटी है। यदि आप एक डॉग वॉकर भी रख सकते हैं जो सुबह शाम आपकी एब्सेंस में आकर के उसको घुमा करके एक चक्कर, जो भी उसके डेली नीड्स हैं, यूरिन, पॉटी, जो भी उसको करना है, इतना भी करा देंगे तो शायद वो एंगेज हो जाएगा।
1: अब हम रुक करते हैं अपने घर की चार दीवारी से निकलकर सड़क की ओर और ऐसे बात करते हैं ऐसे पशुओं की जो घरों में नहीं रहते, उनकी हम और या और समाज के लोग किस तरह मदद कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि उनके आसपास सड़कों पर रहने वाले जानवर बीमार हैं या उन्हें कुछ ज़रूरतें हो सकती हैं, इसकी कंडीशनिंग के लिए क्या व्यवहार हो सकता है?
2: देखिए मैम, अपन ये देखें कि दयालुता जो होती है, दयालु जो आदमी है, वो सिर्फ सोचने भर की बात नहीं होनी चाहिए, हमारे कार्यों में दिखनी चाहिए
1: जी।
2: यदि हम एक छोटे से चिड़िया के लिए एक पानी का सकोरा, हमारे घर के बाहर रहने वाले डॉग के लिए, कई बार होता है कि डॉग कार के नीचे, मेरी डेली कार खड़ी रहती है घर के बाहर, और उस कार के नीचे हमेशा डॉग या फिर कोई कैट आराम करती ही है। अभी भी मैं जस्ट आया हूँ तो मेरे एक डॉग आराम कर रहा था, और मैंने उसको डॉग का फूड वहाँ पे खोल के रैपर डाला, वो उठ के आधा खाया और आधा वो वापस सो गया, मुझे मालूम है कि वो शाम को फिर खाएगा। तो ये दयालुता जो है, ये बेसिकली हमारे एक संवेदनशीलता सिर्फ मानसिक तक नहीं रहनी चाहिए, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी दिखनी चाहिए। जैसे ही हम ये थोड़ा सा अपना दिन का 1% भी उसमें ऐड कर देंगे, तो हम लोग इस चीज़ पे ओवरकम कर पाएंगे। आज की तारीख में यदि हम बात करते हैं वन हेल्थ का कंसेप्ट जो है, जिसमें एनिमल्स, ह्यूमंस एंड द एग्रीकल्चर, ये तीनों चीज़ का कंसेप्ट है, जिसमें ये बात बहुत सही बात है कि फार्म टू फोर्क, यदि हम पोल्ट्री फार्म की बात करें, हम डेयरी फार्म की बात करें, या फिर हम कोई एग्रीकल्चरल लैंड की बात करें, इट कम्स ऑन टू अ टेबल। हमारी सुबह उठने की चाय, हमारी दिवाली की मिठाई, हर चीज दूध से आ रही है। तो क्या हमारी ये बेसिक नीड नहीं है कि एनिमल्स का होना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है? तो जो ये वन हेल्थ का कंसेप्ट है, ये भी बहुत ज़रूरी है हमको आज समझने के लिए, कि हम उनकी आँखों से एक बार देखें कि हमारे पेट के घर के बाहर हैं, कोई बात नहीं, आप उसके लिए एक पानी रख दीजिए, एक कटोरी दूध मिला के, पानी मिला के डाल दीजिए, आप कुछ बिस्किट्स डाल सकते हैं, कई लोग होते हैं जिनके घर में तो बिस्किट्स होते ही हैं, बिस्किट्स डाल सकते हैं, आपकी एक रोटी डाल सकते हैं। अभी तो वैसे भी श्राद्ध का महीना चल रहा है, डॉग्स को रोटी खिलाना एक है, श्राद्ध में एक दिन होता है उसमें डॉग्स को रोटी भी खिलाई जाती है, कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि गायों को गोग्रास दिया जा रहा है और चीटियों को भी दिया जा रहा है, कौओं को भी दिया जा रहा है। तो ये एक इस प्रकार का पुण्य को ही मान के हम क्यों ना कर लें कि हम साल भर ही एक गाय को रोटी खिला दें या एक डॉग को रोटी खिला दें।
1: बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, मतलब आपके बहाने से ही, क्योंकि वो मैंने देखा है अनुभव से, मैं कहना चाहूँगी कि एक बहुत बड़ी चीज़ कॉन्टीन्यूटी की भी होती है। आप 10 दिन लगातार काम करें तो वो पंछी भी आपका इंतज़ार करने लगते हैं और वो पशु भी आपका इंतज़ार करने लगते हैं। क्योंकि मैं एक जगह ग्वालियर में गई थी तो मैंने देखा कि वहाँ सुबह होते ही सर वो दाना डालती हैं और लगभग 100-150 पक्षी आकर सुबह 5 बजे, अगर हम लोग गए हुए थे तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोल पाया तो उनकी दरवाजे पे बकायदा चिड़ियाँ चोंच मारने लगी। तो ये देख के लगा कि जैसे हम कोई पिक्चर देख रहे हैं, क्योंकि अब ये नहीं हो सकता, तो मतलब उन्हें भी इतनी सजगता है कि हमारा टाइम हो गया।
2: ये बताइए, मैं तो सिंपल सी बात कहता हूँ, आपने कौवा कब से नहीं देखा?
1: सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बहुत दिनों से नहीं देखा, हम जैसे सब लोगों ने बहुत दिनों से नहीं देखा।
2: आज की तारीख में भोपाल में कौवे ढूंढना भी एक बड़ी टास्क हो गई। बहुत सारे बर्ड वॉचर्स से मैंने पूछा, वो बोले, कई लोग बताए कि वन विहार साइड में देखे गए, कोई लोग बताए कि न्यू मार्केट में रोशनपुरा चौराहे के आसपास कहीं देखा गया। तो आज अभी 2-3 दिन पहले की बात है, एक न्यूज़पेपर में ही बात चल रही थी कि कौवे कहाँ हैं। तो यदि हम एक छोटा सा, जैसा आपने बताया, एक प्रयास है, यदि आप एक छोटे से बर्ड्स को दाना डाल रहे हैं तो इससे कम से कम बर्ड्स आपका इंतजार कर रहे हैं। तो मैं ये बोलता हूँ कि शायद आज हम भी दाना डालना शुरू करें और हमारे भोपाल में कौवे वापस आए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वरना वो गाने खत्म हो जाएंगे जो झूठ बोले कौवा काटे। मुझे लगता है ऐसे गानों की कहीं प्रासंगिकता ही नहीं बचेगी। तो शुरू से हमारे देश में समृद्धता का परिचय ही ऐसे होता था सर, कि पशु मवेशी अगर हमारे घर में है, अनाज हमारे यहाँ भरपूर है तो समृद्ध हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि हम लोग बहुत आपस में ही सिमट के रह गए हैं। बहुत अच्छी बातें हो रही हैं आपसे, और भी मेरा जाने का मन है। एक जो और सवाल है मेरा, कि कोई सड़क के पशु पक्षियों के लिए अगर कोई मदद करना चाहता है तो कई बार हम दया के चलते खुद ही मदद करने लग जाते हैं, और इसका कई बार उल्टा भी होता है। अगर डॉग परेशान है या और भी कोई पशु परेशान है तो उल्टा कई बार वो लोग पलट के भी हमला

0: हैं पहले ये डिसाइड करें, इफ़ यू आर इन दी सिटी या आप हाईवे पे हैं या जिस भी एरिया में हैं, वहाँ पे 1962 एक डायल करके एक एनिमल एम्बुलेंस चल रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चल रही है, और इसमें वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया का भी बहुत बड़ा योगदान रहा इस एम्बुलेंस को डिज़ाइन कराइंग में और इसका इम्पैनलमेंट में, इसको स्टार्ट करने में पॉलिसी को। तो जैसे ही ये पॉलिसी और ये एम्बुलेंस स्टार्ट हो गई, ये सेवाएं अब चालू हैं, हम कभी सोचते थे कि हमको डायल 108 आके एम्बुलेंस ह्यूमंस के लिए लेगी,
1: जी
0: बट आज 1962 जा करके पेट्स का, स्ट्रे एनिमल्स का, इवन जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं यदि कहीं रोड पे एक्सीडेंटल हैं तो आप उस एम्बुलेंस को बुला करके उनका प्राथमिक उपचार करा सकते हैं या रिपोर्ट कर सकते हैं आसपास के। फिर उसमें जो सर्विलेंस टीम रहती है वो आगे आसपास में कोऑर्डिनेट करके उस चीज़ को रेस्क्यू करवा लेती है उस एनिमल को।
1: बिल्कुल, 1962 ये नंबर याद रखा जाए श्रोताओं, क्योंकि एक बहुत ही अहम नंबर है। एक और समस्या है, एक तरफ हैं जो लोग बहुत मतलब कहते हैं कि डॉग लवर्स हैं, और दूसरी तरफ हैं जिन्हें लगता है कि घर के आसपास और सड़क पर इतने डॉग्स नहीं होने चाहिए। ये एक बहुत बड़ा कारण है जो कई बार मैंने देखा है पड़ोसी पड़ोसी से बहस कर जाते हैं। इस विषय में अगर आप कुछ प्रकाश डालना चाहें।
0: मैम, मैंने तो ये देखा है कि एक आज रात है तो कल सुबह होगी और सुबह है तो रात होगी। यदि कोई एक पशुपालक है, यदि कोई पशु पाल रहा है, जैसे अभी हमारी चर्चा हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो मैम ने यही कहा कि भाई अब सर एक के बाद दूसरा रखने के मन नहीं मान रहा। क्यों? क्योंकि पहले हम रख रहे थे, फिर अब हम नहीं रख रहे हैं। ऐसे ही हमारे घर में भी बहुत, हमारी दादी जी थी और हमारी नानी जी हैं, वो लोग का ये है कि नहीं, पशु नहीं होना चाहिए। और आज की तारीख में ये है कि हमारी नानी जी भी पशु रखी हैं और हमारी दादी जी के, हमारे घर में भी पशु है। तो ऐसा मन बदलने में देर नहीं लगती। जैसे ही ये उनके मन में, और मैं बता रहा हूँ ना, आप उनके घर में देखेंगे जैसे ही जनरेशन 1, 2, 4, 5, 10 साल हो सकता है आदमी के अंदर हट रहेगी, जैसे ही नाती पोते आते हैं और घर में सब बदल जाता है,
1: बिल्कुल
0: सबको मना लेते हैं।
1: आपसे बात करके बहुत बेहतरीन दृष्टि भी मिल रही है कि कैसे पशुओं की नज़र से संसार को देखा जाए। सर, एक आखिरी सवाल है हमारे श्रोताओं के लिए कि हमारे श्रोताओं को हम ये बात कैसे समझा पाएँ, किस संदेश के माध्यम से समझा पाएँ, ताकि पशुओं के प्रति अधिक संवेदनशील, जिम्मेदार और जागरूक समाज बनाने में वो भी अपनी भूमिका निभा सकें।
0: पशुओं की देखभाल केवल भोजन और आश्रय तक सीमित नहीं है, समय पर टीकाकरण, नियमित स्वास्थ्य जांच, सही पोषण और तनाव मुक्त वातावरण देना भी बेहद जरूरी है। यही पशु पालतू पशुओं की संवेदनशीलता और देखभाल रखने के लिए बेसिक नीड है।
1: श्रोताओं, आज जो हमारी बातचीत हुई है उस लिहाज से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि पशुओं के स्वास्थ्य, उनकी देखभाल, उनके प्रति जिम्मेदारी से जुड़े इतने महत्वपूर्ण विषय आज इस बातचीत में उठे हैं, और निश्चित ही आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये साझी धरती है इंसानों की भी और जानवरों की भी, पशुओं की भी, पक्षियों की भी। तो हमको थोड़ा और संवेदनशील होने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए, आपने हमसे इतनी अच्छी और इतनी जानकारी भरी बातें की, आपका बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद, और आप सभी को भी एक बार फिर विश्व पशु दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: अभी आप सुन रहे थे विश्व पशु दिवस पर विशेष कार्यक्रम। इस बातचीत में हमारे साथ थे डॉक्टर अंकुर नारद। इसी के साथ ये बातचीत अब यहीं समाप्त होती है। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे विश्व पशु कल्याण दिवस पर विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर नारद से मनीषा चतुर्वेदी की बातचीत। इसके साथ ही हमारा आज का विशेष कार्यक्रम संपन्न होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहें रेडियो आजाद हिंद।
3: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आज़ादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है। जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
4: चाय और फर का व्यापार। अलास्का की बर्फ में ब्रिटिश साम्राज्य की खोज। क्या आप जानते हैं कि चाय के लिए अंग्रेजों की प्यास इतनी बेकाबू हो गई थी कि उसने साहसी यात्रियों को भारत के तपते बंदरगाहों से अलास्का के जमे हुए अनछुए तटों तक केवल फर यानी जानवरों की खाल के शिकार के लिए जाने पर मजबूर कर दिया। 18वीं सदी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी एक भयानक वित्तीय संकट का सामना कर रही थी। ब्रिटिश जनता साल में 90 लाख पाउंड की चाय पी रही थी, लेकिन चीन का स्वर्गीय साम्राज्य ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। क्या आप जानते हैं कि चाय के बदले में चीनी लोग वास्तव में केवल चांदी को ही महत्व देते थे। इसने व्यापार में एक बहुत बड़ा अंतर यानी ट्रेड गैप पैदा कर दिया। और जब यूरोपीय युद्धों के कारण चांदी की आपूर्ति अत्यंत कम हो गई तो कंपनी एक नई वस्तु के लिए बेताब हो गई जिसके बदले चाय खरीदी जा सके। समाधान कैप्टन जेम्स कुक की पत्रिकाओं से मिला, जिसमें एक ऐसे जीव का वर्णन था जिसका फर इतना शानदार था कि उसे एशिया का एरमाइन कहा जाता था। यह जीव था सी ऑटर, समुद्री ऊदबिलाव। क्या आप जानते हैं कि कैंटन के बाजारों में समुद्री ऊदबिलाव की एक खाल की कीमत शाब्दिक रूप से चांदी के उसके वजन के बराबर थी। उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में इस नए गोल्ड कोस्ट ने एक समुद्री होड़ पैदा कर दी। 1785 में जेम्स स्ट्रेंज नामक एक कंपनी कर्मचारी ने कुक की यात्रा के वृत्तांत पढ़े और बॉम्बे के व्यापारियों को एक अभियान के लिए वित्त पोषित करने के लिए राजी किया। कैप्टन कुक और एक्सपेरिमेंट नामक जहाजों पर सवार होकर जेम्स स्ट्रेंज अमेरिका और चीन के बीच वाणिज्यिक संपर्क का एक नया चैनल स्थापित करने के लिए प्रशांत महासागर की ओर निकल पड़ा। उसी समय कलकत्ता में द बंगाल फॉर सोसाइटी नामक एक प्रतिद्वंद्वी समूह ने कैप्टन जॉन मेयर्स को उसी बर्फीले पानी में भेज दिया। उसी समय कलकत्ता में द बंगाल फॉर सोसाइटी नामक एक प्रतिद्वंद्वी समूह ने कैप्टन जॉन मेयर्स को उसी बर्फीले पानी में भेज दिया। क्या आप जानते हैं कि आपकी सुबह की चाय के प्याले के लिए इन नाविकों ने कितनी भयानक कीमत चुकाई? स्ट्रेंज 1786 में अलास्का के दक्षिणी तट पर पहुंचा, जहां उसने पाया कि उसका प्रतिद्वंद्वी मेयर्स पहले से ही वहां मौजूद था। लेकिन मेयर्स ने आर्कटिक की भीषण सर्दियों को कम करके आंका था। उसका जहाज नूत का स्नक कॉर्नर कोव में बर्फ में फंस गया था। जैसे जैसे बर्फ जमती गई, चालक दल स्कर्वी रोग और ऐसी भीषण ठंड की चपेट में आ गया जिसके लिए वे तैयार नहीं थे। जब मई में बर्फ पिघली, तब तक उसके 31 में से 21 आदमी मर चुके थे। इतनी मौतों के बावजूद यह व्यापार आर्थिक रूप से एक बड़ी जीत थी। क्या आप जानते हैं कि इन पहले अभियानों द्वारा एकत्रित की गई 3000 खालें कैंटन में इतने भारी मूल्य पर बिकी कि उन्होंने मूल निवेश का मूल्य दुगना कर दिया। इस सफलता के कारण अगले दशक में कम से कम 35 ब्रिटिश जहाज प्रशांत महासागर के पार फर व्यापार में लग गए। क्या आप जानते हैं कि एशिया के एरमाइन के इस व्यापार ने एक वैश्विक कूटनीति संकट को जन्म दिया था। 1789 में स्पेनिश नौसेना ने फर व्यापार करने वाले कई जहाजों को जब्त कर लिया, जिससे नूत का संकट पैदा हुआ, जिसने ब्रिटेन और स्पेन को लगभग एक विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया था। यह एक कड़वा अनुस्मारक है कि ब्रिटिश साम्राज्य का इतिहास केवल भारत के मैदानों में नहीं बल्कि अलास्का की बर्फीली लहरों में भी लिखा गया था। और इस सब के पीछे की वजह लंदन की चाय की केतलियों को उबलते रहने देने की साधारण सी बेताबी थी।
5: नमस्कार, 90.8 MHz पर आप
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम देश के संस्थान। इस कार्यक्रम में आज हम अर्थव्यवस्था के प्रहरी भारतीय रिजर्व बैंक पर जानकारी प्राप्त करेंगे।
5: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद और अब समय है हमारे कार्यक्रम देश के संस्थान का। और आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे अर्थव्यवस्था का प्रहरी भारतीय रिजर्व बैंक की।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान।
1: श्रोताओं, हमारी कार्यक्रम देश के संस्थान में रक्षा संस्थानों की यात्रा के बाद अब शुरू हो रही है हमारी नई श्रृंखला भारत के वित्तीय संस्थान, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़।
2: जी हाँ श्रोताओं, भारत की पहचान सिर्फ उसकी सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों से नहीं है, देश की मजबूती उसकी अर्थव्यवस्था से भी तय होती है। जिस तरह सीमा पर तैनात सैनिक देश की सुरक्षा का प्रहरी होता है, उसी तरह आर्थिक व्यवस्था में कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो देश की मुद्रा, बैंकिंग व्यवस्था और वित्तीय स्थिरता पर लगातार नजर रखती हैं।
1: इन्हीं महत्वपूर्ण संस्थानों की यात्रा में आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, भारत के वित्तीय संस्थान, अर्थव्यवस्था की रीढ़। और इस यात्रा की शुरुआत होगी उस संस्था से जिसे भारत की बैंकिंग और मौद्रिक व्यवस्था का केंद्र कहा जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI।
3: दादू दादू, ये क्या हो रहा है?
4: अरे बिटिया, सुबह सुबह इतनी घबराई हुई क्यों दौड़ी चली आ रही हो?
3: दादू, एक बड़ी गड़बड़ हो गई है।
4: क्या हुआ?
3: मैं दुकान से सामान लेकर आई थी, मैंने दुकानदार को 500 रुपए दिए और उसने मुझे वापस पैसे भी दिए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसने कितने पैसे मुझे वापस किए।
4: अरे तो इसमें गड़बड़ क्या है, हिसाब लगाओ।
3: अरे दादू, यही तो नहीं हो रहा ना। देखिए, मेरे पास ये 10 का सिक्का है, ये 20 का नोट है और ये 50 का नोट और ये।
4: अच्छा, अरे भाई पहले सामान की कीमत बताओ।
3: दादू, कुल 370 रुपए।
4: तो 500 में से 370 घटाओ।
3: एक मिनट दादाजी, 130 रुपए हुए।
4: हाँ बिल्कुल सही।
3: ओह, तो हिसाब तो हो गया, लेकिन दादू एक बात बताइए।
4: पूछो बेटा।
3: ये नोट और सिक्के आते कहाँ से हैं? और कौन तय करता है कि देश में कितने पैसे होने चाहिए?
4: वाह बिटिया वाह, आज सुबह सुबह तुमने ऐसा सवाल पूछ दिया है कि हमारी नई

0: बिल्कुल बिटिया होती है, जैसे देश की सीमा पर सेना प्रहरी होती है, वैसे ही देश की आर्थिक व्यवस्था में कुछ संस्थाएं प्रहरी की भूमिका निभाती हैं।
1: और उनमें सबसे बड़ा प्रहरी कौन होता है?
0: आज की हमारी कहानी उसी प्रहरी की है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI।
1: तो यानी आज हमारी कहानी नोटों से शुरू होने वाली है दादू।
0: नोटों से शुरू होगी, लेकिन सिर्फ नोटों पर खत्म नहीं होगी। आज हम जानेंगे उस संस्था के बारे में जो भारत की मौद्रिक और बैंकिंग व्यवस्था में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: सो तो है दादू, पर आप ये बताइए कि ये RBI बना ही क्यों?
0: इसका जवाब जानने के लिए हमें आज से लगभग 9 दशक पीछे जाना होगा। उस समय भारत की बैंकिंग और मुद्रा व्यवस्था आज जैसी विकसित और संगठित नहीं थी। देश को एक ऐसी केंद्रीय संस्था की आवश्यकता महसूस हो रही थी जो मुद्रा और ऋण व्यवस्था को व्यवस्थित करे और बैंकिंग प्रणाली में स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।
1: मतलब एक ऐसी संस्था जो पूरी आर्थिक व्यवस्था के लिए केंद्र की तरह काम करे। सही कहा ना मैंने?
0: बिल्कुल, इसी दिशा में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशें महत्वपूर्ण रहीं। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 बनाया गया और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन। इसी दिन भारतीय रिजर्व बैंक ने काम करना शुरू किया।
1: तो RBI की स्थापना की तारीख क्या थी दादाजी?
0: बिटिया रानी, वो ऐतिहासिक दिन 1 अप्रैल 1935 का था।
1: अच्छा?
0: हाँ
1: दादू, वैसे मैं इस तारीख को अब कभी नहीं भूलूंगी।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा।
1: अच्छा दादू, ये बताइए ना कि जब RBI बना था तो उसका मुख्यालय कहाँ पर था?
0: शुरुआत में RBI का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था।
1: अच्छा, फिर वो मुंबई कैसे पहुँचा?
0: सिर्फ 2 साल बाद यानी 1937 में RBI का केंद्रीय कार्यालय स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। तुम इसे ऐसे याद रखो रुचि, 1935 कोलकाता से शुरुआत और 1937 मुंबई में स्थायी ठिकाना।
1: और आज?
0: अरे आज भी RBI का केंद्रीय कार्यालय मुंबई में ही है।
1: एक बात बताइए दादाजी।
0: हाँ?
1: क्या RBI सरकार का बैंक है?
0: दरअसल RBI केंद्र सरकार का बैंकर है और समझौते के आधार पर राज्य सरकारों के लिए भी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है।
1: मतलब सरकार के भी बैंकिंग काम होते हैं दादू?
0: हाँ बिल्कुल, सरकार को धन प्राप्त करना होता है, भुगतान करना होता है, खातों का प्रबंधन करना होता है और सरकार के ऋण का प्रबंधन भी करना होता है। इन कार्यों में RBI की महत्वपूर्ण भूमिका है।
1: तो जैसे हमारा बैंक हमारे पैसों से जुड़े काम करता है, वैसे ही RBI सरकार के बैंकिंग कामों में मदद करता होगा।
0: हाँ, लेकिन RBI की भूमिका इससे कहीं बड़ी है।
1: बैंक जहाँ हम पैसे जमा करते हैं दादू?
0: हाँ, और यहीं आता है RBI का एक बहुत महत्वपूर्ण परिचय, RBI यानी बैंकों का बैंक।
1: बैंकों का बैंक?
0: हाँ बिटिया, कल्पना करो किसी स्कूल में बच्चे अपनी कक्षा के शिक्षक के पास जाते हैं, लेकिन शिक्षकों के लिए भी एक व्यवस्था होती है। ठीक उसी तरह बैंकिंग प्रणाली के लिए RBI केंद्रीय भूमिका निभाता है। बैंकों के RBI के साथ खाते होते हैं। बैंकिंग व्यवस्था में भुगतान और निपटान से जुड़े कई काम RBI की व्यवस्था के माध्यम से होते हैं और यदि बैंकिंग व्यवस्था में तरलता की जरूरत हो तो RBI महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
1: तरलता, ये क्या है दादू?
0: हाँ बेटी, लिक्विडिटी यानी आसानी से उपलब्ध धन।
1: अच्छा, यानी बैंकिंग व्यवस्था में पैसे का प्रवाह ठीक रहना भी जरूरी है।
0: बिल्कुल, और इसी कारण RBI को कई बार लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट भी कहा जाता है, यानी आवश्यकता की अंतिम स्थिति में पात्र बैंकों को सहायता देने वाली केंद्रीय संस्था।
1: दादू
0: हाँ?
1: अब मेरी सबसे बड़ी उलझन दूर कर दीजिए।
0: बताओ।
1: RBI का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में नोट क्यों आने लगते हैं दादू?
0: क्योंकि RBI मुद्रा व्यवस्था से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है।
1: तो RBI सारे नोट छापता है दादू?
0: रुचि, यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा। RBI बैंक नोटों के जारीकरण और मुद्रा प्रबंधन की प्रमुख जिम्मेदारी निभाता है, लेकिन सिक्कों को भारत सरकार ढालती है

0: और RBI उन्हें प्रचलन में लाता है।
1: तो नोट और सिक्कों की दोनों की पूरी कहानी अलग अलग है दादाजी?
0: हाँ, और मुद्रा प्रबंधन का मतलब केवल नोट छापना नहीं है, इसमें ये सुनिश्चित करना भी शामिल है कि देश में जरूरत के अनुसार पर्याप्त मुद्रा उपलब्ध हो, अच्छी गुणवत्ता की मुद्रा लोगों तक पहुंचे और अनुपयुक्त या पुराने नोट व्यवस्था से हटाए जाएं।
1: मतलब नोट हमारे हाथ तक पहुंचने से पहले एक पूरी व्यवस्था से गुजरता है?
0: बिल्कुल।
1: दादू, RBI आज भारत सरकार के स्वामित्व में है, क्या ये हमेशा से ऐसा था?
0: नहीं, ये तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा रुचि। जब RBI की स्थापना हुई थी तब ये शेयर धारकों के स्वामित्व वाली संस्था थी, लेकिन स्वतंत्र भारत में इसका एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ।
1: यानी तब RBI भारत सरकार के स्वामित्व में आ गया दादू?
0: हाँ, और इसके बाद RBI स्वतंत्र भारत की आर्थिक व्यवस्था के निर्माण में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा।
1: तो RBI की कहानी में 3 तारीखें बहुत जरूरी हुई दादू, पहली 1935 की स्थापना, दूसरी 1937 में मुंबई आना और तीसरी 1949 में राष्ट्रीयकरण।
0: शाबाश रुचि, तुम्हारी याददाश्त तो कमाल की है।
1: थैंक यू दादू।
0: बहुत अच्छे।
1: अच्छा, अब आप मुझे वो शब्द बताइए दादाजी जो टीवी पर बार बार सुनाई देता है।
0: कौन सा शब्द बेटा?
1: मौद्रिक नीति दादू, मैं इसे अक्सर न्यूज पेपर टीवी रेडियो सब पर सुनती रहती हूँ।
0: हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लो बाजार में लोगों के पास खर्च करने के लिए बहुत पैसा है, लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं और चीजों की मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अगर सामान उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो बताओ क्या हो सकता है?
1: सिंपल दादू, चीजों के दाम बढ़ जाएंगे।
0: हाँ, यानी महंगाई बढ़ सकती है।
1: तो फिर इसे रोकने के लिए क्या किया जाए?
0: ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक यानी RBI ब्याज दरों जैसे कुछ नीतिगत साधनों का इस्तेमाल करके अर्थव्यवस्था में पैसे और कर्ज के प्रवाह को प्रभावित करने की कोशिश करता है।
1: लेकिन दादू, RBI ये कैसे करता है?
0: अच्छा, हम मान लो RBI ब्याज दरें बढ़ाता है, तब बैंकों के लिए RBI से पैसा लेना महंगा हो सकता है। इसका असर आगे चलकर बैंकों की ब्याज दरों पर भी पड़ सकता है,
1: और फिर लोग ज्यादा ब्याज देखकर कम लोन लेंगे।
0: हाँ, इससे बाजार में खर्च और उधारी की रफ्तार पर असर पड़ सकता है और महंगाई के दबाव को कम करने में मदद मिल सकती है।
1: अच्छा।
0: हाँ,
1: तो अगर RBI ब्याज दरें घटाए तो इसका उल्टा असर हो सकता है दादू?
0: अब सही समझी, ब्याज दरें कम होने पर कर्ज लेना अपेक्षाकृत सस्ता हो सकता है, इससे लोग और कंपनियां ज्यादा उधार लेकर घर, गाड़ी, कारोबार या दूसरे कामों में निवेश कर सकते हैं, इससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है।
1: अब समझे दादू, यानी RBI ब्याज दरों और दूसरे साधनों के जरिए अर्थव्यवस्था में पैसे और कर्ज की रफ्तार को प्रभावित करता है।
0: बिल्कुल बिटिया, और यही समझने की सबसे आसान कुंजी है मौद्रिक नीति, यानी RBI की वो नीति जिसके जरिए वो अर्थव्यवस्था में पैसे और कर्ज की परिस्थितियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है।
1: समझ गए दादू, अब आपकी रुचि मौद्रिक नीति सुनकर डरेगी नहीं।
0: ये अभी तो हमने बस शुरुआत की है बिटिया, अब तुम्हें समझना है कि इस पूरी कहानी में रेपो रेट का क्या काम है।
1: रेपो रेट?
0: हाँ। अच्छा, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो किसी बैंक को थोड़े समय के लिए धन की जरूरत है।
1: ओके।
0: कुछ परिस्थितियों में बैंक RBI से निर्धारित व्यवस्था के तहत धन उधार ले सकता है। जिस ब्याज दर पर ये धन उधार दिया जाता है उसे रेपो रेट कहा जाता है।
1: और रेपो रेट बढ़ जाए दादाजी तो?
0: तो सामान्यतः बैंकों के लिए RBI से धन लेना महंगा हो जाता है, इसका असर आगे चलकर बैंक की ब्याज दरों और ऋण की लागत पर पड़ सकता है।
1: मतलब दादू, अगर मैंने घर खरीदने के लिए लोन लिया हो तो ब्याज दर बढ़ने पर मेरी EMI भी प्रभावित हो सकती है?
0: हाँ, खासकर फ्लोटिंग और रेट लोन्स में।
1: और अगर रेपो रेट घटे तो?
0: तो परिस्थितियों के अनुसार बैंकों के लिए धन की लागत कम हो सकती है और उसका असर ऋण की ब्याज दरों तक पहुंच सकता है।
1: तो RBI का एक फैसला बैंक से होता हुआ आम आदमी की जेब तक पहुंच सकता है?
0: हाँ, बिल्कुल सही समझी, यही वजह है कि RBI की मौद्रिक नीति की घोषणा पर पूरा देश ध्यान देता है।
1: दादू, अगर बाजार में चीजें महंगी हो रही हो तो आरबीआई इसमें क्या करता है?
0: सबसे पहले बिटिया ये समझो कि महंगाई यानी इन्फ्लेशन कई कारणों से बढ़ सकती है। खाद्य पदार्थों की कीमतें, ईंधन, आपूर्ति में बाधा, मांग में बदलाव, वैश्विक परिस्थितियां और बहुत से कारण हो सकते हैं। आरबीआई का काम हर वस्तु की कीमत तय करना नहीं है, लेकिन मौद्रिक नीति के माध्यम से आरबीआई व्यवस्था में मांग और ऋण की स्थितियों को प्रभावित कर सकता है और मूल्य स्थिरता के लक्ष्य की दिशा में काम करता है।
1: यानी अगर अर्थव्यवस्था में महंगाई का दबाव बहुत ज्यादा हो तो ब्याज दरों में बदलाव एक रास्ता हो सकता है दादू।
0: हाँ, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है।
1: मतलब आरबीआई कहे और अगले दिन सब्जी 20 रुपए किलो सस्ती?
0: अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं।
1: तो मैं कल सब्जी वाले से ये नहीं कह सकती कि आरबीआई ने दरें बदल दी हैं, आप टमाटर सस्ता करो?
0: अरे बिल्कुल नहीं।
1: अच्छा दादू, एक सवाल और, भारत के पास डॉलर कहाँ से आते हैं?
0: देखो, भारत दुनिया के अनेक देशों के साथ व्यापार करता है। हम वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करते हैं, विदेशों से निवेश आता है और अनेक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन होते हैं। इन सब के बीच देश के पास विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां होती हैं।
1: और इन्हें संभालता कौन है?
0: आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा भंडार का भी प्रबंधन करता है।
1: विदेशी मुद्रा भंडार मतलब देश के पास दूसरे देशों की मुद्राओं और संबंधित विदेशी परिसंपत्तियों का भंडार?
0: हाँ, सही समझी। ये भंडार देश की बाहरी आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। आरबीआई विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: तो आरबीआई सिर्फ भारत के रुपए को नहीं देखता दादाजी, बल्कि दुनिया के साथ भारत के आर्थिक संबंधों पर भी नजर रखता है।
0: बिल्कुल
1: दादू, मान लो किसी कैफे में मैंने कॉफी पी।
0: हाँ?
1: और उसको मोबाइल से पेमेंट कर दिया।
0: बहुत बढ़िया।
1: लेकिन दादू, आरबीआई तो 1935 में बना था ना, तब तो मोबाइल ही नहीं था।
0: अरे यही तो भारत की आर्थिक यात्रा है बिटिया। 1935 में जब आरबीआई शुरू हुआ था तब दुनिया अलग थी। आज हम डिजिटल पेमेंट्स के युग में हैं। लोग मोबाइल से पैसे भेजते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं और कुछ ही सेकंड में भुगतान हो जाता है।
1: वो तो मुझे समझ में आया दादू, लेकिन इसमें आरबीआई की क्या भूमिका है?
0: बिटिया, आरबीआई देश की भुगतान और निपटान प्रणालियों के नियमन और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि पेमेंट सिस्टम्स सुरक्षित, कुशल और भरोसेमंद तरीके से काम करें।
1: यानी मेरे मोबाइल पर सिर्फ पेमेंट सक्सेसफुल लिखा दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे पूरी वित्तीय व्यवस्था काम कर रही होती है।
0: बिल्कुल, तुम्हें कुछ सेकंड दिखाई देते हैं, लेकिन उस छोटे से डिजिटल पेमेंट के पीछे बैंक, पेमेंट सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की पूरी दुनिया काम कर रही होती है।
1: दादू, मैं तो अब तक सोचती थी कि आरबीआई का काम सिर्फ बड़े बड़े बैंक और सरकार से ही जुड़ा होता होगा।
0: नहीं बिटिया, आरबीआई का काम आम आदमी के जीवन को भी कई तरीकों से प्रभावित करता है।
1: कैसे?
0: अच्छा, जब तुम बैंक में खाता खोलती हो, जब बैंक से लोन लेती हो, या जब ब्याज दरों में बदलाव होता है, या फिर जब डिजिटल पेमेंट करती हो, जब देश की मुद्रा व्यवस्था की बात करती हो, तो इन सब के पीछे आरबीआई की किसी न किसी भूमिका को समझा जा सकता है।
1: और अगर बैंकिंग व्यवस्था में भरोसा और स्थिरता ना हो तो
0: पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है बिटिया। इसीलिए केंद्रीय बैंक की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण होती है।
1: ओ, अब मैं समझी दादू कि आपने आरबीआई को अर्थव्यवस्था का प्रहरी क्यों कहा था।
0: अच्छा, तो बताओ क्यों कहा जाता है?
1: वो इसलिए क्योंकि आरबीआई मुद्रा व्यवस्था पर नजर रखता है, बैंकों के लिए केंद्रीय भूमिका निभाता है, सरकार का बैंकर है, मौद्रिक नीति संभालता है, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है और डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था को भी सुरक्षित और व्यवस्थित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
0: बहुत खूब, लेकिन एक बात और, आरबीआई का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में विश्वास और स्थिरता बनाए रखने में योगदान देना भी है, क्योंकि किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ पैसा नहीं, भरोसा है।
1: भरोसा?
0: हाँ, लोगों को भरोसा होना चाहिए कि उनका बैंकिंग सिस्टम काम करेगा, भुगतान प्रणाली काम करेगी, मुद्रा व्यवस्था व्यवस्थित रहेगी और आर्थिक नीतियाँ देश की स्थिरता को ध्यान में रखकर बनाई जाएंगी। बिटिया, इसी भरोसे से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है।
1: दादू ये बात तो एकदम सही कही आपने।
0: अच्छा कितनी मजे की बात है ना रुचि बेटा, 1935 में शुरू हुई एक संस्था की कहानी हमें भारत की आर्थिक यात्रा के कई पड़ावों से होकर यहाँ ले आई। कोलकाता से मुंबई तक नोटों से डिजिटल भुगतान तक, बैंकों से मौद्रिक नीति तक और देश की मुद्रा व्यवस्था से वैश्विक वित्तीय दुनिया तक।
1: बिल्कुल सही कहा दादाजी आपने। अच्छा दादू एक बात और बताइए ना, अगर RBI 1935 में बना था तो फिर इसकी कहानी आगे कैसे बढ़ी?
0: बिटिया संस्थाएं भी समय के साथ बदलती हैं। देश बदला, अर्थव्यवस्था बदली, तकनीक बदली, बैंकिंग बदली और RBI की जिम्मेदारियां भी समय के साथ विकसित होती गईं। आज का RBI केवल कागजी नोटों की दुनिया का संस्थान नहीं है, ये आधुनिक भारत की बैंकिंग, मौद्रिक व्यवस्था, वित्तीय स्थिरता, विदेशी मुद्रा और भुगतान प्रणाली से जुड़ी एक महत्वपूर्ण संस्था है।
1: सो तो है दादू। वैसे एक बात बताइए, आज की इस पूरी कहानी को मैं एक वाक्य में कैसे याद रखूं भला?
0: अरे बहुत आसान है, जब भी RBI का नाम सुनो याद करो कि भारत की मुद्रा और मौद्रिक व्यवस्था का केंद्रीय प्रहरी है।
1: अब मुझे लग रहा है कि RBI सिर्फ बैंकिंग व्यवस्था का कोई दूर बैठा हुआ संस्थान नहीं है। इसका असर तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तक भी आता है।
0: बिल्कुल बिटिया, और यही बात समझना सबसे जरूरी है। लेकिन अब मैं तुम्हें RBI की एक ऐसी भूमिका के बारे में बताता हूँ जिसके बारे में आमतौर पर कम बात होती है।
1: कैसी भूमिका दादू?
0: फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी वित्तीय स्थिरता।
1: वित्तीय स्थिरता इसका क्या मतलब हुआ?
0: इसका मतलब है कि देश का फाइनेंशियल सिस्टम इतना मजबूत और भरोसेमंद हो कि बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और पेमेंट सिस्टम्स सामान्य परिस्थितियों के साथ साथ मुश्किल परिस्थितियों में भी अपना काम करते रहें।
1: यानी अगर फाइनेंशियल सिस्टम में अगर कोई परेशानी आ जाए तो उसका असर सिर्फ बैंकों तक नहीं रहेगा?
0: बिल्कुल नहीं। सोचो अगर बैंकिंग सिस्टम में लोगों का भरोसा कमजोर हो जाए, पेमेंट्स रुकने लगे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बड़ी समस्या पैदा हो जाए तो उसका असर बिजनेसेस, जॉब्स, इन्वेस्टमेंट्स और आम लोगों की जिंदगी तक पहुंच सकता है। इसलिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिर्फ इकोनॉमिस्ट की चिंता नहीं है बेटी, ये पूरी इकोनॉमी के लिए जरूरी है।
1: वो सब तो ठीक है दादू।
2: हाँ।
1: लेकिन RBI इसमें क्या करता है?
0: अरे RBI बैंकिंग सेक्टर की निगरानी और रेगुलेशन करता है, बताया ना प्रहरी। बैंकों की फाइनेंशियल हेल्थ, रिस्क मैनेजमेंट और उनके कामकाज से जुड़े नियमों पर नजर रखना इसी व्यापक व्यवस्था का हिस्सा है।
1: यानी RBI सिर्फ ये नहीं देखता कि बैंक पैसा दे रहा है या नहीं, बल्कि ये भी देखता है कि बैंक खुद कितना सुरक्षित तरीके से काम कर रहा है।
0: हाँ, बिल्कुल सही।
1: दादू आजकल तो बैंकिंग पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर होती जा रही है, क्या इससे RBI के सामने नई चुनौतियाँ भी आती होंगी?
0: बिटिया आज किसी बैंक की शाखा सिर्फ उसकी बिल्डिंग नहीं है, उसके पीछे विशाल कंप्यूटर नेटवर्क्स, डेटा सेंटर्स, मोबाइल एप्लीकेशंस, पेमेंट प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर काम करता है। अच्छा एक ग्राहक अपने मोबाइल पर कुछ सेकंड में पेमेंट कर देता है, लेकिन उस पेमेंट के पीछे कई तकनीकी प्रणालियां एक साथ काम कर रही होती हैं।
1: वो तो है, लेकिन अगर इन सिस्टम्स में कोई गड़बड़ी हो जाए फिर
0: तो फाइनेंशियल सिस्टम पर असर पड़ सकता है। इसलिए टेक्नोलॉजी रिस्क और साइबर सिक्योरिटी आज बैंकिंग रेगुलेशन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं।
1: यानी आने वाले समय में RBI को इकोनॉमिक्स के साथ टेक्नोलॉजी भी समझनी पड़ेगी।
0: हाँ बिल्कुल, और यही वजह है कि आधुनिक सेंट्रल बैंकिंग पहले की तुलना में कहीं ज्यादा बहुविषयक हो गई है।
1: दादू अगर कोई स्टूडेंट्स RBI और फाइनेंशियल सेक्टर को समझना चाहता है तो उसे किन सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए?
0: रुचि बेटा सबसे पहले ये समझो कि फाइनेंस सिर्फ कॉमर्स तक सीमित नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट को इकोनॉमिक्स पसंद है तो मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और फाइनेंशियल मार्केट्स को समझने का रास्ता खुलता है।
1: और दादू अगर किसी को मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स अच्छे लगते हो
0: तो इकोनॉमिक मॉडलिंग, डेटा एनालिसिस और रिसर्च जैसे क्षेत्रों में अवसर है। अगर कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी में रुचि है ना बेटा, तो डिजिटल बैंकिंग, पेमेंट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, डेटा सिस्टम्स और फिनटेक जैसे क्षेत्र तेजी से महत्वपूर्ण हो रहे हैं।
1: वैसे दादू मेरी एक क्लासमेट तो लॉ पढ़ना चाहती है, तो क्या वो भी इस क्षेत्र में आ सकती है?
0: हाँ, बिल्कुल आ सकती है। बैंकिंग रेगुलेशन, फाइनेंशियल लॉज, कंप्लाइंसेस, ये सब लॉ से जुड़े क्षेत्र हैं। और अगर किसी को पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस में रुचि है, जैसे तुम्हारा नाम रुचि है, तो मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल पॉलिसी से जुड़े विषयों को समझा जा सकता है।
1: दादू, यानी स्टूडेंट्स को सिर्फ ये सोचकर करियर चूज नहीं करना चाहिए कि मुझे बैंक में नौकरी करनी है।
0: हाँ बिल्कुल, उसे पहले ये देखना चाहिए कि उसकी रुचि किस क्षेत्र में है, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, डेटा, टेक्नोलॉजी, लॉ या पब्लिक पॉलिसी, और फिर उसी दिशा में अपनी पढ़ाई और स्किल्स को मजबूत करना चाहिए।
1: दादू, एक आखिरी सवाल और।
0: अरे कितने सवाल पूछती हो तुम?
1: बस एक आखिरी दादू। आरबीआई इतना बड़ा संस्थान है, लेकिन आम आदमी इसके बारे में सबसे ज्यादा कब सोचता है?
0: अक्सर तब जब कोई आर्थिक बदलाव उसकी जिंदगी को सीधे प्रभावित करता है। लोन की इंटरेस्ट रेट बदले, महंगाई बढ़े, या बैंकिंग सिस्टम में कोई बड़ा बदलाव, या फिर डिजिटल पेमेंट से जुड़ा कोई नया नियम आए, या विदेशी मुद्रा बाजार में बड़ी हलचल हो, तब लोगों का ध्यान आरबीआई की तरफ जाता है। लेकिन वास्तव में आरबीआई की भूमिका लगातार चलती रहती है, हमें चाहे उसका एहसास हो या नहीं।
1: दादू, यानी जैसे हमारे घर में बिजली की पूरी वायरिंग हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हर कमरे में उसका असर होता है।
0: हाँ बिल्कुल बिटिया, सही समझे। 1935 में शुरू हुई आरबीआई की इस यात्रा ने स्वतंत्र भारत की बदलती आर्थिक जरूरतों के साथ कई नए आयाम देखे और समय के साथ लगातार विकसित होती रही है।
1: ये तो सही कहा दादू आपने। किसी संस्था की कहानी सिर्फ उसकी स्थापना की तारीख जान लेना नहीं होती है, बल्कि उसकी असली कहानी ये जानना है कि उसने देश के विकास में क्या भूमिका निभाई है।
0: हाँ, और यही हमारी इस पूरी श्रृंखला का उद्देश्य है, भारत के उन संस्थानों को समझना जिनके काम का असर कभी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई देता है और कभी बिना दिखाई दिए पूरी व्यवस्था को मजबूत करता रहता है।
1: वैसे दादू,
0: हाँ?
1: अगली कहानी क्या होने वाली है?
0: अरे भाई, अभी एक तो खत्म नहीं हुई। चलो ठीक है, बताते हैं भाई। अगली कहानी होगी 1955 की, और इस बार कहानी सिर्फ बैंक की नहीं होगी बल्कि बदलते हुए भारत की बैंकिंग जरूरतों की होगी।
1: चलिए दादू, अब आज के लिए यही रोकते हैं, आपकी चाय का टाइम जो हो गया है।
0: हाँ भाई, चलो अब मुझे गर्मा गर्म एक कड़क चाय पिलाओ।
1: बिल्कुल दादू। श्रोताओं, याद रखिए, देश की आर्थिक मजबूती केवल उसके बाजारों और उद्योगों से नहीं बनती, उसे मजबूत बनाते हैं वे संस्थान जो बचत, निवेश, बैंकिंग, भुगतान और वित्तीय व्यवस्था को दिशा देते हैं। और ऐसे ही संस्थानों की कहानी भारत के संस्थान में आगे भी जारी रहेगी। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने, समन्वय सहयोग था सतीश बाथम का। आपके साथ मैं थी भगवती सक्सेना,
0: और मैं संदीप शर्मा।
1: लेखन था स्वाति गिरी का। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।
0: देश का चैनल,
1: देश के लिए।

0: देश के संस्थान इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अर्थव्यवस्था के प्रहरी भारतीय रिजर्व बैंक। इस कार्यक्रम को स्वर दे रहे थे संदीप शर्मा और भगवती सक्सेना। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।
1: संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं।

नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

0: शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर सोचे आओ, स्वच्छता अपनाओ, सबको स्वस्थ बनाओ, चलो चलो चलो चलो अपने हाथ धो ले।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आजाद हिंद। इस कार्यक्रम में आज हम लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे।

स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों रणबांकुरों जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन, लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

0: आजाद हिंद कार्यक्रम के श्रोताओं, इतिहास का नमस्कार आप सभी को,
1: और साथ ही तारीख का भी अभिवादन स्वीकार कीजिए श्रोताओं। इतिहास
0: जी,
1: जैसा कि हमारे श्रोता जानते हैं कि हम उनके लिए लेकर आते हैं हर दिन एक क्रांतिकारी वीर की गाथा, तो बताएं आज किसकी बारी है।
0: तारीख आज हम चर्चा करेंगे लोकनायक जयप्रकाश नारायण की। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा से लगे सीता बदियेरा गांव में 11 अक्टूबर 1902 को विजयादशमी के दिन हुआ। इनके पिता का नाम हरसुदयाल और माता का नाम फूल रानी था। जयप्रकाश जी को अपनी दादी से बड़ा लगाव था, इसलिए वो पढ़ाई के लिए गांव से बाहर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन गांव में हाई स्कूल ना होने की वजह से उन्हें पढ़ने के लिए पटना जाना पड़ा।
1: स्कूल में पढ़ने के दौरान जयप्रकाश नारायण को मैथिली शरण गुप्त और भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे महान कवियों की रचनाओं को पढ़ने का अवसर मिला, और साथ ही उन्होंने भगवद गीता का भी अध्ययन किया।
0: जयप्रकाश नारायण का विवाह बिहार के मशहूर गांधीवादी ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री प्रभावती के साथ अक्टूबर 1920 में हुआ। शादी के बाद प्रभावती गांधी आश्रम में रहने चली गईं और जयप्रकाश नारायण ने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की।
1: जयप्रकाश नारायण महान क्रांतिकारी मौलाना अबुल कलाम आजाद के संपर्क में उन दिनों आए जब वे गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे रोलेट एक्ट में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। जयप्रकाश भी मौलाना के व्यक्तित्व और उनकी विचारधारा से इतने प्रभावित हुए कि अपनी कॉलेज की पढ़ाई को बीच में छोड़कर वे बिहार विद्यापीठ की गतिविधियों में शामिल हो गए।
0: विद्यापीठ में कुछ दिनों रहने के बाद जयप्रकाश नारायण अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए उन्होंने एक फैक्ट्री में काम किया, गैरेज में मैकेनिक रहे और विद्यार्थियों को ट्यूशन भी पढ़ाया। इससे वो अपनी पढ़ाई का खर्च भी चलाते थे।
1: जब कैलिफोर्निया के कॉलेज की फीस ज्यादा हो गई तो जयप्रकाश नारायण लोवा स्टेट आ गए, जहां उनकी मुलाकात प्रोफेसर एडवर्ड रॉस जैसे प्रसिद्ध समाजशास्त्री से हुई। उनके मार्गदर्शन में जयप्रकाश जी ने समाजशास्त्र की पढ़ाई की। माता जी की बीमारी की वजह से जयप्रकाश जी को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर 1929 में भारत वापस आना पड़ा।
0: जयप्रकाश जी की सोच में गहराई और समाज के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा उनके विचारों में नजर आता था। उनके लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं था कि देश राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो जाए। देश की आजादी से उनका तात्पर्य था देश की जनता को भूख, गरीबी और चिंता से मुक्त कराना।

0: जय प्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थी। जयप्रकाश जी उनके विचारों का सम्मान करते थे। 1929 में जयप्रकाश नारायण और प्रभावती ने लाहौर का कांग्रेस सत्र छोड़ दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर वे दोबारा कांग्रेस में आए और काम करना शुरू कर दिया।
1: 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। इसमें कई कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। जयप्रकाश जी ने कांग्रेस की गतिविधियों को निरंतरता देने के आशय से मुंबई में कांग्रेस कार्यालय की स्थापना की। उन्होंने पूरे देश की यात्रा की। दल से संबंधित लोगों के लिए देश के विभिन्न जगहों पर उन्होंने गुप्त सभाओं का संचालन भी किया। बनारस में कांग्रेस की गुप्त सभा आयोजित करने के बाद जब वे मद्रास गए तो उन्हें वहां गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन अखबार में यह खबर छपी कि कांग्रेस के मस्तिष्क जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया है।
0: नासिक की जेल में रहने के दौरान जयप्रकाश जी की मुलाकात उस समय के कई नेताओं से हुई, जिनमें राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता और अच्युत पटवर्धन जैसे महान क्रांतिकारी भी थे। ये सभी देश की आजादी की जंग में लगे हुए थे। जयप्रकाश और उनके मित्रों ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की शुरुआत की। इसके सचिव बने खुद जयप्रकाश नारायण। कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद को बनाने पर जयप्रकाश जी ने किताब लिखी वाई सोशलिज्म। इसमें उन्होंने विशेष रूप से लिखा कि भारत में समाजवाद क्यों जरूरी है। इस पुस्तक की प्रशंसा पूरे देश में हुई।
1: 1939 में जयप्रकाश नारायण ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ लोक आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने टाटा स्टील कंपनी में हड़ताल कराई ताकि अंग्रेजों तक इस्पात ना पहुंच पाए। उन्हें गिरफ्तार किया गया और 9 माह की सजा दी गई। किराया और राजस्व रोकने के खिलाफ उन्होंने कई अभियान भी चलाए। 1940 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्हें फिर गिरफ्तार किया गया और उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़वाने पर 10,000 रुपयों का इनाम भी रखा।
0: उन्होंने नेपाल जाकर आजाद दस्ते का संगठन किया। नेपाल में जब उन्हें लगा कि वे गिरफ्तार किए जा सकते हैं तो वे राम मनोहर लोहिया के साथ बिहार चले गए। खान अब्दुल गफ्फार खान से मिलने के लिए जब वे रावलपिंडी जा रहे थे तो उन्हें ट्रेन में गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग 16 माह जेल में रहकर 12 अप्रैल 1946 को वे रिहा हुए।

0: कांग्रेस कमेटी ने भारत के विभाजन की बात को मंजूर नहीं किया। आखिर में स्वतंत्रता सेनानियों के भरसक प्रयत्नों और अमर शहीदों के बलिदान से भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। सन 1952 के चुनाव में समाजवादी दल की हार हुई। नेहरू जी ने जयप्रकाश जी को कैबिनेट में शामिल होने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने मंजूर नहीं किया। सन 1954 में 19 अप्रैल को गया में उन्होंने एक सभा का आयोजन किया, जिसमें जयप्रकाश नारायण ने औपचारिक घोषणा की कि वे अपना बाकी जीवन विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन को दान कर रहे हैं।
1: जयप्रकाश ने हजारीबाग में एक आश्रम बनवाया, जो एक गरीब और पिछड़ा हुआ गांव था। उन्होंने गांवों की प्रगति के लिए गांधी जी की विचारधारा को अपनाया और आधुनिक तकनीकों से गांवों के विकास का हर संभव प्रयास किया।
0: जयप्रकाश नारायण का मानना था कि प्रत्येक गांव को इतना सक्षम होना चाहिए कि वहां के लोग मिलकर स्वतंत्रता और राजनीतिक विचारों में परिवर्तन ला सके। जून 1970 में मुजफ्फरपुर और बिहार में उन्हें जान से मारने का आदेश दिया गया। उस इलाके में नक्सलवादियों का आधिपत्य था, जिसमें अधिकतर युवा कार्यकर्ता थे। जयप्रकाश जी ने उनके प्रति प्रेम और सहानुभूति को प्रदर्शित किया, क्योंकि वो जानते थे कि अधिक गरीबी और बेरोजगारी की वजह से युवा इस दिशा की ओर जा रहे हैं। जयप्रकाश खुद उन प्रमुख व्यक्तियों में एक हैं जिन्होंने चंबल घाटी में बसने वाले डकैतों को आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित किया। 15 अप्रैल 1973 में प्रभावती की मृत्यु हो गई। उसके बाद जयप्रकाश जी अकेले हो गए। 8 अप्रैल 1973 को 72 वर्ष की आयु में उन्होंने पटना में लाठी चार्ज का मौन जुलूस निकाला।
1: जयप्रकाश नारायण अब बीमार रहने लगे थे और बहुत कमजोर भी हो गए थे। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1979 को उनकी मृत्यु हो गई। लोगों ने उन्हें लोकनायक और लोगों के नेता के नाम से याद किया। विनोबा भावे ने उनकी मृत्यु के बाद कहा था,
0: जयप्रकाश खुद को लोक सेवक या लोगों के लिए काम करने वाला मानते थे। उन्होंने देश के लिए अथक प्रयास किए और अपने आखिरी समय तक जन कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। तो तारीख ये थी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के गौरव का था। जयप्रकाश नारायण न सिर्फ राजनीति से संबंधित थे, बल्कि उन्होंने समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा योगदान दिया। ऐसे महान सपूत को हम नमन करते हैं।

0: वादा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय। अब हमें इजाजत दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम आजाद हिंद। आज की कड़ी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जीवन पर केंद्रित थी। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है सांस्कृतिक समाचारों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। मध्य प्रदेश की संस्कृति, विरासत, ऐतिहासिक स्थापत्य और प्राकृतिक सौंदर्य को वैश्विक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से 7वां मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट विगत दिवस भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आरंभ हुआ। इस ट्रैवल मार्ट में 34 देशों के 100 से अधिक विदेशी प्रतिनिधि और पर्यटन क्षेत्र के स्टेक होल्डर शामिल हो रहे हैं। भोपाल में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव विश्व रंग इस बार बिहार के पटना और नालंदा में आयोजित हो रहा है। 3 से 8 अक्टूबर तक होने वाले विश्व रंग 2026 का पहला चरण पटना में भारतीय संस्कृति, साहित्य, कला, भाषाओं और दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की सांस्कृतिक चेतना पर केंद्रित रहा। आगामी 12 से 18 अक्टूबर तक भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय श्री रामलीला उत्सव का आयोजन रविन्द्र भवन में होने जा रहा है। 7 दिन के इस आयोजन में देश विदेश के कलाकार भारतीय शास्त्रीय और लोक नृत्य शैलियों के जरिए रामकथा के अलग अलग प्रसंग प्रस्तुत करेंगे। ये था हमारा आज का परिक्रमा कार्यक्रम 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।

मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन मूल्यों पर आधारित कार्यक्रम युग प्रवर्तक।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: भारतीय नारी ने चिरकाल से जिस आदर्श पर चलने का प्रयास किया है, स्वामी विवेकानंद ने कई बार बड़ी उद्दीप्त भाषा में उसके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। उन्होंने कहा था कि संन्यास जीवन के समान ही नारी जीवन भी बाह्य अभिव्यक्ति की वस्तु नहीं है, इसका मूल लक्ष्य है आंतरिक जीवन को समृद्ध बनाना। और भारतीय नारी ने त्याग, पवित्रता, धैर्य, दया, संतोष तथा सेवा आदि सद्गुणों का विकास करके राष्ट्र की सांस्कृतिक उदात्तता और आध्यात्मिकता के उच्च स्तर को अक्षुण्य बनाए रखा है।
1: परंतु वर्तमान कालखंड में भारतीय नारी एक दुराहे पर खड़ी है। उसके सामने आज दो विपरीत आदर्श उपस्थित हैं। एक तो परंपरागत आदर्श और दूसरा आधुनिक नागरिक आदर्श। प्रत्येक सामाजिक विकास के पीछे उसका आदर्श ही उसे सक्रिय बनाता है और हर विकास की प्रक्रिया उसके आदर्श को सबल बनाते हैं। यदि भारतीय नारी को अन्य सभी देश की नारियों के साथ आगे बढ़ना है, एक अभिनव समाज गढ़ने का सपना देखना है, तो उसे ये निर्णय लेना होगा कि इनमें से कौन सा आदर्श अपनाया जाए।
0: स्वामी विवेकानंद की विविध उक्तियाँ इन दो तरह के आदर्शों पर प्रकाश डालती हैं। उन्होंने कहा है,
2: भारतवर्ष में प्राचीन काल में परिवार आदि का ही प्राबल्य रहा है। परिवार यद्यपि समाज की लघुतम इकाई है, परंतु भारतीय जीवन पद्धति में इसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन को गढ़ने वाली सभी मार्गदर्शक एवं नियामक प्रेरणाएं परिवार से ही आती प्रतीत होती हैं। जाति की शुद्धता, विवाह बंधन की पवित्रता, मातृत्व आदि सभी विचारों का लक्ष्य है परिवार के संगठन को सुरक्षित रखना।
1: उन्होंने हमारे विवाह व्रत और मातृत्व के आदर्शों की भूरी भूरी प्रशंसा की एवं अन्य जातियों तथा राष्ट्रों से अनुरोध किया कि इस क्षेत्र में वे भारत का अनुसरण करें।
2: मेरे विचार से पूर्ण ब्रह्मचर्य के आदर्श को प्राप्त करने के लिए किसी भी जाति को मातृत्व के प्रति परम आदर की धारणा दृढ़ करनी चाहिए और वो विवाह को अच्छेद्य एवं पवित्र धर्म संस्कार मानने से ही हो सकती है।
0: वे अमेरिकन स्त्रियों की स्वच्छंदता देखकर अवाक हो गए थे, परंतु उनमें मातृत्व भाव की कमी देखकर उन्होंने अमेरिकन स्त्रियों से कहा था,
2: माता के रूप में अमेरिकन स्त्री कहाँ है? उस तपस्विनी एवं ओजस्विनी माता का जिसने हमें जन्म दिया, तुमने क्या सम्मान किया है? जिसने हमें अपने शरीर में 9 मास तक वहन किया, वो माता क्या है? जो हमारे जीवन के लिए यदि प्राणों की आहुति देने की आवश्यकता हो तो 20 बार भी देने को उद्यत है, वो माता कहाँ है? कहाँ है वो जिसका प्रेम कभी नहीं मरता? मैं कितना ही दुष्ट और अधम क्यों ना हो जाऊं, हे अमेरिका की स्त्रियों, वो माता कहां है?
1: उन्हें भारतीय माताओं का दिव्य रूप ज्यादा पसंद था। माता तथा संतान में जो जुड़ाव भारत में दिखता है वो उन्हें और किसी देश में नहीं मिला, इसलिए उन्होंने अमेरिकन स्त्रियों से कहा था,
2: मेरे माता पिता ने कितने दिनों तक भगवान से प्रार्थना की थी और व्रत रखा था कि उन्हें एक संतान प्राप्त हो। प्रत्येक बच्चे के लिए माता पिता को प्रार्थना करनी चाहिए। अमेरिका की माताओं, इस पर जरा विचार कीजिए, हृदय के अंतःस्थल में जरा सोचिए कि क्या आप सचमुच नारी होना चाहती हैं? इसमें किसी जाति या किसी देश का प्रश्न नहीं। किसी प्रकार के राष्ट्रीय गौरव के मिथ्या गर्व का स्थान नहीं। आप सबसे आज रात मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी संतान की प्राप्ति के लिए ईश्वर से हार्दिक प्रार्थना करती हैं? क्या आप माता होने के लिए कृतज्ञ हैं? क्या आप ये समझती हैं कि मातृत्व प्राप्त करके आप पवित्र गौरव को प्राप्त करती हैं? आप अपना हृदय टटोलें और पूछें, यदि नहीं तो आपका विवाह मिथ्या है, आपका नारीत्व मिथ्या है और आपकी शिक्षा एक ढकोसला है। और यदि आपके बच्चे प्रार्थना के बिना जन्म लेते हैं तो वे संसार के लिए अभिशाप सिद्ध होंगे।
0: जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे तो वे वहां की शिक्षित, साहसी और दयालु महिलाओं को पक्षियों के समान स्वाधीन देखकर बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने देखा कि वहां की स्त्रियां बड़े आत्मसम्मान के साथ अपने समुदाय के नागरिक जीवन में हिस्सेदारी निभाती हैं। विस्मय एवं प्रशंसा के साथ उन्होंने अमेरिका से अपने एक मित्र को लिखा था,
2: मैंने जैसी शिष्ट और शिक्षित महिलाएं यहां देखी वैसी कभी कहीं नहीं देखी। हमारे देश में शिक्षित पुरुष हैं, परंतु अमेरिका जैसी महिलाएं मुश्किल से कहीं और दिखाई देंगी। मैंने यहां हजारों महिलाएं देखी जिनके हृदय हिमालय के समान पवित्र और निर्मल हैं। आहा, वे कैसी स्वतंत्र होती हैं, सामाजिक और नागरिक कार्यों का नियंत्रण करती हैं। पाठशालाएं और विद्यालय महिलाओं से भरे हैं और हमारे देश में महिलाओं के लिए राह चलना भी निरापद नहीं। यहां लोग स्त्रियों को इसी रूप में देखते हैं और इसलिए ये लोग इतने सुखी, विद्वान, स्वतंत्र और उद्योगी हैं, और हम लोग स्त्री जाति को नीच, अधम, महाहेय एवं अपवित्र कहते हैं। फल हुआ हम लोग पशु, दास, उद्यमहीन और दरिद्र हो गए।
1: इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वामी जी ने दोनों आदर्शों की ही प्रशंसा की है, परंतु दोनों के प्रति उनकी समालोचना भी उतनी ही कठोर है। भारतीय स्त्रियों की हालत के बारे में उन्होंने एक बार कहा था,
2: अब तक तो उन्होंने केवल असहाय अवस्था में दूसरों पर आश्रित हो जीवन यापन करना और थोड़ी सी भी अनिष्ट या संकट की आशंका होने पर आंसू बहाना ही सीखा है।
0: दूसरी ओर उन्होंने न्यूयॉर्क में अमेरिकन महिलाओं को सुस्पष्ट और कठोरता पूर्वक कहा,
2: मैं बहुत चाहता हूं कि हमारी स्त्रियों में तुम्हारी बौद्धिकता होती, परंतु यदि वो चारित्रिक पवित्रता का मूल्य देकर ही पा सकती हो तो मैं उसे नहीं चाहूंगा। तुमको जो कुछ आता है उसके लिए मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं, लेकिन जो बुरा है उसे गुलाबों से ढककर उसे अच्छा कहने का जो यत्न तुम करती हो उससे मैं नफरत करता हूं। बौद्धिकता ही परम श्रेय नहीं है, नैतिकता और आध्यात्मिकता के लिए हम प्रयत्न करते हैं। हमारी स्त्रियां इतनी विद्वान नहीं, परंतु वे अधिक पवित्र हैं।
1: इस प्रकार अपने देश से बिल्कुल ही अलग आदर्श पर चलने वाली महिलाओं के एक वर्ग के संपर्क में आने के बाद इन दोनों आदर्शों तथा दोनों समाजों में महिलाओं की दशा का भेद उनके सामने उजागर हुआ। कालांतर में जब उनके मन में अपने देश की महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करने की तीव्र आकांक्षा हुई तो स्वाभाविक रूप से ही उनके मन में ये प्रश्न उठा कि भारतीय नारी किस हद तक अपने आदर्शों से समझौता करते अन्य देशीय आदर्शों को अपना सकती है। इस विषय पर स्वामी जी ने हमें जो गहन और सर्वांगीण विचार दिए हैं वे शत वर्षों से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद आज भी प्रासंगिक हैं।
0: उनका मत था कि संशोधित उपयोग दोनों ही आदर्शों के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु निर्माण करेगा। उनके इस विचार को और भी स्पष्ट करते हुए उनकी शिष्या भगिनी निवेदिता ने लिखा है,
3: वे भविष्य की भारतीय नारी को ध्यान की प्राचीन शक्ति से अलग करके कल्पना तक नहीं कर पाते थे। महिलाएं आधुनिक विज्ञान अवश्य सीखें, पर प्राचीन आध्यात्मिकता को त्याग कर नहीं। उन्होंने स्पष्ट रूप से समझा कि वही शिक्षा आदर्श होगी जो संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के प्रत्यक्ष परिवर्तन को कम से कम प्रभावित करेगी। इसके फलस्वरूप प्रत्येक महिला अतीत भारत की समस्त नारियों की महानता को अपने आप में पूर्ण रूपेण मिला लेने में समर्थ होगी। सामाजिक उन्नति के लिए ये अत्यंत आवश्यक है।
1: स्वामी विवेकानंद जब कभी भारतीय नारी तथा उसकी समस्याओं के बारे में बोलते थे, तब वे एक तीसरे आदर्श के बारे में भी सचेत रहते थे, और वो था आध्यात्मिक आदर्श। भारतीय जीवन, चिंतन एवं संस्कृति में आध्यात्मिकता इतनी ओतप्रोत है कि इसे एक अलग आदर्श के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता। अतः हम अपने राष्ट्र के सामाजिक धार्मिक इतिहास में सन्यासी एवं गृही दोनों ही प्रकार के अनेक महान विभूतियों का उल्लेख पाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति की इस महानता को भली भांति पहचाना। उन्होंने कहा था,
2: राष्ट्र की आध्यात्मिकता के इस उच्च स्तर को बनाए रखने में महिलाओं का योगदान पुरुषों के समकक्ष ही रहा है। अति प्राचीन वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक महिलाओं ने अपने ढंग से इस आदर्श को जीवंत रखा है। मैत्रेयी से लेकर श्री शारदा देवी तक ये सांस्कृतिक विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती आई है। ऋषि याज्ञवल्क्य ने संसार त्याग कर वन में जाने से पूर्व अपनी पत्नी मैत्रेयी के जीवन निर्वाह हेतु अपनी संपत्ति का एक अंश उन्हें देने की इच्छा व्यक्त की थी। इस पर मैत्रेयी ने कहा था, जो संपदा मुझे अमरत्व प्रदान नहीं कर सकती, उसे लेकर मैं क्या करूंगी। इस पर याज्ञवल्क्य बड़े प्रसन्न हुए थे और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया था। श्री रामकृष्ण ने जब शारदा देवी से पूछा कि क्या तुम पत्नी के रूप में अपने अधिकार का दावा करने आई हो, तो उन्होंने उत्तर दिया था, तुम्हें संसार में खींचने को नहीं, तुम्हारे धर्म पथ में सहायता करने आई है। उसी समय से वे श्री रामकृष्ण की प्रमुख शिष्या के रूप में स्वीकृत हुई।
0: स्वामी विवेकानंद के सामाजिक कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य था स्त्रियों की उन्नति या स्त्रियों की स्थिति में सुधार। स्त्रियों को शिक्षित करना, समाज में बराबर का स्थान दिलाना, उन्हें समर्थ बनाना, ये विचार हमेशा उनके मन में रहता। उन्होंने निवेदिता से कहा था, कभी मत भूलो, पहले स्त्रियां और फिर बाद में और लोग। इन शब्दों को हमेशा याद रखना।
1: स्वामी जी के व्याख्यान, संभाषण हमेशा स्त्री उन्नति विषयक उद्गारों से भरे रहते थे। वे कहा करते थे,
2: भारत में दो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्तियां हैं। पहली तो स्त्रियों का उत्पीड़न या पैरों तले कुचलना, और दूसरा गरीबों का शोषण यानी उनका दमन। सर्वप्रथम स्त्रियों का उद्धार करना होगा। सामान्य जन में इस बाबत जागृति लानी होगी, तभी अपने देश भारत की उन्नति हो सकेगी, उसका भविष्यकाल उज्जवल हो सकेगा। जिस देश में या जिस घर में स्त्रियों की स्थिति ठीक नहीं है, वे कष्ट में हैं, जहां उन्हें सम्मान न मिलता हो, उनका कोई उचित स्थान नहीं है, उस परिवार की या उस देश की उन्नति की आशा ही व्यर्थ है। इसलिए सर्वप्रथम स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाओ, उन्हें शिक्षित करो, उन्हें समर्थ बनाओ, उनमें आत्मविश्वास जगाओ, उन्हें सम्मान दो। इस कार्य के लिए शिक्षित स्त्रियों के एक आदर्श मठ की शुरुआत करनी होगी। सामाजिक उन्नति के लिए ये अत्यंत आवश्यक है।
0: विवेकानंद जब अमेरिका और यूरोप गए, वहां की उच्च शिक्षित स्त्रियों से मिले, उनके ज्ञान, विवेक और विचार शक्ति से वे प्रभावित हुए। वहां स्त्री पुरुष में भेद नहीं था, सभी को अपना मत प्रदर्शन करने का मौका मिलता था। स्त्रियां अकेले कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र थीं। सभी सामाजिक कार्यों में पुरुषों के साथ कंधा मिलाकर भागीदारी करती थीं। ये सब देखकर स्वामी जी अत्यंत प्रसन्न हुए, पर उनका मन हमेशा भारतीय नारी की दयनीय दशा को याद कर रोता रहता था। उनके मन में भारतीय नारी को उनकी सही जगह दिलवाने की इच्छा थी।
1: उन्होंने इसका एकमात्र उपाय सोचा, स्त्री शिक्षा। शिक्षा ही भारतीय नारी की बेड़ी को तोड़ेगी, शिक्षा ही उनकी आंखों के सामने विशाल आकाश और पाश्चात्य जगत के आलोकित स्वरूप का विराट रूप खोल देगी। उन्हें लगता था शिक्षा ही वो पंख है जिसके सहारे भारतीय नारी उड़ पाएगी। स्वतंत्र विचार और भय रहित स्वतंत्र जीवन, यही सपना देखा था स्वामी जी ने उनके लिए। इसलिए उन्होंने कहा,
2: पहले स्त्रियों को उचित शिक्षा दो, फिर उन्हें इतनी स्वतंत्रता दो कि वे अपने जीवन संबंधी निर्णय खुद ले सकें। उन्हें अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता दो, फिर वे तुम्हें खुद ही बताएंगी कि उनकी उन्नति के लिए कौन कौन से सुधार आवश्यक हैं। वे अपनी उन्नति का मार्ग खुद ही प्रशस्त करेंगी। ये भी जान लो कि आज की दुखद स्थिति को खत्म करने के लिए स्त्रियों और सामान्य जनता की स्थिति सुधारना जरूरी है, और इसके लिए आवश्यक है स्त्रियों और सामान्य जनता को शिक्षित करना। शिक्षा के महत्व को वे खुद समझें तथा शिक्षा प्राप्ति हेतु खुद ही आगे आएं, अन्यथा समाज का पतन निश्चित है और किसी भी मार्ग से समाज की उन्नति हो ही नहीं सकती। स्त्रियों की समस्याएं अनेक हैं और उनमें से कुछ समस्याएं तो गंभीर भी हैं, ये बात सत्य है, पर फिर भी सारी समस्याओं के निराकरण हेतु सिर्फ एक ही जादुई शब्द शिक्षा काफी होगा। शिक्षा के जादू से वे अपनी सभी समस्याओं से जल्द ही छुटकारा पा सकती हैं।
0: भारत में स्त्री शिक्षा के प्रसार का भार स्वामी जी ने सिस्टर निवेदिता को दिया था। निवेदिता भी अपने गुरु के आज्ञानुसार इसी मार्ग पर चल पड़ी थी। पथ आसान नहीं था, पर इस दुर्गम पथ पर वे अपने कुछ साथियों के साथ अग्रसर हो चली थी। उन्होंने स्वयं इस बारे में कहा है,
3: स्वामी जी को बहुत पहले ही पता चल गया था कि स्त्री शिक्षा के बिना समाज की उन्नति संभव ही नहीं। उनकी दृष्टि में अनेक विचारों में ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती थी कि इस समय की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता सिर्फ एक ही है, और वो है स्त्रियों को शिक्षित करने हेतु महिला शिक्षा शास्त्रियों की एक ऐसी सेना तैयार करना जो स्त्रियों की समस्याओं को समझेंगी, उनका निराकरण करेंगी। इसके अलावा उनका कार्य ही उनका घर होगा। धर्म के अलावा उनके ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। देश, जनता, गुरु और अपना कार्य, यही उनके लिए सब कुछ होगा।
0: ये कार्य उतना आसान नहीं था, पर स्कूल की शुरुआत हो ही गई।
1: स्त्रियों के लिए एक मठ की स्थापना करने की स्वामी जी की कल्पना उस समय की परिस्थिति के हिसाब से एक असाध्य कल्पना भले ही लगती हो, पर राष्ट्रीय आदर्शों के प्रेरित स्त्रियों के लिए एक शिक्षा संस्था का शुरू होना यानी बुरी शुरुआत नहीं थी। और यही कारण था कि स्वामी जी को निवेदिता के छोटे से स्कूल में अगाध रुचि थी, आस्था थी। वो स्कूल अर्थात उन्हें अपने सपने साकार करने का एक साधन लगता। स्कूल, स्त्री शिक्षा और पाठशाला में होने वाले कार्यों की योजना के संबंध में वे घंटों निवेदिता के साथ विचार विमर्श करते। भारतीय स्त्रियां और उनकी शिक्षा, इस विषय पर निवेदिता के जो विचार थे, इस विषय पर वो जो भी लेखन कार्य करती थीं, उन सब पर स्वामी जी के विचारों और उनकी कल्पनाओं की छाप स्पष्ट रूप से दिख पड़ती है।
0: निवेदिता का शैक्षणिक प्रयोग अवश्य ही सफल होगा, ये स्वामी जी को पूर्ण विश्वास था। इस प्रयोग की असफलता की उन्हें थोड़ी सी भी शंका नहीं थी, पर उसके लिए धन और कार्यकर्ता दोनों की आवश्यकता थी। उन्हें इस बारे में कोई आशा नहीं थी कि समाज की अविवाहित लड़कियां इस विषय में निवेदिता को कुछ मदद कर सकेंगी। अतः उनका मुख्य लक्ष्य था समाज की विधवा तथा निराश्रित अनाथ लड़कियों तथा स्त्रियों को शिक्षित करना और उनका कार्यकर्ता के रूप में इस कार्य के लिए उपयोग करना, ताकि निवेदिता को थोड़ी बहुत मदद मिल सके। पर इसके लिए जब तक निवेदिता अनाथ तथा विधवा स्त्रियों के लिए एक आश्रम शुरू नहीं कर लेती, तब तक इस कार्य के लिए कोई ठोस आधार नहीं मिल सकेगा। ऐसा स्वामी जी का निश्चित मत था।
1: स्वामी जी स्त्रियों को स्वनिर्भर बनाने की बात भी सोचते थे। गृह उद्योगों का एक केंद्र बेलूर मठ में स्थापित हो, यही स्वामी जी की इच्छा थी, जहां निवेदिता के स्कूल की छात्राएं अचार, चटनी, मुरब्बा आदि बनाएं एवं इस तरह की चीजें बनाकर बिक्री हेतु बाजार में भेजें। इस तरह का प्रस्ताव स्वामी जी ने निवेदिता के समक्ष रखा। स्वामी जी का यह प्रस्ताव निवेदिता को बहुत ही अधिक पसंद आया, क्योंकि वो सोचती थीं कि इस तरह के केंद्र स्थापना से लड़कियों की प्रगति और विकास के कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। उन्हें विभिन्न दिशाओं में प्रगति के क्षेत्र नजर आएंगे और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकेंगी।
0: स्वामी जी ने स्वयं को आमूल चूल सुधारक घोषित किया था, पर इस सुधार का आधार आध्यात्मिक मूल्य थे और वो विकास की प्रक्रिया में से होकर गुजरता। उन्होंने कहा, मैं जिसमें विश्वास करता हूँ वो है विकास। वो आम जनता के द्वारा लाया जाना था, वो बाहर से उन पर लादा नहीं जा सकता था। उन्होंने लिखा,
2: उन स्त्रियों में विचार पैदा करना होगा, उनकी चारों ओर दुनिया में क्या क्या हो रहा है इस संबंध में उनकी आंखें खोल देनी होंगी, बस फिर वे अपनी मुक्ति स्वयं सिद्ध कर लेंगी। हमें केवल रासायनिक सामग्रियों को इकट्ठा भर कर देना है, उसका निर्दिष्ट आकार प्राप्त करना, रवा बंद हो जाना तो प्राकृतिक नियमों से ही साधित होगा। हमारा कर्तव्य है उनमें भावों का संचार कर देना, बाकी वे स्वयं कर लेंगे।
0: उन्होंने और भी कहा, इस देश में पुरुष और स्त्रियों में इतना अंतर क्यों समझा जाता है, ये समझना कठिन है। वेदांत शास्त्र में तो कहा है, एक ही चित सत्ता सर्वभूतों में विद्यमान है।
1: इसी कारण उन्होंने महिलाओं के उच्चतर आध्यात्मिक प्रशिक्षण के विरोध में उठाई गई आवाज को सुनने से इनकार कर दिया। किस शास्त्र में ऐसी बात है कि स्त्रियां ज्ञान भक्ति की अधिकारिणी नहीं होंगी? इन सब आदर्श विदुषी स्त्रियों, मैत्रेय, गार्गी आदि को जब उस समय आध्यात्म ज्ञान का अधिकार था, तब फिर आज की स्त्रियों को वो अधिकार क्यों ना रहेगा? एक बार जो हुआ है वो फिर अवश्य ही हो सकता है। इतिहास की पुनरावृत्ति हुआ करती है, और इसीलिए वे चाहते थे कि हमारे देश की महिलाएं श्री शारदा देवी की प्रत्यक्ष प्रेरणा एवं देखरेख में त्याग एवं सेवा के राष्ट्रीय आदर्शों के अनुसार जीवन गठन करें।
0: आधुनिक भारत की महिलाएं जो प्रगति के नाम पर वस्तुतः अपने रूपांतरण पर चल पड़ी हैं, उनको चाहिए कि वे प्राचीन आदर्शों के आधार पर ही अपनी उन्नति एवं प्रगति करें और साथ ही नागरिक कार्यों के क्षेत्र में भी अपने प्रभाव का विस्तार करें। इसके फलस्वरूप उनका पारिवारिक जीवन सुखी होगा, नागरिक जीवन सहायक होगा और आध्यात्मिक जीवन समृद्ध होगा। साथ ही स्वामी जी का ये आदेश भी स्मरण रखना होगा,
2: इस देश की नारियों को वही बात कहूंगा जो पुरुषों से कहता हूं, भारत में विश्वास करो और भारतीय धर्म में विश्वास करो, शक्तिशाली बनो, आशावान बनो और संकोच छोड़ो। और याद रखो कि यदि हम बाहर से कोई वस्तु लेते हैं तो संसार की किसी अन्य जाति की तुलना में भारतीयों के पास उसके बदले में देने को अनंत गुण

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: साहस की बुलंद शुरुआत से लेकर आसमान की असीम ऊंचाइयों तक 8 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस।
1: वर्ष 1947-48, 1965 और 1971 के ऐतिहासिक युद्धों से लेकर ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना ने हर पल कर दिखाया है अदम्य पराक्रम, अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोच्च बलिदान।
0: तो मध्य प्रदेश के जाबाज युवाओं, क्या आप तैयार हैं? बादलों को चीरकर देश का मान बढ़ाने के लिए तो बनिए अग्निवीर वायु, हासिल कीजिए वो मुकाम जो जिंदगी भर की पहचान बन जाए और गर्व से कीजिए भारत माँ की सेवा।
1: भर्ती और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए
0: 15 एयरमैन चयन केंद्र के इंस्टाग्राम पेज 15ASC_भोपाल और आधिकारिक वेबसाइट IAFRecruitment.edcil.co.in पर विजिट करें।
1: नभास प्रशम दीप्तम।
2: जय हिंद।
3: हिंदी फिल्मों के सदाबहार अभिनेता नाना पाटेकर को रेडियो आजाद हिंद की विनम्र श्रद्धांजलि।
4: नमस्कार आदाब, मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद।
5: दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह रेडियो आजाद हिंद है और अब जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे कार्यक्रम अक्षय निधि के साथ। उसके बाद आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम। शाम 6 बजे वतन का राग कार्यक्रम आज समर्पित होगा हिंदी के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर। शाम 6:30 पर बाल सभा कार्यक्रम का विषय होगा गणेश उत्सव में हमने क्या सीखा। शाम 7 बजे कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम का विषय होगा भारतीय सेना में उच्च अधिकारी भर्ती प्रक्रिया की जानकारी। शाम 7:30 पर विश्व पशु कल्याण दिवस पर विशेष कार्यक्रम। जानकारी देंगे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर नारद और इनसे बातचीत करेंगी मनीषा चतुर्वेदी। रात्रि के 8 बजे देश के संस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत आज का विषय होगा अर्थव्यवस्था के प्रहरी भारतीय रिजर्व बैंक। रात्रि के 8:30 पर आजाद हिंद कार्यक्रम आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जीवन पर केंद्रित होगा। रात्रि के 9 बजे सुने देशभक्ति गीत और 9:30 पर स्वामी विवेकानंद के जीवन मूल्यों पर आधारित कार्यक्रम युग प्रवर्तक। तो ये थी जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह रेडियो आजाद हिंद है। दोपहर के 12 बज रहे हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा संपन्न होती है। हमारी सांध्यकालीन सभा शाम 5 बजे आरंभ होगी। तब तक आप हमारे केंद्र से सांगीतिक प्रस्तुतियों का आनंद लेते रहें।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: साहस की बुलंद शुरुआत से लेकर आसमान की असीम ऊंचाइयों तक 8 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस।
2: वर्ष 1947-48, 1965 और 1971 के ऐतिहासिक युद्धों से लेकर ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना ने हर पल कर दिखाया है अदम्य पराक्रम, अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोच्च बलिदान।
1: तो मध्य प्रदेश के जाबाज युवाओं, क्या आप तैयार हैं? बादलों को चीरकर देश का मान बढ़ाने के लिए तो बनिए अग्निवीर वायु, हासिल कीजिए वो मुकाम जो जिंदगी भर की पहचान बन जाए और गर्व से कीजिए भारत माँ की सेवा।
2: भर्ती और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए
1: 15 एयरमैन चयन केंद्र के इंस्टाग्राम पेज 15ASC_भोपाल और आधिकारिक वेबसाइट IAFRecruitment.edcil.co.in पर विजिट करें।
2: नभास प्रशम दीप्तम।
3: जय हिंद।
4: हिंदी फिल्मों के सदाबहार अभिनेता नाना पाटेकर को रेडियो आजाद हिंद की विनम्र श्रद्धांजलि।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। अब समय है कार्यक्रम भारत भारती का।

निमाड़ का सांस्कृतिक इतिहास अत्यंत समृद्ध और गौरवशाली है। यहाँ का जनजीवन कला और संस्कृति से संपन्न है। विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियों से घिरा यह अंचल नर्मदा नदी का पावन तट पाकर यहाँ के जनजीवन को आनंद विभोर करता रहता है। तो अब बिना देर किए आनंद लेते हैं निमाणी लोक गायन का। कलाकार हैं शिव गुप्ता और उनके साथी।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष, जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: एक प्रस्तुत है संत सिंगाजी निमाड़ के, संत निर्गुणी पंथ के संत के विचारों को निमाड़ी भाषा में जन जन तक पहुंचाने का प्रयास।

कुबेर कन्हैया लाल की। निमाड़ के धरातल का वृतांत। एक बेटी अपने पिताजी को बोलती, पिताजी आपने कहां मेरी शादी कर दी।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम भारत भारती में अब समय है एक छोटे से अंतराल का।
1: संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

निमाड़ का सबसे फेमस गीत लोकगीत, जब भाभी के घर ननंद जाती है तो भाभी अपने बच्चे घर, जब बच्चा होता है निमाड़ में, तो कुछ खिलौना लेके जाती है।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: सबरी को मतंग ऋषि ने कहा था कि तेरे आंगन में राम आएंगे। सबरी ने इंतजार किया कि मेरे राम मेरे आंगन में आएंगे, प्रभु का इंतजार किया।
1: अरे हम बूढ़ी हुई गई रे, वाट देखत देखत,
0: ए राम कब आओगे।
1: अरे हम बूढ़ी हुई गई रे।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: एक लड़का लड़की आपस में बात कर शादी का पहला, उनकी कल्पना कवि की है।

0: आज कार्यक्रम भारत भारती में आप आनंद ले रहे थे निमाणी लोक गायन का, जिसे प्रस्तुत किया शिव गुप्ता और उनके साथियों ने। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: मैं हूं हरि प्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
2: साहस की बुलंद शुरुआत से लेकर आसमान की असीम ऊंचाइयों तक 8 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस।
3: वर्ष 1947-48, 1965 और 1971 के ऐतिहासिक युद्धों से लेकर ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना ने हर पल कर दिखाया है अदम्य पराक्रम, अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोच्च बलिदान।
2: तो मध्य प्रदेश के जाबाज युवाओं, क्या आप तैयार हैं? बादलों को चीरकर देश का मान बढ़ाने के लिए तो बनिए अग्निवीर वायु, हासिल कीजिए वो मुकाम जो जिंदगी भर की पहचान बन जाए, और गर्व से कीजिए भारत माँ की सेवा।
3: भर्ती और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए
2: 15 एयरमैन चयन केंद्र के इंस्टाग्राम पेज 15ASC_भोपाल और आधिकारिक वेबसाइट IAFRecruitment.edcil.co.in पर विजिट करें।
3: नभास प्रशम दीप्तम,
4: जय हिंद।
5: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर चंद्रिमा मजूमदार का सरोदवादन, और उसके बाद प्रस्तुति होगी पंडित श्रीनिवास जोशी के गायन की। तो आइए पहले हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर चंद्रिमा मजूमदार का सरोदवादन।

मेरी तालीम शाहजहाँपुर घराने से प्रमुखता हुई है और कुछ चीज़ें हर तंत्रकार को बीनकार घराने से जब तक कुछ ना मिले तब तक उसकी तालीम पूरी नहीं समझी जाती है। तो मेरे गुरु एवं दादा गुरु दोनों ने शाहजहाँपुर परंपरा से सीखने के बाद सेनिया ग्वालियर सेनिया परंपरा से भी तालीम ली है। तो कुछ चीज़ें आपके सामने बहुत ही संक्षेप में।

0: और श्रोताओं, डॉक्टर चंद्रिमा मजूमदार के सरोद वादन को सुनने के बाद अब बारी है पंडित श्रीनिवास जोशी के गायन की।
1: विलंबित एकताल राग बिहाग आपके सामने प्रस्तुत है। धन्यवाद।

0: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंडित श्रीनिवास जोशी का गायन। आज का कार्यक्रम भारत भारती यहीं तक। अब दीजिए अपने दोस्त दानिश को इजाजत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: साहस की बुलंद शुरुआत से लेकर आसमान की असीम ऊंचाइयों तक 8 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस।
2: वर्ष 1947-48, 1965 और 1971 के ऐतिहासिक युद्धों से लेकर ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना ने हर पल कर दिखाया है अदम्य पराक्रम, अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोच्च बलिदान।
1: तो मध्य प्रदेश के जाबाज युवाओं, क्या आप तैयार हैं? बादलों को चीर कर देश का मान बढ़ाने के लिए तो बनिए अग्निवीर वायु। हासिल कीजिए वो मुकाम जो जिंदगी भर की पहचान बन जाए और गर्व से कीजिए भारत माँ की सेवा।
2: भर्ती और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए
1: 15 एयरमैन चयन केंद्र के इंस्टाग्राम पेज 15ASC_भोपाल और आधिकारिक वेबसाइट IAFRecruitment.edcil.co.in पर विजिट करें।
2: नभास प्रशम दीप्तम।
3: जय हिंद।
0: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थीं, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञानवर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम सुनो कहानी में आपको सुना रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी दुस्साहस।

0: लखनऊ के नौबस्ते मोहल्ले में एक मुंशी मैकूलाल मुख्तार रहते थे। बड़े उदार, दयालु और सज्जन पुरुष थे। अपने पेशे में इतने कुशल थे कि ऐसा बिरला ही कोई मुकदमा होता था जिसमें किसी न किसी पक्ष की ओर से वो रखे न जाते हों। साधु संतों से भी उन्हें प्रेम था। उनके सत्संग से उन्होंने कुछ तत्वज्ञान और कुछ गांजे चरस का अभ्यास प्राप्त कर लिया था। रही शराब, तो ये उनकी कुल प्रथा थी। शराब के नशे में वो कानूनी मसौदे खूब लिखते थे। उनकी बुद्धि प्रज्वलित हो जाती थी। गांजे और चरस का प्रभाव उनके ज्ञान पर पड़ता था। दम लगाकर वो वैराग्य और ध्यान में तल्लीन हो जाते थे। मोहल्ले वालों पर उनका बड़ा रोब था, लेकिन ये उनकी कानूनी प्रतिभा का नहीं, उनकी उदार सज्जनता का फल था। मोहल्ले के 51 ग्वाले और कहार उनके आज्ञाकारी थे। 100 काम छोड़कर उनकी खिदमत करते थे। उनकी मध्य जनित उदारता ने सबों को वशीभूत कर लिया था। वो नित्य कचहरी से आते ही अलगू कहार के सामने 2 रुपए फेंक देते थे। कुछ कहने सुनने की जरूरत न थी, अलगू इसका आशय समझता था। शाम को शराब की एक बोतल और कुछ गांजा तथा चरस मुंशी जी के सामने आ जाता था। बस महफिल जम जाती, यार लोग आ पहुंचते। एक ओर मुवक्किलों की कतार बैठती, दूसरी ओर सहवासियों की। वैराग्य और ज्ञान की चर्चा होने लगती। बीच बीच में मुवक्किलों से भी मुकदमे की 2-1 बातें कर लेते। 10 बजे रात को वो सभा विसर्जित होती थी। मुंशी जी अपने पेशे और ज्ञान चर्चा के सिवा और कोई सिरदर्द मोल न लेते थे। देश के किसी आंदोलन, किसी सभा, किसी सामाजिक सुधार से उनका कोई संबंध न था। इस विषय में वो सच्चे विरक्त थे। बंग भंग हुआ, नरम गरम दल बने, राजनैतिक सुधारों का आविर्भाव हुआ, स्वराज की आकांक्षा ने जन्म लिया, आत्मरक्षा की आवाजें देश में गूंजने लगी, किंतु मुंशी जी की अविरल शांति में जरा भी विघ्न न पड़ा। अदालत और शराब के सिवाय वो संसार की सभी चीजों को माया समझते थे, सभी से उदासीन रहते थे। चिराग जल चुके थे। मुंशी मैकूलाल की सभा जम गई थी। उपासक गण जमा हो गए थे। अभी तक मदिरा देवी प्रकट न हुई थी। अलगू बाजार से न लौटा था। सब लोग बार बार उत्सुक नेत्रों से ताक रहे थे। एक आदमी बरामदे में प्रतीक्षा स्वरूप खड़ा था। 2-3 सज्जन टोह लेने के लिए सड़क पर खड़े थे, लेकिन अलगू आता नजर न आता था। आज जीवन में पहला ऐसा अवसर था कि मुंशी जी को इतना इंतजार करना पड़ा। उनकी प्रतीक्षाजनक उद्विग्नता ने गहरी समाधि का रूप धारण कर लिया था। न कुछ बोलते थे, न किसी की ओर देखते थे। समस्त शक्तियां प्रतीक्षा बिंदु पर केंद्रीभूत हो गईं। अकस्मात सूचना मिली कि अलगू आ रहा है। मुंशी जी जाग पड़े। सहवासी गण खिल गए, आसन बदलकर संभल बैठे। उनकी आंखें अनुरक्त हो गईं। आशामय विलंब आनंद को और बढ़ा देता है। कुछ क्षण में अलगू सामने आकर खड़ा हो गया। मुंशी जी ने उसे डांटा नहीं। यह पहला अपराध था, इसका कुछ न कुछ कारण अवश्य होगा। दबे हुए पर उत्कंठा युक्त नेत्रों से अलगू के हाथ की ओर देखा। बोतल न थी। विस्मय हुआ, विश्वास ना आया। फिर गौर से देखा, बोतल न थी। ये अप्राकृतिक घटना थी, पर इस पर उन्हें क्रोध न आया। नम्रता के साथ पूछा, बोतल कहां है? अलगू ने कहा, आज नहीं मिली। ये क्यों? दुकान के दोनों नाके रोके हुए सुराज वाले खड़े हैं, किसी को उधर जाने ही नहीं देते। अब मुंशी जी को क्रोध आया, अलगू पर नहीं, स्वराज्य वालों पर। उन्हें मेरी शराब बंद करने का क्या अधिकार है? तर्क भाव से बोले, तुमने मेरा नाम नहीं लिया? बहुत कहा, लेकिन वहां कौन किसी की सुनता था? सभी लोग लौट आते थे, मैं भी लौट आया। चरस लाए? वहां भी वही हाल था। अरे तुम मेरे नौकर हो या स्वराज वालों के? मुंह में कालिख लगवाने के लिए थोड़ी ही नौकर हूं। तो क्या वहां बदमाश लोग मुंह में कालिख भी लगा रहे हैं? देखा तो नहीं, पर सब यही कहते थे। अच्छी बात है, मैं खुद जाता हूं, देखूं तो किसकी मजाल है जो रोके। एक एक को लाल घर दिखा दूंगा। ये सरकार का राज है, कोई बदमिली नहीं। वहां कोई पुलिस का सिपाही ना था? थानेदार साहब आप ही खड़े सबसे कहते थे, जिसका जी चाहे शराब ले या पिए, लेकिन सब लौट आते थे, उनकी कोई ना सुनता था। थानेदार मेरे दोस्त हैं। चलो जी ईदू, चलते हो? रामबली, बेचन, झिनकू, सब चलो, एक एक बोतल ले लो, देखूं कौन रोकता है। कल को ही मजा चखा दूंगा। मुंशी जी अपने चारों साथियों के साथ शराब खाने की गली के सामने पहुंचे तो वहां बहुत भीड़ थी। बीच में दो सौम्य मूर्तियां खड़ी थी। एक मौलाना जामिन थे जो शहर के मशहूर मुज्तहिद थे, दूसरे स्वामी घनानंद थे जो वहां की सेवा समिति के संस्थापक और प्रजा के बड़े हितचिंतक थे। उनके सम्मुख ही थानेदार साहब कई कांस्टेबलों के साथ खड़े थे। मुंशी जी और उनके साथियों को देखते ही थानेदार साहब प्रसन्न होकर बोले, आइए मुख्तार साहब, क्या आज आपको ही तकलीफ करनी पड़ी? ये चारों आप ही के हमराह है ना? मुंशी जी बोले, जी हाँ, पहले आदमी भेजा, वो नाकाम वापस आ गया। सुना आज यहाँ बड़ा हड़बोंग मची हुई है, स्वराज वाले किसी को अंदर नहीं जाने देते।
1: अरे जी नहीं, यहाँ किसकी मजाल है जो किसी के काम में हाजिर हो सके। आप शौक से जाइए, कोई चूं तक नहीं कर सकता। आखिर मैं यहां किस लिए हूं?
0: मुंशी जी ने गौरवोन्मत्त दृष्टि से अपने साथियों को देखा और गली में घुसे कि इतने में मौलाना जामिन ने ईदू से बड़ी नम्रता से कहा, दोस्त ये तो तुम्हारी नमाज का वक्त है, यहां कैसे आए? क्या इसी दीनदारी के बल पर खिलाफत का मसला हल करेंगे? ईदू के पैरों में जैसे लोहे की बेड़ी पड़ गई। लज्जित भाव से खड़ा भूमि की ओर ताकने लगा, आगे कदम रखने का साहस न हुआ। स्वामी घनानंद ने मुंशी जी और उनके बाकी तीन साथियों से कहा, बच्चा ये पंचामृत लेते जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। जिनकू, रामबली और बेचन ने अनिवार्य भाव से हाथ फैला दिए और स्वामी जी से पंचामृत लेकर पी गए। मुंशी जी ने कहा, इसे आप खुद पी जाइए, मुझे कोई जरूरत नहीं। स्वामी जी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विनोद भाव से बोले, इस भिक्षुक पर आज दया कीजिए, उधर न जाइए। लेकिन मुंशी जी ने उनका हाथ पकड़कर सामने से हटा दिया और गली में दाखिल हो गए। उनके तीनों साथी स्वामी जी के पीछे सर झुकाए खड़े रहे। मुंशी जी बोले, रामबली, जिनकू, आते क्यों नहीं? किसकी ताकत है कि हमें रोक सके?
2: जिनकू बोला, तुम ही काहे नहीं लौटावत हो, साधु संतन की बात के माने हो थे कि नहीं?
3: तो इसी हौसले पर घर से निकले थे?
2: अरे निकले थे कि कोई जबरदस्ती रोकेगा तो उसे समझेंगे, साधु संतों से लड़ाई करने थोड़ी चले थे।
3: मुंशी जी अब बोले, सच कहा है, गंवार भेड़ होते हैं भेड़।
2: आप शेर हो जाएं, हम भेड़ ही बने रहेंगे।
0: मुंशी जी अकड़ते हुए शराब खाने में दाखिल हुए। दुकान पर उदासी छाई हुई थी। कलवार अपनी गद्दी पर बैठा ऊंग रहा था। मुंशी जी की आहट पाकर चौंक पड़ा। उन्हें तीव्र दृष्टि से देखा, मानो ये कोई विचित्र जीव है। बोतल भर दी और ऊंघने लगा। मुंशी जी गली के द्वार पर आए तो अपने साथियों को न पाया। बहुत से आदमियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और निंदा सूचक बोलियां बोलने लगे। एक ने कहा, दिलावर हो तो ऐसा हो। दूसरा बोला, शर्म चे कुत्तीस्त के पेशे मर्दा विवाद, अर्थात मर्दों के सामने लज्जा नहीं आ सकती। तीसरा बोला, है कोई पुराना पियक्कड़, पक्का लतियल। इतने में थानेदार साहब ने आकर भीड़ हटा दी। मुंशी जी ने उन्हें धन्यवाद दिया और घर चले। एक कांस्टेबल भी रक्षार्थ उनके साथ चला। मुंशी जी के चारों मित्रों ने बोतल फेंक दी और आपस में बातें करते हुए चले। जिनकू बोला,
3: एक बेर हमारा इक्का बेगार में पकड़ जात रहे तो यही स्वामी जी चपरासी से कह सुन के छुड़ाए दिन रहा।
2: रामबली बोला, पिछले साल जब हमारे घर में आग लगी थी तब भी तो यही सेवा समिति वालों को लेकर पहुंच गए थे, नहीं तो घर में एक सूत न बचता।
0: अब बेचन बोला, मुख्तार अपने सामने किसी को गिनते ही नहीं, आदमी कोई बुरा काम करता है तो छिपके करता है, अरे ये नहीं कि बिहाई पर कमर बांध ले।
4: अब फिर से एक बार जिनको बोला, भाई पीठ पीछे को की बुराई न करे चाहिए, और जौन कछु होए पर आदमी बड़ा अकबाली हो, उतने आदमियों के बीच मां कैसन घुसन चला गवा।
2: अरे ये कोई अकबाल नहीं है, थानेदार ना होता तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाता,
0: रामबली ने कहा।
2: बेचन बोला, मुझे तो कोई 50 रुपए देता तो भी गली में पैर न रख सकता, शर्म से ही सिर नहीं उठता था।
0: अब के ईदू ने कहा, इनके साथ आकर आज बड़ी मुसीबत में फंस गया, मौलाना जहां देखेंगे वही आड़े हाथों लेंगे, दीन के खिलाफ ऐसा काम क्यों करें कि शर्मिंदा होना पड़े। मैं तो आज मारे शर्म के गड़ गया, आज तौबा करता हूं, अब इसकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखूंगा।
2: रामबली ने कहा, शराबियों की तौबा कच्चे धागे से मजबूत नहीं होती।
0: ईदू ने कहा, अगर फिर कभी मुझे पीते देखना तो मुंह में कालिख लगा देना।
1: बेचैन कहने लगा, अच्छा तो इसी बात पर आज मैं इसे छोड़ता हूं, अब पीऊं तो गौ रक्त बराबर।
4: झिनकू बोलने लगा, तो हमका ही सबसे पापी हन, फिर कभू जो हमका पियत देखो बिठाए के 50 जूता लगाओ।
1: राम बली बोला, अरे जा, अभी मुंशी जी बुलाएंगे तो कुत्ते की तरह दौड़ते जाओगे।
4: मुंशी जी के साथ बैठे देखियो तो 100 जूता लगायो, जिनके बात में फर्क है उनके बाप में फर्क है।
1: अब के झिनकू ने यह कहा, तो भाई मैं भी कसम खाता हूं कि आज से गांठ के पैसे निकाल कर ना पीऊंगा। हाँ, अब मुफ्त में पीने में इनकार रहे।
4: राम बली ने कहा, गांठ के पैसे तुमने कभी खर्च किए हैं?
1: जवाब बेचन ने दिया। इतने में मुंशी मैकूलाल लपके हुए आते दिखाई दिए। यद्यपि वो बाजी मारकर आए थे, मुख पर विजय गर्व की जगह खिसियानापन छाया हुआ था। किसी अव्यक्त कारणवश वो इस विजय का हार्दिक आनंद ना उठा सकते थे। हृदय के किसी कोने में छिपी हुई लज्जा उन्हें चुटकियां ले रही थी। वो स्वयं अज्ञात थे, पर उस दुस्साहस का खेद उन्हें व्यथित कर रहा था। रामबली ने कहा, आइए मुख्तार साहब, बड़ी देर लगाई,
4: तुम सब के सब गावदे ही निकले, एक साधु के चकमे में आ गए।
1: इन लोगों ने तो आज से शराब न पीने की कसम खा ली है।
4: ऐसा तो मैंने कोई मर्द ही नहीं देखा जो एक बार इसके चंगुल में फंसकर निकल जाए। मुंह से बकना दूसरी बात है।
1: हिदू बोला, जिंदगी रही तो देख लीजिएगा। झिनकू ने कहा,
4: दाना पानी तो कोस ना ही छूट सकत है, और बातन का जब मनमा आवे छोड़ दे, बस चोट लग जाए का चाही, नशा खाए बिना को मर नहीं जात है।
1: मुंशी जी बोले,
4: अच्छा देखूंगा तुम्हारी बहादुरी भी।
1: देखना क्या है, छोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं, यही होगा ना कि 2-4 दिन जी सुस्त रहेगा। लड़ाई में अंग्रेजों ने छोड़ दिया था जो से पानी की तरह पीते हैं, तो हमारे लिए कोई मुश्किल बात है क्या? यही बातें करते हुए लोग मुख्तार साहब के मकान पर आ पहुंचे। दीवान खाने में सन्नाटा था, मुवक्किल चले गए थे, अलगू पड़ा सो रहा था। मुंशी मसनत पर जा बैठे और अलमारी से गिलास निकालने लगे। उन्हें अभी तक अपने साथियों की प्रतिज्ञा पर विश्वास न आता था। उन्हें पूरा यकीन था कि शराब की सुगंध और लालिमा देखते ही सभी की तौबा टूट जाएगी। जहां मैंने जरा बढ़ावा दिया वहीं सब के सब आकर डट जाएंगे और महफिल

दर्जनों कचलोहियों से अच्छे हैं। आओ आओ बैठ जाओ। रामवली ने कहा, मैं तो हाजिर ही हूं, लेकिन मैंने भी कसम खाई है कि कभी गांठ के पैसे खर्च करके न पीऊंगा। मुंशी जी बोले, अजी जब तक मेरे में दम है तुम जितना चाहे पियो, गम क्या है। रामबली बोले, लेकिन आप न रहे तब ऐसा सज्जन कहां पाऊंगा। अजी तब देखी जाएगी, मैं आज थोड़ा मरा जाता हूं। रामबली बोले, जिंदगी का कोई अतपार नहीं, आप मुझसे पहले जरूर ही मरेंगे तो उस वक्त मुझे रोज कौन पिलाएगा, तब तो छोड़ भी ना सकूंगा, इससे बेहतर है कभी से फिक्र करूं। यार ऐसी बातें करके दिल ना छोटा करो।

दवा के भांति शराब पीनी पड़ी। पहले तो सहवासियों पर झुंझलाए, दगाबाजों को मैंने सैकड़ों रुपए खिला दिए होंगे, लेकिन आज जरा सी बात पर सब के सब फिरंट हो गए। अब मैं भूत की भांति अकेला पड़ा हुआ हूं, कोई हंसने बोलने वाला नहीं। ये सोहबत की चीज है, जब सोहबत का ही आनंद ना रहा तो पीकर खाट पर पड़े रहने से क्या फायदा। आज मेरा कितना अपमान हुआ, जब मैं गली में घुसा हूं तो सैकड़ों ही आदमी मेरी ओर आग्नेय दृष्टि से ताक रहे थे। शराब लेकर लौटा हूं तब तो लोगों का वश चलता तो मेरी बोटियां नोच खाते, थानेदार ना होता तो घर तक आना मुश्किल था।

0: साहस की बुलंद शुरुआत से लेकर आसमान की असीम ऊंचाइयों तक 8 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस।
1: वर्ष 1947-48, 1965 और 1971 के ऐतिहासिक युद्धों से लेकर ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना ने हर पल कर दिखाया है अदम्य पराक्रम, अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोच्च बलिदान।
0: तो मध्य प्रदेश के जाबाज युवाओं, क्या आप तैयार हैं? बादलों को चीरकर देश का मान बढ़ाने के लिए तो बनिए अग्निवीर वायु, हासिल कीजिए वो मुकाम जो जिंदगी भर की पहचान बन जाए और गर्व से कीजिए भारत माँ की सेवा।
1: भर्ती और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए
0: 15 एयरमैन चयन केंद्र के इंस्टाग्राम पेज 15ASC_भोपाल और आधिकारिक वेबसाइट IAFRecruitment.edcil.co.in पर विजिट करें।
1: नभस प्रशम दीप्तम।
2: जय हिंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवाते हैं भक्ति पद। आवाजें हैं हेमंत चौहान और साथी कलाकारों की।

हमारे सौराष्ट्र के आद्य कवि नरसिंह मेहता, उसकी एक रचना मेरा बेटा मयूर। अमेरे व्यवारिया संतो राम नामना, व्यापारी आवे छे बधा गाम गामना, अमेरे व्यवारिया संतो राम नामना।

तो सौराष्ट्र के परम संत सदगुरु दासी जीवन साहब की एक रचना है, देखंदा को याद दिल माए जनन जनन जन जाल दी वागे।

गीता एक सौराष्ट्र का लोकगीत है, बाग में रायणू ना जाड़, वो पेश करी है।

0: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति पद, कलाकार थे हेमंत चौहान और साथी। आज का कार्यक्रम भारत भारती बस यहीं तक। अब दीजिए अपने दोस्त दानिश को इजाजत इस प्रोग्राम से। नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: हिंदी फिल्मों के सदाबहार अभिनेता नाना पाटेकर को रेडियो आजाद हिंद की विनम्र श्रद्धांजलि।
0: मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

मैं हूँ मितुल प्रदीप। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। देश को आज़ादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद कराया। उनकी कुर्बानी हमेशा याद रहेगी। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: शाम की सभा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त रत्नेश सोनी। आपने ट्यून किया FM 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। शाम के 5 बज गए। अब हमारी शाम की सभा प्रारंभ होने जा रही है। सुई की घड़ी चंद सेकंड ही बचे हैं 5 बजाने में। शाम 5 बजे हमारी शाम की सभा आरंभ होती है।

तो सबसे पहले आपको बताए थे आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। सबसे पहले सुनिएगा कार्यक्रम अक्षरनिधि मंडल 2 सूक्त 36। उसके बाद आनंद लीजिए भक्ति संगीत का, यानी अक्षरनिधि के ठीक बाद आप सुनेंगे भक्ति संगीत।

रोजाना की तरह सुबह, माफ कीजिए, शाम 6 बजे का समय होगा वतन के राग का। मुंशी प्रेमचंद की पुण्यतिथि पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम में स्वर होगा सुनीता सिंह का। बाल सभा कार्यक्रम सुनिए शाम 6:30 पर। गणेश उत्सव से हमने क्या सीखा, कार्यक्रम में स्वर होंगे परिकल्पक और मनीषा चतुर्वेदी के। हमारी सेना हमारा गर्व कार्यक्रम सुनिए शाम 7 बजे। भारतीय सेना में उच्च अधिकारी भर्ती प्रक्रिया की जानकारी आपको देंगे इस कार्यक्रम में। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भाभा से अदिति गौड़ की चर्चा इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे। हमारा विशेष कार्यक्रम सुनिए शाम 7:30 पर। विश्व पशु कल्याण दिवस पुनः विषय डॉक्टर अंकुर नारद से मनीषा चतुर्वेदी की खास बातचीत आपको सुनाएंगे। देश के संस्थान ये कार्यक्रम सुनिए रात 8 बजे। अर्थव्यवस्था का प्रहरी भारतीय रिजर्व बैंक, संदीप शर्मा और भगवती सक्सेना के स्वर होंगे कार्यक्रम में। आजाद हिंद सुनिए शाम रात 8:30 पर। जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर आधारित होगा आज का आजाद हिंद।

0: रात 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम विवेकानंद, युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो अब से लेकर रात 10 बजे तक बने रहिए अपने ध्वनि मित्र रत्नेश के साथ और आनंद लीजिए इन विभिन्न कार्यक्रमों का। एक अंतराल और उसके बाद सुनते हैं अक्षय निधि।
1: साहस की बुलंद शुरुआत से लेकर आसमान की असीम ऊंचाइयों तक 8 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस।
2: वर्ष 1947-48, 1965 और 1971 के ऐतिहासिक युद्धों से लेकर ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना ने हर पल कर दिखाया है अदम्य पराक्रम, अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोच्च बलिदान।
1: तो मध्य प्रदेश के जाबाज युवाओं, क्या आप तैयार हैं? बादलों को चीरकर देश का मान बढ़ाने के लिए तो बनिए अग्निवीर वायु।

0: सूक्त 36 से वाचन। ऋषि हैं ग्रत्समत एवं भार्गव शौनक। देवता हैं इंद्र एवं मधु, मरुत एवं माधव, त्वष्टा एवं शुक्र, अग्नि एवं शुचि, इंद्र एवं नभ, मित्रा वरुण एवं नभस्य, और छंद है जगती।
1: तुभ्वं हिन्वानो वसिष्ठ गा अपोधु क्षंसीम विभिरद्रिभिर्नरः पिबेन्द्र स्वाहा प्रहुतं वषट्कृतं होत्रादा सोमं प्रथमो य ईशिसे। हे इंद्रदेव, इस सोम रस में गौ दुग्ध तथा जल मिश्रित है। याज्ञिकों द्वारा पत्थर से कूट कर निकाले गए इस सोमरस को ऊन की छननी से शोधित किया जाता है। हे इंद्रदेव, आप समस्त संसार के शासक हैं, अतः याजकों द्वारा वषटकार पूर्वक स्वाहा के साथ समर्पित किए गए सोम को यज्ञ में आकर सबसे पहले आप पान करें। यज्ञैः सम्मिश्लाः प्रशतिभिर् रिष्टिभिर् यामच्छ्रुभासो अञ्जिषु प्रिया उत आसद्या बहिर् भरतस्य सूनवः पोत्रादा सोमं पिबता दिवो नरः। यज्ञीय कार्य में सहायक, भूमि को सिंचित करने वाले, शस्त्रों से सुशोभित, आभूषण प्रेमी, भरण पोषण में समर्थ, देवपुत्र तथा नेतृत्व प्रदान करने

0: विराजमान होकर सुशोभित हों। हे त्वष्टा देव, आप देवगणों तथा दैवी शक्तियों के सोमरस का पान करके हर्षित हों। आवक्षि देवाम इह विप्र यक्षी चोषन होतर्नि सदा योनिषु त्रिषु प्रतिवीहि प्रस्थितम् सोम्यम् मधु पिबाग्निर् धात्तव भागस्य त्रिपणुहि। हे मेधावी अग्निदेव, हमारे इस यज्ञ में देवगणों को सत्कार पूर्वक बुलाएं। हे होता अग्निदेव, हमारे यज्ञ की कामना से आप तीनों लोकों में प्रतिष्ठित हों। शोधित सोमरस को स्वीकार करके इस यज्ञ में सोमपान करें। समर्पित किए गए भाग से आप तृप्त हों। एषस्य ते तन्वो नृम्णवर्धनः सह ओजः प्रदिवि बाहवोर्हितः तुभ्यं सुतो मघवन्तुभ्य माभृतस्वमस्य ब्राह्मणादा त्रिपत्पिब। हे इंद्रदेव, यह सोमरस आपके शरीर में शक्ति की वृद्धि करने वाला है। इसी सोम से आपकी भुजाएं बलशाली हैं तथा आप तेजस्वी एवं ओजस्वी हैं। हे इंद्रदेव, आपके निमित्त ही यह सोमरस लाया गया है तथा शोधित किया गया है। ज्ञानी जनों द्वारा प्रदान किए गए सोमरस का पान करके आप तृप्त हों। जुषेथाम यज्ञम बोधतम हवस्य मे सत्तो होता निविदः पूर्व्या अनु अच्छा राजाना नम एत्यावृतम प्रशास्त्रादा पिबतम सोम्यम मधु। हे मित्रा वरुण, आप हमारे यज्ञ में आए। होता गण उत्तम स्तोत्रों से स्तुति करते हैं, अतः हमारे आवाहन को सुनकर यज्ञ में बैठकर सुशोभित हो। हे देवो, याजकों द्वारा शोधित यह सोमरस दुग्ध मिश्रित है, अतः हमारे इस यज्ञ में आकर इस सोमरस का पान करें।
1: अभी आप सुन रहे थे ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 36 से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्बु त्रिपाठी।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षनिधि 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।
3: साहस की बुलंद शुरुआत से लेकर आसमान की असीम ऊंचाइयों तक 8 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस।
4: वर्ष 1947-48, 1965 और 1971 के ऐतिहासिक युद्धों से लेकर ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना ने हर पल कर दिखाया है अदम्य पराक्रम, अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोच्च बलिदान।
3: तो मध्य प्रदेश के जाबाज युवाओं, क्या आप तैयार हैं? बादलों को चीरकर देश का मान बढ़ाने के लिए तो बनिए अग्निवीर वायु। हासिल कीजिए वो मुकाम जो जिंदगी भर की पहचान बन जाए और गर्व से कीजिए भारत माँ की सेवा।
4: भर्ती और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए
3: 15 एयरमैन चयन केंद्र के इंस्टाग्राम पेज 15ASC_भोपाल और आधिकारिक वेबसाइट IAFRecruitment.edcil.co.in पर विजिट करें।
4: नभस प्रशम दीप्तम।
5: जय हिंद।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

श्रोताओं, ये तो सर्वविदित है कि ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं हैं। अंततः उसी ने हमें गढ़ा है, उसी ने बनाया है और हमें भी उसी की शरण में जाना होता है। या यूं कहें कि सब कुछ होने के बाद भी अंततः है हरी शरण ही।

श्रोताओं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, करते भी हम हैं, हर कोई करता है, आप भी करते हैं, वो भी करता है, हर इंसान उसकी जितनी क्षमता है उससे कार्य करता है, प्रयास करता है, फल भी पाता है। लेकिन हम कोई ना कोई एक ताकत है जिसके भरोसे ये करते हैं, जो हमसे करवाता है, जो कार्य हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। तो हम सबके मन में एक भरोसा है, उस भरोसे के सहारे हम अपने प्रयास करते हैं।

श्रोता, हम प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास कितना सफल होगा, क्या उसके परिणाम होंगे, परिणाम जो भी हो, अंततः हम जाते हरि शरण में ही हैं। सफल हो तो भी, असफल हो तो भी, सफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, असफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, जाते हरि शरण में ही हैं।

0: मित्रों, ये था भक्ति संगीत। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। बने रहिए हमारे साथ अगले कार्यक्रमों के लिए।
1: साहस की बुलंद शुरुआत से लेकर आसमान की असीम ऊंचाइयों तक 8 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस।
2: वर्ष 1947-48, 1965 और 1971 के ऐतिहासिक युद्धों से लेकर ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना ने हर पल कर दिखाया है अदम्य पराक्रम, अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोच्च बलिदान।
1: तो मध्य प्रदेश के जाबाज युवाओं, क्या आप तैयार हैं? बादलों को चीर कर देश का मान बढ़ाने के लिए तो बनिए अग्निवीर वायु, हासिल कीजिए वो मुकाम जो जिंदगी भर की पहचान बन जाए और गर्व से कीजिए भारत माँ की सेवा।
2: भर्ती और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए
1: 15 एयरमैन चयन केंद्र के इंस्टाग्राम पेज 15ASC_भोपाल और आधिकारिक वेबसाइट IAFRecruitment.edcil.co.in पर विजिट करें।
2: नभस प्रशम दीप्तम।
1: जय हिंद।

मित्रों, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम वतन का राग का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। सन 1909, उन दिनों नवाब राय के नाम से उर्दू में एक कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ, सोजे वतन, अर्थात देश का दर्द। 5 कहानियों का ये संग्रह देशभक्ति की भावना से भरा हुआ था। उन दिनों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देशभक्ति की बात करना जुर्म था। इस संग्रह की एक कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन का आखिरी वाक्य था, खून का वो आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। ऐसे वाक्य लिखने वाले को अंग्रेज सरकार कहां बर्दाश्त कर सकती थी। खुफिया पुलिस ने खोज करना शुरू किया और पता लगाया कि नवाब राय नामक किसी लेखक ने ये पुस्तक लिखी है। लेखक की खोज हुई और नवाब राय को हमीरपुर के कलेक्टर ने तहसील कुलपहाड़ बुलवाया और कहा, खैर मनाओ कि अंग्रेजी अमलदारी में हो, मुगल साम्राज्य का जमाना होता तो हाथ काट लिए जाते। नवाब राय उर्फ मुंशी जी खून के आंसू पीकर रह गए। सरकार ने किताब की सारी प्रतियां बुलवा ली और उन्हें आग के हवाले कर दिया। दुखी मुंशी जी ने अपना नाम नवाब राय से बदलकर प्रेमचंद कर लिया, वही नाम जिससे वो आज पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। मानव मन के अप्रतिम चितेरे मुंशी प्रेमचंद का जन्म बनारस के पास लम्ही नामक गांव में सन 1880 में हुआ था। बचपन में ही माँ बाप को खोने वाले प्रेमचंद 15-16 साल की आयु से ही गृहस्थी की उलझनों में फंस गए। 2 सौतेले भाई, सौतेली माँ और अपनी पत्नी के परिवार को पालना उनके लिए कठिन कार्य हो गया था। वे गांव में रहते, ट्यूशन करते और शहर पढ़ने जाते। 5 मील वापस आकर रात को कुप्पी जलाकर फिर पढ़ने बैठते। कॉलेज में भर्ती होने के लिए उन्हें बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वे बनारस शहर में रहने लगे, 5 रुपए की ट्यूशन की और एक वकील के यहाँ अस्तबल के ऊपर कच्ची कोठरी में रहने लगे। उनकी दिनचर्या थी खुद खाना पकाना और दिन भर उपन्यास पढ़ना। ये उपन्यास प्रेमचंद के दुखी जीवन के साक्षी थे। वे मुसीबतों में उन्हें ढाढ़स बंधाते थे। कुछ देर के लिए जीवन की कठिनाइयों को वो भूल जाते थे। ये 19वीं सदी का आखिरी साल था। इस बीच उनकी मुलाकात एक मामूली स्कूल के हेडमास्टर से हो गई, जिसने उन्हें 18 रुपए महीने पर अपने यहाँ मास्टर रख लिया। ये प्रेमचंद का 20वीं सदी और अपने नए जीवन में प्रवेश था।

अपनी बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रेमचंद ने गोरखपुर, कानपुर, बनारस आदि कई जगह पर रहकर अध्यापन का कार्य किया। इस दौरान उन्हें पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गरीब जनता के दुख दर्द का गहरा अनुभव हुआ। महोबा में वे 6 साल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सब इंस्पेक्टर की हैसियत से रहे। इस दौरान स्कूलों का दौरा करते हुए वे अपने उपन्यास और कहानियों के पात्रों को अपनी स्मृति में सहेजते रहे। उनका एक उपन्यास 1901 में प्रकाशित हुआ और दूसरा 1904 में। प्रेमचंद जी ने गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की कुछ कहानियों का अनुवाद भी किया और फिर सन 1907 में कहानी लिखना आरंभ किया। तब तक पहले विश्व युद्ध का वातावरण बनने लगा था। प्रेमचंद समझ गए थे कि इस युद्ध की तैयारियों का हिंदुस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। युद्धकाल में ही उन्होंने अपना महान उपन्यास सेवा सदन लिखा। सेवा सदन की मुख्य समस्या भारतीय नारी की पराधीनता है। इसमें प्रेमचंद ने किसी तरह तमाम पुरानी सांस्कृतिक परंपराओं को तोड़ते हुए वर्तमान समाज में नारी की पराधीनता को स्पष्ट रूप से चित्रित किया। ये उपन्यास उन्होंने पहले उर्दू में लिखा था, बाद में इसे हिंदी में छपवाया। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उन्होंने प्रेमाश्रम पूरा किया, जिसके बारे में आलोचकों ने लिखा कि प्रेमचंद का हृदय संकुचित राष्ट्रवाद से ऊपर था। वो जानते थे कि इंसाफ और नई जिंदगी के लिए आम जनता जो लड़ाई लड़ रही है, हिंदुस्तान का स्वाधीनता आंदोलन उसी का हिस्सा है। वो हिंदुस्तान के लोगों में एक नया भाव पैदा होते हुए देख रहे थे। दुनिया के तमाम मेहनत करने वाले लोग भाई भाई हैं। प्रेमाश्रम में प्रेमचंद हमें ठेठ किसानों के बीच ले जाते हैं। उनके अलाव, उनके खेत और ताल, उनके अखाड़े और लावणी ख्याल, उनके अंधविश्वास और नए जीवन के कसमसाते हुए भावांकुर, प्रेमाश्रम में ये सब कुछ सजीव है। ये उपन्यास असहयोग आंदोलन के बाद छपा, किंतु फिर भी इसमें प्रेमचंद का गंभीर चिंतन, उनके ऊंचे विचार, एक नई मनुष्यता, एक नई नैतिकता का चित्रण दिखाई देता है, जो हिंदुस्तान के किसानों में किरण की तरह फूट रहे थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन छिड़ने पर प्रेमचंद जी ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। वे अध्यापन के साथ पत्र पत्रिका में संपादक के रूप में काम करने लगे। इस समय सन 1929-30 में वे माधुरी का संपादन करते थे, जिसने हिंदी की अपूर्व सेवा की। किंतु राष्ट्रीय आंदोलन का साथ देने वाले नए जनवादी विचारों की समर्थक पत्रिका की खोज में उन्होंने सन 1930 में हंस का प्रकाशन आरंभ किया। हंस पत्रिका का जन्म स्वाधीनता आंदोलन की प्रगति के साथ हुआ, इसलिए अंग्रेज हुकूमत की कोप दृष्टि इस पर पड़ी, क्योंकि प्रेमचंद ने इसे स्वाधीनता संग्राम का सबल सैनिक बना दिया था।

0: प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखीं और उनकी कहानियों में आम आदमी का दर्द साफ देखा जा सकता है। उनके पात्र समाज के मध्यम वर्ग, गरीब तबके के संघर्षशील पात्र हैं और वो राष्ट्रवाद में अपना भविष्य देखते हैं। उनकी कहानी समर यात्रा में एक बूढ़ी महिला नोहरी स्वाधीनता सेनानियों के स्वागत में उल्लास प्रकट करती है। अलौकिक आनंद की रेले में वो अपना सारा दुख संताप भूल जाती है। लोग उसे रोकते हैं, पर नोहरी कहती है,
1: क्या तुम आज भी बूढ़े हो? मेरा बुढ़ापा तो जैसे भाग गया। इन वीरों को देखकर भी तुम्हारी छाती नहीं फूलती। हमारा दुख दर्द हरने के लिए ही तो इन्होंने ये परंठाना है। इन्हीं हाथों से हाकिमों की बेगार बजाई है। अब तो जोर जुलुम का नाश होगा। हम और तुम क्या अभी बूढ़े होने जोग थे? हमें तो पेट की आग ने जलाया है। क्या किसी ने 6 महीने से पेट भर रोटी खाई है? धन है महात्मा और उनके चेले भी, कि दीनों का दुख समझते हैं और उनके उद्धार का जतन करते हैं।
0: प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अधिवेशन के दौरान उन्होंने कहा था कि जब तक साहित्य का काम केवल मन बहलाव का सामान जुटाना, केवल लोरियां गाकर सुनाना, केवल आंसू बहाकर जी हल्का करना था, तब तक इसके लिए कार्य की आवश्यकता नहीं थी। हम साहित्य को केवल मनोरंजन और विलासिता की वस्तु नहीं समझते हैं। भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृष्टि की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो जो हम में गति और बेचैनी पैदा करे। सुलाए नहीं, क्योंकि अब और ज्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। प्रेमचंद ने अपने उपन्यास रंगभूमि में दिखलाया कि जनता अब भी लड़ रही है, वो हारी नहीं है, वो जीतेगी। गोदान उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसमें उन्होंने पढ़े लिखे नौजवानों और किसानों की एकता की तरफ संकेत किया और किसानों के महाजनी शोषण का चित्र खींचा। जबकि कर्मभूमि में खेत मजदूरों की भूमि समस्या पर उन्होंने अपनी लेखनी केंद्रित की और लगानबंदी की लड़ाई को मुख्य लड़ाई बताया। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में जो संघर्ष स्वाधीनता आंदोलन के रूप में दिखाए, वो सब हमारे सामने आए। अपने लाहौर के भाषण में बुद्धिजीवियों से उन्होंने कहा, इंटेलिजेंसिया में जो कुछ भी शक्ति और प्रभाव है वो जनता से ही आता है। जनता से साहित्यकार ताकत पाता है, इसलिए अपनी ताकत पहचान कर उसे जातीय पुनर्जीवन के काम में आगे बढ़ना चाहिए। साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाली चीज नहीं है, उसके आगे आगे चलने वाला एडवांस गार्ड है। वो उस विद्रोह का नाम है जो मनुष्य के हृदय में अन्याय, अनीति और कुरीति से होता है। राष्ट्र का बल वो अपनी राष्ट्रभाषा में ही देखते थे, इसीलिए वे निडर होकर जनता के पक्ष का समर्थन करते थे। जीवन का यथार्थ उनके चित्रण का मूल मंत्र है। वे हमेशा कहते रहे कि साहित्य का आधार जीवन है। वे अपनी लेखनी से जीवन के सभी पहलुओं को छूते रहे। 8 अक्टूबर सन 1936 को अपनी कलम से जन जन को जागृत करने वाला ये महान रचनाकार हमसे विदा जरूर हुआ, लेकिन उसके शब्दों का उजास आने वाली पीढ़ियों को राह दिखाता रहेगा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: ये रेडियो आजाद हिंद है 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम वतन का राग।
1: साहस की बुलंद शुरुआत से लेकर आसमान की असीम ऊंचाइयों तक 8 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस।
2: वर्ष 1947-48, 1965 और 1971 के ऐतिहासिक युद्धों से लेकर ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना ने हर पल कर दिखाया है अदम्य पराक्रम, अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोच्च बलिदान।
1: तो मध्य प्रदेश के जाबाज युवाओं, क्या आप तैयार हैं? बादलों को चीरकर देश का मान बढ़ाने के लिए तो बनिए अग्निवीर वायु, हासिल कीजिए वो मुकाम जो जिंदगी भर की पहचान बन जाए और गर्व से कीजिए भारत माँ की सेवा।
2: भर्ती और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए
1: 15 एयरमैन चयन केंद्र के इंस्टाग्राम पेज 15ASC_भोपाल और आधिकारिक वेबसाइट IAFRecruitment.edcil.co.in पर विजिट करें।
2: नभास प्रशम दीप्तम,
1: जय हिंद।
3: नजी भर के देखा

0: नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: रेडियो आज़ाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय है गणेश उत्सव से हमने क्या सीखा।
2: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
1: बच्चों नमस्ते, मैं हूं आपकी मनीषा दीदी, हाजिर हूं लेकर आपका एक बहुत ही प्यारा सा कार्यक्रम जिसे आप सब प्यार से बाल सभा कहते हैं। आप सब अपने घर में बैठे हैं, मैं स्टूडियो में बैठकर आपसे बातें कर रही हूं। हर बार कोई ना कोई बातों का ऐसा धागा शुरू होता है कि हम बातों से पूरा एक प्रेम रूपी चादर बुन देते हैं। तो आज हम आपसे जानते हैं क्या बात करने वाले हैं। हम आपसे बात करने वाले हैं, अभी अभी गणेश उत्सव हो कर चुका है और उससे हमने, आपने, हम सब ने क्या सीखा। क्योंकि बच्चों, जब भी कोई उत्सव, जब भी कोई त्यौहार आता है, हमारे लिए क्या क्या खास होता है उसमें। कोई बच्चा सोच रहा होगा मिठाई खास होती है, कोई बच्चा सोच रहा होगा नए कपड़े खास होते हैं, किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा स्कूल से छुट्टी मिल जाती है, किसी बच्चे के दिमाग में चल रहा होगा अरे त्योहारों का तो पूरा सीजन ही आने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं बच्चों, हमारा देश एक बहुत प्यारा, बहुत सुंदर और उल्लास और उत्साह से भरा पूरा देश है। इसीलिए तो हम कितने सारे उत्सवों को एक साथ मनाते हैं। अभी गणेश उत्सव जब जाकर चुका है, हम श्री गणेश का विसर्जन कर चुके हैं, तब ये बहुत ज़रूरी बात है कि क्या सीखा आखिर हमने इस उत्सव से, क्या हमारे दिमाग में आया, आपने क्या खास किया जब आप श्री गणेश की स्थापना हुई तब से लेकर उनके विसर्जन तक, ऐसी क्या खास बात थी जो आपको लगता है कि उसका जिक्र आज होना चाहिए। देखिए, मुझे तो बहुत सारे बच्चे मिले हैं तो मैं तो आज बहुत सारी बातें आपसे करने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये बता दूं कि कोई कहानी के पात्र की बात नहीं करूंगी मैं आज। आज मैं कोई किताब भी नहीं खोलूंगी, किसी नए पन्ने को देखकर कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी। आज हम बात करेंगे मिट्टी की और हमारी कल्पना की। क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने सभी से अपील की थी कि हम गणेश उत्सव में प्रकृति का बहुत ख्याल रखें। और वो क्यों की थी पता है आपको बच्चों? वो इसलिए की थी ताकि हम मिट्टी से जैसा हमारे मन में है वैसा प्रभु श्री गणेश का रूप गढ़ें। हाँ, और आकार से बड़ी आस्था होती है। तो उस खास बात में ये बात थी बच्चों कि कई लोग ये महसूस करते हैं कि जब हम स्वयं अपने आराध्य की मूर्ति बनाते हैं तो उसका रूप ही अलग होता है। आपको पता है यहाँ एक जगह है भोपाल में नदी का घर, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे रोज आते थे कार्यशाला में भाग लेने और सीखने कि कैसे मूर्ति बनाई जाती है। और जब वो बच्चे आते थे, क्योंकि मैं रोज जाती थी उस कार्यशाला में बच्चों, क्योंकि मुझे बच्चों से मिलना, बच्चों से बातें करना बहुत पसंद है। आप यकीन करिए बच्चों, पहले दिन आकर कुछ बच्चों ने सीखा और फिर दूसरे दिन से उन्होंने मिट्टी के गोले लेकर नीचे अखबार रख कर क्या आकार देना शुरू किया है। मैं तो देखकर दंग रह गई, मतलब इतने सुंदर सुंदर आकार बनाए उन्होंने, जो जो उनकी कल्पना थी वो सब कुछ उन्होंने मिट्टी में गढ़ने की कोशिश की। आपको बताएं, एक बच्चे ने तो एक बहुत ही प्यारी सी पहले मूर्ति बनाई और उसके बगल में एक छोटा सा चौकोर मिट्टी से लेकर बना दिया। तो मैंने कहा ये क्या है? बोले ये दीदी मेरा मोबाइल है। मैंने कहा मोबाइल है मतलब? मैंने कहा ये यहाँ क्यों बनाया? तो बोला कि मैंने सोच लिया है दीदी अब से मैं मम्मी का मोबाइल नहीं छूऊंगा। मुझे इस कार्यशाला में आकर इतना मज़ा आ रहा है कि मैंने ये मोबाइल भी अर्पण कर दिया है प्रभु को, और अब से मैं मोबाइल कभी नहीं छूऊंगा। मुझे इतना अच्छा लगा कि जब बच्चे अपनी कल्पनाओं में जाते हैं ना, तब वो क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या चलता है, आप उसका पीछा तो छोड़िए, आप उसको सोच भी नहीं सकते। कितनी बड़ी बात है बच्चों। आप कभी ऐसे अपनी कल्पनाओं में गए हैं? आपने कभी मिट्टी को हाथ में लेकर ऐसे अपने आराध्य की मूर्ति गढ़ी है? आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि गणेश उत्सव बीत चुका है, अब हम कैसे मूर्ति बनाएं। नहीं, आप अभी भी जिसकी चाहे उसकी मूर्ति या कोई आकार देकर देखिए बच्चों, बहुत अच्छा लगता है। और ये संदेश सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं था कि हमें अपने आराध्य की मूर्ति मिट्टी से बनानी है। बहुत अच्छी बात थी कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ये संदेश मिल चुका है कि हमें अपनी प्रकृति का ख्याल रखना है। हमें POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति को नहीं स्थापित करना है, क्योंकि हमारे जलाशय, हमारे तालाब, हमारी नदियाँ, हमारी प्रकृति कितनी खूबसूरत है, और अगर हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे बच्चों, तो भला कौन रखेगा? आपको पता है वहाँ कोई सांचा नहीं था बच्चों के पास। किसी के गणेश जी मोटे बन रहे थे, किसी के छोटे से बन रहे थे, किसी का एक कान थोड़ा सा बड़ा बन गया तो उसने फिर से मिट्टी ली और उसको थोड़ा सही करके हाथ से आकार देकर छोटा किया। एक बच्चा अपने साथ बहुत सारे कुछ लेकर आया था, छोटी सी सुई, छोटी सी एक पेंसिल, एक छोटा सा कटर। मैंने पूछा, तुम इतनी सारी चीज़ें मूर्ति बनाने के लिए क्यों लेकर आए हो? तब उसने बोला कि मैं इस पेंसिल से थोड़ा सा, जब मिट्टी गीली रहेगी ना दीदी, तो मैं गणेश जी को धोती पहनाऊंगा और इसी से उसका जनेऊ भी बनाऊंगा। मुझे लगा कितनी अच्छी बात है। मतलब जब आप पहली सीढ़ी चढ़ गए हैं, आपको आकार देना आ गया है, तब आप उसमें परफेक्शन लाने की कोशिश कर रहे हैं, तब आप सोच रहे हैं कि अब चलो अब मुकुट भी खुद बनाते हैं और फिर मुकुट को सजाते भी हैं। मतलब जब भी आप कोई भी काम जिसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, जिसमें थोड़ी सी कल्पनाशीलता लगती है और थोड़ी सी आपकी एकाग्रता लगती है बच्चों, वो हर काम कमाल का काम होता है। तो मैंने तो इस गणेश उत्सव से, सच बताऊं बच्चों, सबसे ज्यादा बच्चों से ही सीखा। अब बात आई कि भाई हमने मिट्टी की मूर्ति अपने अपने हिसाब से गढ़ी है, अब आप क्या करेंगे, अब भाई स्थापना कैसे करें? तो स्थापना के लिए बच्चों ने बड़े सुंदर सुंदर से कपड़े, मैंने देखा, जोड़ जोड़ के और फिर उनसे एक बहुत सुंदर चादर बनाई। कोई बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ जाकर बहुत खूबसूरत सा गणेश जी के लिए आसन लेकर आया, कोई चौकी लेकर आया, किसी ने उनको बहुत प्यार से अपने घर के बीचों बीच बिठाया, किसी ने पूरे पीछे लाइट लगा दी, किसी ने कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत सुंदर रखा, किसी ने केले के बड़े बड़े पत्तों को पीछे घर जैसा सजाया और फिर साहब ने बहुत छोटे छोटे से खिलौने भी रखे। मतलब मैं जिस बच्चे के घर गई ना बच्चों, सब का श्रृंगार एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। और सबसे बड़ी बात इनमें एक और थी कि कोई बच्चा, जितने दिन गणेश उत्सव चला उस दौरान कोई बच्चा मोबाइल की, टीवी देखने की जिद नहीं कर रहा था। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी। तब मुझे एक और बात दिमाग में आई बच्चों कि ये सब जिद हम तब करते हैं, स्क्रीन की जरूरत हमें तब पड़ती है बच्चों, जब हम सच मायनों में खाली होते हैं। खाली सिर्फ इस बात से नहीं कि हमारे पास करने को कुछ नहीं है, खाली इस बात से कि हमारे दिमाग में भी कोई आइडिया आता नहीं है, और आ जाए तो उसे हम आगे बढ़ाते नहीं हैं, क्योंकि लेटे लेटे अपनी छत को ताकते ताकते ढेर सारे आइडियाज आना और उनका वहीं पे खत्म हो जाना, ये बहुत खराब बात है बच्चों। आपको पता है आजकल मैं बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ, लेटे लेटे सोचते रहते हैं कल से हम ये करेंगे, परसों से हम वो करेंगे, लेकिन कभी कल आता ही नहीं। और जब बच्चों कल ही नहीं आएगा तो परसों कहाँ से आएगा? ऐसे ही आप सपने देखते रह जाओगे ना बिस्तर पे लेटे लेटे। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी, बहुरी करे को कब। तो हमेशा याद रखिए कि कल कभी नहीं आता, आपको जो करना है जैसे करना है उसकी एक आदत डालिए। और आपको एक और बात बताऊं कि आज मेरे एक मित्र हैं बहुत अच्छे, वो मुझसे कह रहे थे कि हम जब बात करते हैं ना बच्चों को कि मोटिवेशन मोटिवेशन, तो कभी कभी हमें ये भी सोचना चाहिए कि मोटिवेशन ही सब कुछ नहीं होता, हमारी आदत बहुत बड़ी चीज़ होती है। उन्होंने तो मजाक मजाक में एक बहुत ही अच्छी बात कह दी मुझसे। उन्होंने कहा मोटिवेशन को आप ऐसा समझ लो मोटी बेसन की पकौड़ी, बस एकदम से एक झटके में खाई और फिर उसको हम भूल गए। लेकिन अगर हमने किसी चीज को करने की आदत डाली है ना बच्चों, तो वो काम फिर जरूर होता है। इसलिए लेटे लेटे ढेर सारे आइडियाज में मत जाइए, बहुत डीप थिंकर मत बनिए, पहले करिए, अपने शरीर को चलायमान बनाइए, है ना। एक जगह बैठे तो बैठ के रह गए, याद आ रहा है आपको गणेशोत्सव कितना डांस कर रहे थे आप कॉलोनी में मोहल्ले में, जहाँ चौकी पर बड़े से गणेश जी विराजित थे, आप कितना आनंद ले रहे थे। किसी बच्चे ने फैंसी ड्रेस में भाग लिया था, किसी बच्चे ने ड्राइंग में भाग लिया था, कोई बच्चा घर से मोदक भी बना के लाया था, हाँ ऐसे मोदक जिसमें आपको गैस या आग जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जो आपको बिना कुछ जलाए दूध और मावा इन सब से ही बन गया। तो बच्चों ने मम्मियों की बहुत मदद की उस दौरान। तो बस मैं भी यही चाहती हूँ बच्चों कि आप लोग कुछ ना कुछ करते रहिए, क्योंकि जब हम काम करते हैं तब हम बहुत अच्छे बच्चे बनते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि एक स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, तो क्यों ना हम लेटे लेटे लेटे लेटे ये सोचते रहें कि हमारी जो शरीर की मशीनरी है उसे चलाएंगे भी नहीं और हमारे मन का इंजन दौड़ाते रहेंगे, नहीं वो भी ठप हो जाएगा बच्चों। अपना शरीर भी चलाइए, है ना। अब मिट्टी से हमने इतना कुछ बनाया, लेकिन मिट्टी ने हमें क्या सिखाया? मिट्टी ने हमें ये सिखाया कि गलती से डरना नहीं है। एक बार कोई शेप बिगड़ गया, आप फिर से मिट्टी को मसल के दोबारा आप बना लीजिए। मिट्टी हमें ये सिखाती है कि अपने हाथों से हमें कुछ नया बनाना है। और शायद बच्चों सबसे सुंदर बात ये है कि जब बच्चे अपने हाथों से श्री गणेश बनाते हैं तो वो सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बनाते, वो अपनी कल्पना को आकार देते हैं। आपने देखा जब बच्चे मूर्ति बना रहे थे, तो हो सकता है आप जो बच्चे सुन रहे हैं उनमें से भी कुछ बच्चे वहाँ पहुँचे हों, तो बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे कि किसी ने सूंड सामने उठा दी, किसी ने साइड में कर दी, और सबके भाव एक ही हैं, और भाव है श्रद्धा का, भाव है आस्था का, भाव है विश्वास का। और धीरे धीरे जो भाव आप सब में रोपित हो गया अनजाने में, वो ये है कि हमने प्रकृति से मिट्टी ली, अपने हाथों से उसको आकार दिया, अपने घर में आस्था के साथ स्थापना की, खूब उसके सामने मिट्टी के ही दीपक जलाए, फूल चढ़ाए, और फिर मिट्टी को मिट्टी में ही विलय कर दिया, है ना कितनी अच्छी बात। और धीरे धीरे पानी में घुलती हुई मिट्टी आपको ये सिखा गई कि जीवन में एक सार होना कितना जरूरी है, है ना। कितना कुछ सीखा ना हमने इस मिट्टी से। जब मिट्टी पानी में घुलती है तो आप देखते हो पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, फिर धीरे धीरे धीरे धीरे भूरा होने लगता है, है ना। और ये प्रकृति से जो हमें दोनों चीजें मिली हैं, जल और मिट्टी, ये वापस मिट्टी में ही चली गई, यानी प्रकृति को हमने वैसे का वैसा ही वापस लौटा दिया। इस पूरे चक्र में कहीं हमने प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो बस ये खूबसूरत सी बात थी जो मुझे आज आपसे करनी थी, बहुत मन कर रहा था मेरा।

0: एक और बहुत अच्छी सीख जो मुझे लगी वो ये कि बच्चों ने एक जगह गणेशोत्सव में एक बहुत अच्छी सी प्रतियोगिता रखी थी कि गणेश जी पर अपने भाव प्रकट कीजिए। एक बच्चे ने बड़ी अच्छी कहानी सुनाई, उसने अपनी दादी नानी किसी से सुनी होगी कि मुझे गणेश जी इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो माँ के बहुत बड़े भक्त थे। मैंने कहा कैसे, तो बताने लगा बच्चा कि देखिए एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा तो गणेश जी ने अपनी माँ के चारों ओर चक्कर लगा लिए। कहानी उसे विस्तार से तो नहीं पता थी लेकिन कहानी का सार उसको पता था कि माता पिता के चरणों में सारे तीर्थ होते हैं, ये उसको बहुत अच्छे से पता था। उसने बड़े भोलेपन से ये कहानी सुनाई। कहानी सुन के मुझे तो बहुत आनंद आया, साथ ही साथ और बहुत सारी कहानियाँ बच्चों ने सुनाई। एक कहानी सुनाई थी मुझे एक बच्चे ने वहाँ पर, वो गणेश जी की तो नहीं थी लेकिन कहानी बहुत अच्छी थी। कहानी ये थी कि मैडम, मैंने उससे कहा कि भाई मैडम मत बोलो, दीदी बोलो। तो बोलता नहीं, आपको देख के ना मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी क्लास टीचर हो। तो मैंने कहा ठीक है मैडम बोलो। उसने कहानी सुनानी शुरू की कि मैडम जब मैं गणेश जी को देखता हूँ तो मेरे मन में एक ही बात आती है कि हम जब किसी से भी मिलते हैं, मैं देखता हूँ, मैं कई बार अपनी मम्मी के साथ कहीं जाता हूँ तो लोग आजकल ये नहीं पूछते हैं कि तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो आजकल। सबसे पहले लोग यही बताते हैं, अरे तुम बहुत पतले हो गए, अरे तुम बहुत मोटे हो गए, अरे तुम्हारे चेहरे पे बहुत दाग हो गए, कुछ इलाज करवाया। लेकिन मैडम गणेश जी को देखकर इतना मन खुश होता है कि देखिए कोई कहीं भी हो, कितना भी हो, सबके गणेश अलग अलग हैं लेकिन कोई ये नहीं कहता कि इनके वाले ऐसे हैं, उनके वाले वैसे। सबको कितने सुंदर लगते हैं प्रभु श्री गणेश और हर रूप में कितने सुंदर लगते हैं। वो बच्चा तो अपने बालपन में ये बात कह गया लेकिन ये बात ना बच्चों मेरे घर कर गई। और मैंने इस उत्सव से ये सीखा कि आज के बाद मैं कभी किसी में कोई कमी नहीं देखूंगी। मुझे देखना होगा तो मैं उसकी खूबियां देखूंगी, क्योंकि ये तो मेरी दादी भी कहा करती थी कि किसी की तरफ जब एक उंगली उठाते हो तो आपकी तरफ तीन उंगलियां आती हैं। तो क्या किसी की एक कमी ठीक करने के प्रयास में हम अपनी तीन कमियों को इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं? तो बेहतर होगा कि दूसरे से हम अच्छाई सीखें और अपनी बुराई देखें, क्योंकि बच्चों ये सबसे अच्छा प्रयास होता है। क्योंकि हम जब किसी में कमियां देखते हैं तो हम बहुत धीरे धीरे धीरे धीरे करते ना, हम बहुत मीन मेक निकालने लगते हैं सब में, कोई मिला नहीं कि बस हम शुरू हो जाते हैं ये बिना सोचे कि उसे कैसा लगेगा। जैसे अभी कॉलोनी में मैं देख रही थी कि एक बच्चा, बहुत दिन से उसको कोई प्रॉब्लम हुई और उसको डॉक्टर ने बोला कि थोड़े दिन आपको आराम करना है, अब बच्चे जब खाएंगे पिएंगे और आराम करेंगे तो थोड़ा वेट बढ़ जाता है। हालांकि अपना ख्याल रखना चाहिए, मैं भी यही कह रही हूँ, लेकिन जैसे ही वो लौट के जब उसका आराम वाला समय खत्म हुआ और वो पार्क में आया तो बच्चे बड़ी आसानी से उसे बोलने लगे, मोटू आ गया, मोटू आ गया। ये क्या बात हुई? वो पता है फिर 4-5 दिन फिर नहीं आया। फिर मैं उसके घर गई एक दिन उसकी मम्मा से मिलने, मैंने कहा बेटा आप आते नहीं हो पार्क में। उसने बोला आंटी मैं जाता हूँ तो बच्चे चिढ़ाते हैं, मोटू आ गया, मोटू आ गया। तो मैंने कहा बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है? बोला नहीं आंटी मुझ पर तो फर्क पड़ता है। सुना बच्चों आपने, हो सकता है किसी पे फर्क ना पड़ता हो लेकिन किसी पे फर्क पड़ता है। तो इस उत्सव से मैंने ये भी सीखा कि जो है जैसा है, हमें उसकी कमियां नहीं, हमें उसकी अच्छाइयां देखनी है। हम कोई नहीं होते बच्चों किसी की कमी निकालने वाले, है ना? वो खुद जब समझेगा समय रहते हर चीज ठीक कर लेगा। एक और अच्छी चीज मैंने इस उत्सव से सीखी वो ये सीखी कि कई लोगों ने इस बार अपने घर की सजावट करने में प्लास्टिक का बहुत कम उपयोग किया, बहुत सारे विकल्प तलाशे, है ना? कई लोगों ने धागों से, कई लोगों ने मौली जो होता है उससे फूलों की माला बनाई, कुछ लोगों ने आम्र पत्र से अपने घर की सुंदरता बढ़ाई, कुछ लोगों ने और बहुत सारी चीजें लाई जिनसे अपने घर को सुंदर बनाया, और कुछ लोगों ने बाजार से जो प्लास्टिक की चीजें आती हैं वो भी खरीदी और वो भी उन्होंने उससे अपने घर को सजाया। ठीक है, लेकिन अब जब उत्सव ये बीत चुका है तब एक बार हमें फिर से ध्यान देने की जरूरत है कि अब से दिवाली भी आएगी, दशहरा भी आएगा, बहुत सारे त्योहार आएंगे, लेकिन हम कोशिश करें कि हम प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करेंगे, है ना बच्चों? इस बार हम ज़रूर सोचें कि त्योहारों के सीज़न में हम जितना कम प्रकृति को आहत करें, जितना कम से कम, कोशिश करें कि करें ही नहीं। अगर बहुत ज़रूरी कुछ है तो उसको बहुत न्यूनतम पे ले आएं, है ना बच्चों। अब देखिए इतनी सारी बातें हो गई हैं, तो जल्दी से आपके साथ फिर से आंख मूंद कर संकल्प ले लिए जाए। आपको तो पता ही है कि जब कोई बात मैं करती हूँ तो उससे संबंधित कुछ संकल्प ज़रूर हम लोग बाल सभा में लेते हैं। तो चलिए मैं एक बार थोड़ा सा पानी पीती हूँ, आप लोगों के पास भी पानी रखा है तो पीजिए, और फिर आंखें बंद करके बैठिए, शांति से धीमा सा संगीत सुनिए। सबने आंखें बंद कर ली, चलिए हाथ जोड़ लीजिए। मैं पहला संकल्प लेता हूं या लेती हूं कि उत्सवों को बहुत उत्साह और उल्लास से मनाऊंगा या मनाऊंगी। आज का हमारा दूसरा संकल्प है कि हम हर त्योहार प्रकृति के अनुरूप मनाने का प्रयास करेंगे। आज का हमारा तीसरा संकल्प है प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करेंगे। चौथा और बहुत जरूरी संकल्प बच्चों, हर त्योहार हर उत्सव में अपनी कल्पनाशीलता को हम और बढ़ावा देंगे। अपनी सृजन क्षमता को और बढ़ावा देंगे। और अब आखिरी संकल्प, हम अपने हर व्यवहार से प्रकृति के प्रति कृतज्ञ रहेंगे। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथ आपस में रगड़िए और बहुत प्यार के साथ आंखों पे लगाइए। अब धीरे से आंखें खोल लीजिए और एक बार पुनः उन सब बातों का स्मरण कीजिए जो मैंने आज आपसे बाल सभा में कही हैं, है ना। अच्छा संगीत सुनिए, अच्छी बातें कीजिए, अच्छे दोस्त बनाइए, किसी की कमी मत निकालिए, जो देखना है अच्छा देखिए, गांधी जी के तीन बंदरों का ख्याल कीजिए, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। तो बस इसी विचार के साथ अब चलूं, अपना ध्यान रखिएगा और अपने अपनों का भी ध्यान रखिएगा। चलती हूँ बच्चों, नमस्ते। अभी आप बाल सभा सुन रहे थे। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम, और मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: बाल सभा, साहस की बुलंद शुरुआत से लेकर आसमान की असीम ऊंचाइयों तक 8 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस।
2: वर्ष 1947-48, 1965 और 1971 के ऐतिहासिक युद्धों से लेकर ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना ने हर पल कर दिखाया है अदम्य पराक्रम, अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोच्च बलिदान।
1: तो मध्य प्रदेश के जाबाज युवाओं, क्या आप तैयार हैं? बादलों को चीरकर देश का मान बढ़ाने के लिए तो बनिए अग्निवीर वायु, हासिल कीजिए वो मुकाम जो जिंदगी भर की पहचान बन जाए, और गर्व से कीजिए भारत माँ की सेवा।
2: भर्ती और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए
1: 15 एयरमैन चयन केंद्र के इंस्टाग्राम पेज 15ASC_भोपाल और आधिकारिक वेबसाइट IAFRecruitment.edcil.co.in पर विजिट करें।
2: नभास प्रशम दीप्तम,
1: जय हिंद।
3: गोदावरी का लाल जादू, वह मिट्टी जिसने वैश्विक फैशन को रंग दिया। भारत के गोदावरी डेल्टा की घुमावदार नहरों के भीतर मिट्टी में एक ऐसा रहस्य दफन था जिसने यूरोप के शाही दरबारों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। ये सोना या रत्न नहीं था बल्कि चेरूट नाम का एक साधारण सा पौधा था। कृष्णा गोदावरी डेल्टा का यह विशिष्ट क्षेत्र दुनिया का सबसे जीवंत और टिकाऊ लाल रंग पैदा करता था। एक ऐसा रंग जो इतना गहरा और स्थायी था कि वह वैश्विक फैशन के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया। आखिर यही विशिष्ट स्थान क्यों? इसका उत्तर प्रकृति और रसायन विज्ञान के एक अनूठे संगम में छिपा है। डेल्टा की मिट्टी बेहतरीन चेरूट के लिए विशिष्ट रूप से उपयुक्त थी, लेकिन असली जादू नदी के किनारे होता था। 18वीं शताब्दी के पर्यवेक्षकों ने पाया कि स्थानीय पानी में मौजूद खनिज तत्व पौधों से मिलने वाले जैविक रंगों के साथ इस तरह प्रतिक्रिया करते थे जिसे पृथ्वी पर कहीं और दोहराया नहीं जा सकता था। इस प्राकृतिक रासायनिक प्रतिक्रिया ने रंग को कपड़े पर इस तरह नियत कर दिया कि वह लाल रंग न केवल असाधारण रूप से चमकीला था बल्कि पक्का भी था, यानी वह कभी फीका नहीं पड़ता था। जब ये वस्त्र जैसे कि प्रसिद्ध मछली पट्टनम चिंट्स 1680 के दशक में लंदन पहुंचे तो उन्होंने एक जबरदस्त सनक पैदा कर दी। बड़े घरानों की महिलाएं अपनी सबसे महंगी गाउन में इन कपड़ों का अस्तर लगवाती थीं क्योंकि गोदावरी का लाल रंग बार बार और कठोरता से धोने के बाद भी अग्नि की तरह चमकदार और ताज़ा बना रहता था। जहां अन्य रंग सुस्त और भूरे पड़ जाते थे, वहीं गोदावरी का लाल रंग अपनी चमक के लिए प्रसिद्ध रहा। ये साबित करता है कि 18वीं शताब्दी में सबसे तीक्ष्ण प्रतिस्पर्धी बढ़त किसी प्रयोगशाला में नहीं बल्कि एक भारतीय नदी के किनारे की अनूठी मिट्टी और खनिजों में छिपी थी।
4: नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव आठ मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
5: श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, सेवानिवृत्त। कर्नल भामा ने लगभग दो दशकों से अधिक समय तक भारतीय थल सेना में अपनी सेवाएं प्रदान की, जिसमें उन्होंने राजस्थान से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक भारत की सीमा पर महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में योगदान दिया। इंडियन आर्मी में आपकी कमिश्निंग, वर्ष 1988 में इन्फेंट्री ऑफिसर के तौर पर 6वीं बटालियन मद्रास रेजिमेंट में हुई। आपने सियाचिन ग्लेशियर, करगिल, सिक्किम, पंजाब, राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्यों में कई महत्वपूर्ण काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस क्रियान्वित किए। भारतीय थलसेना से सेवानिवृत्ति के पश्चात आपने कुछ समय तक डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिसर के तौर पर भी कार्य किया। आप डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के अलावा भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद के पूर्व छात्र रहे हैं। कर्नल साहब, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
6: धन्यवाद अदिति।
5: जो अधिकारी वर्ग होता है आर्मी का, उसका रिक्रूटमेंट कैसे होता है, उसकी क्या प्रक्रिया रहती है?
6: इंडियन आर्मी में एज एन ऑफिसर जब आप ज्वाइन करना चाहते हैं
5: जी,
6: तो दो तरह के कमीशन होते हैं। कमिश्निंग का मतलब होता है कि ऐसे ऑफिसर जब ज्वाइन करते हैं तो कमीशन ऑफिसर होते हैं। तो एक परमानेंट कमीशन होता है
5: जी,
6: एक शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है
5: जी।
6: परमानेंट कमीशन का मतलब होता है कि आप सिलेक्शन के बाद, ट्रेनिंग के बाद जब आप कमीशन हो जाता है आपका, तो आप मिनिमम 20 ईयर्स आपकी पेंशनेबल सर्विस होती है और वो सर्विस आप जिस लेवल तक जाते हैं वो पूरी कर सकते हैं। शॉर्ट सर्विस में जो सर्विस है वो 10 साल की होती है, वो एक्सटेंडेबल होती है 10 साल के बाद। अगर आप करना चाहते हैं और आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से परमिटेड है तो 4 साल और आगे कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट सर्विस कमीशन कहलाता है। अब इनके लिए जो एंट्री है उसके बारे में हम विस्तार से जिक्र करते हैं। देखिए, जब स्कूल में सबसे पहले जो एंट्री लेवल होता है वो 10+2 का होता है,
5: अधिकारी वर्ग के लिए
6: 10+2 में जो बच्चे जाना चाहते हैं उनके लिए जो स्कीम होती है वो सबसे पहले स्कीम है NDA के थ्रू है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है ये ट्राई सर्विस यानी कि आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों के कंबाइंड
5: एंट्रेंस एग्जाम
6: होता है और इसमें तीनों विंग के जो है बच्चे होते हैं। ये साल में 2 बार होता है, मतलब इसमें 6-6 महीने के टर्म्स होते हैं, तो 1 साल में 2 टर्म्स होते हैं और इसमें टोटल वैकेंसी जो होती है 320 वैकेंसीज होती है पर टर्म। 6 महीने में 320 वैकेंसीज आती हैं, जिसमें से कि आर्मी की तकरीबन 208 वैकेंसीज होती हैं, नेवी की 42 के करीब होती है और एयरफोर्स की 70 वैकेंसीज होती हैं। इसका नोटिफिकेशन आता है और इसमें जो एग्जाम होता है वो UPSC के थ्रू होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसका एग्जाम कंडक्ट कराते हैं।
5: नोटिफिकेशन हर महत्वपूर्ण समाचार पत्र में आता होगा?
6: बिल्कुल आता है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में मिलेगा, डेली न्यूज़पेपर्स जो आते हैं उसमें भी आता है और फिर इसके अलावा वेबसाइट्स हैं, जिस वेबसाइट का जिक्र किया था joinindianarmy.net,
5: उसके अलावा संस्था की अपनी वेबसाइट पर भी आता होगा इसका विज्ञापन,
6: वो भी आता है। और लेकिन सबसे ज्यादा ये UPSC जो साइट्स हैं और जो हमने अभी जिक्र किया है, joinindianarmy इज द बेस्ट साइट एक्चुअली, जिसमें सारे के सारे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। इसकी जो एज लिमिट है, आपकी उम्र 16.5 साल से ज्यादा होनी चाहिए और 19 साल से कम होनी चाहिए और ये जो एज का कट ऑफ होता है वो जिस दिन से कोर्स शुरू हो रहा होता है, जैसे एक कोर्स जनवरी में शुरू होता है, एक कोर्स जुलाई में शुरू होता है, जो फर्स्ट डे ऑफ द कोर्स होता है उस दिन जो है इस एज ग्रुप
5: में ये एज होनी चाहिए।
6: और क्वालिफिकेशन जैसे हमने बात करी थी कि 12th क्लास होना चाहिए, आर्मी के लिए नॉर्मल मतलब किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है, लेकिन फॉर अगर वो एयरफोर्स या नेवी के लिए अप्लाई करते हैं तो फिजिक्स मैथ्स कंपलसरी होता है, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री कंपलसरी होता है।
5: कर्नल साहब, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनने एज क्राइटेरिया पूरा कर लिया है पर मान लीजिए वो दूसरे टर्म में बैठे हैं, जुलाई के बाद वाले टर्म में अप्लाई कर रहे हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं क्या? क्योंकि उन्हें अभी
6: जब आप 10+2 कर रहे हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, क्राइटेरिया क्लियर है, आपकी एज 16.5 साल से ज्यादा होनी चाहिए और 19.5 से आपकी कम होनी चाहिए और आपने 10+2 अपीयर कर रहे हैं, फाइनल एग्जाम देने से पहले भी आप कर सकते हैं और उसमें कट ऑफ ये है कि जिस दिन आप ज्वाइन करने जा रहे हो उससे पहले आपका रिजल्ट आ चुका होना चाहिए और आप पास हो चुके होने चाहिए। जब आपने अगर 10+2 कर लिया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्त कि आपकी एज 19.5 से कम है और आपकी शादी नहीं होनी है तो अनमैरिड होना कंपलसरी है। और अगर आप एयरफोर्स और नेवी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है फिजिक्स मैथ्स होना कंपलसरी है, आर्मी के लिए ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। ये कोर्स NDA में 3 साल का होता है और तीनों आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों के स्टूडेंट एक साथ पढ़ाई करते हैं और NDA खत्म होने पे इनको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से डिग्री मिलती है, BSc की ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है। तो 3 साल खत्म करने के बाद NDA में जिन लोगों ने आर्मी के लिए अप्लाई किया है वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून जाते हैं जहाँ पे कि उनका 1 साल का और ट्रेनिंग होता है और फिर उनका वहां से कमीशनिंग होती है इंडियन आर्मी के लिए।
5: आपने अगर NDA क्लैरिफाई कर लिया है तो आप 4 साल मानिए, 1 साल IMA का।
6: बिल्कुल, 3 साल NDA और 1 साल IMA और 3 साल NDA के दौरान आप ग्रेजुएशन हो जाता है आपका, जो कि आप बाहर भी करते हैं। इसमें यह है कि पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है और इसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं वहाँ पे। इसमें क्या होता है कि पढ़ाई के अलावा अपनी अच्छी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, हॉबीज क्लासेस होती हैं। इफ यू गो देयर देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड किस तरह की वो एकेडमी है, क्यों उसको वर्ल्ड क्लास एकेडमी कहा जाता है। हर चीज, बॉक्सिंग, हॉर्स राइडिंग, एनी काइंड ऑफ अदर थिंग व्हिच यू वांट यू कैन थिंक ऑफ। इसी तरह से क्या होता है, 10+2 करने के बाद एक और एंट्री के थ्रू वो जा सकते हैं जिसको हम टेक्निकल एंट्री स्कीम बोलते हैं। इसमें क्या है, जो बच्चे बीटेक करना चाहते हैं तो इनके लिए ये लागू होता है। जैसे 10+2 में उन्हें फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री है जिनके पास, उसमें उन्होंने अप्लाई किया, पर इसमें कंपलसरी क्या है कि वो JEE का एग्जाम दिया होना चाहिए उन्होंने, मतलब JEE का जो मार्क्स है वो जरूरी है
5: और उसके बाद वो अप्लाई कर सकता है।
6: हाँ, उसके बाद वो अप्लाई कर सकता है। वो
5: कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, किस
6: सेम इसमें भी अगेन आपको जो है joinindianarmy.net में आता है, उसमें नोटिफिकेशन आता है, वो इसी के थ्रू अप्लाई करना होता है। साल में 2 बार मतलब इसकी वैकेंसीज निकलती हैं, अगेन जितने जो न्यूज़पेपर्स हैं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज है, सब में ये आता है।
5: इंटरनेट का समय है तो सिर्फ टेक्निकल एंट्री इन इंडियन आर्मी टाइप करे तो उसको जानकारी मिल जाएगी?
6: बिल्कुल मिल जाएगी। और यह सबसे आसान है कि ज्वाइन इंडियन आर्मी साइट है, उसमें आप जाइए, उसमें इन डिटेल सब कुछ दिया हुआ है। इनका भी जो एज क्राइटेरिया है वो 16.5 से ज्यादा होना चाहिए और 19.5 से कम होना चाहिए।
5: लेकिन ये कंपल्सरीली उन बच्चों के लिए है जो बीटेक करना चाहते हैं या इंजीनियरिंग जैसी सर्विसेज में जाना चाहते हैं,
6: करना चाहते हैं उन्हीं के लिए है
5: जी।
6: और इनका कोर्स भी जो है 5 साल का होता
5: जी।
6: है। हर कोर्स में 90 वैकेंसीज होती हैं
5: टेक्निकल एंट्री के लिए
6: जी, जी। इसमें भी साल में 2 बार होता है
5: जी।
6: और 2 फेजेस में होता है। फेज 1 में पहले 1 साल की प्री कमीशन ट्रेनिंग होती है गया में, एंड उसके बाद जो है उनको टेक्निकल इंस्टीट्यूट में भेजा जाता है। अलग अलग टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं, जैसे जो बच्चे सिग्नल्स में जाना चाहते हैं कम्युनिकेशन है उनके लिए अलग है
5: जी।
6: जो सिविल इंजीनियरिंग करते हैं उनके लिए अलग है, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच लेते हैं उनके लिए अलग है। अभी जैसे हमने 2 एंट्री की बात करी
5: जी, टेक्निकल और साधारण,
6: टेक्निकल और एनडीए की बात करी और टेक्निकल एनडीए, ये दोनों एंट्री हैं 10+2
5: जी।
6: अब 10+2 के बाद किसी कारणवश आपने इसमें अप्लाई नहीं किया
5: जी,
6: तो जब आपका ग्रेजुएशन हो जाता है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं
5: जी।
6: यानी कि जो बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं 3 साल का ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद एक कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम होता है
5: जी,
6: जो कि यूपीएससी के थ्रू होता है। इसको हम कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन एंट्री स्कीम है
5: जी।
6: तो इसमें अगर अप्लाई करते हैं तो परमानेंट कमीशन के लिए हर साल जो है 200 सीटें ट्वाइस

0: में देहरादून में होती है और डायरेक्ट एंट्री ने कहा ये 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है
1: जी।
0: तो हमने जैसे जिक्र किया था एनडीए का
1: जी,
0: एनडीए में जो बच्चे 3 साल कंप्लीट करते हैं
1: जी
0: वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी आते हैं और 1 साल की ट्रेनिंग करते
1: जी,
0: हैं। जो डायरेक्ट एंट्री जाते हैं
1: जी,
0: वो वहाँ पे 1.5 साल की ट्रेनिंग करते हैं। इसमें आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी 3 टर्म्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो एनडीए वाले हमेशा सेकंड टर्म में आके ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरह से फिर पासिंग आउट सबका एक साथ रहता है। इसको हम जो है कंबाइंड डिफेंस सर्विस के थ्रू परमानेंट कमीशन के लिए ये स्कीम होती है। इसी तरह से शॉर्ट सर्विस के लिए इसमें ऑसिस ट्रेनिंग एकेडमी में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 175 सीट्स होती हैं, वैकेंसीज होती हैं ट्वाइस ए ईयर। इनके भी 2 कोर्सेज होते हैं और इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो ओटीए चेन्नई में होती है। सेम इसमें जो एज लिमिट है वो 19 साल कम से कम होनी चाहिए और 25 साल ज्यादा हो सकती है
1: जी।
0: और ग्रेजुएशन सेम इसमें जो है होना चाहिए। और ये सारे के सारे जो जाहिर है क्योंकि फौज की सर्विस ऐसी है तो इसमें अनमैरिड होना कंपलसरी है
1: जी।
0: चाहे कोई भी एंट्री होती है तो उसमें अनमैरिड होना कंपलसरी माना जाता है। इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो तकरीबन 49 वीक्स की होती है, वही 1 साल की इनकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद इनका कमीशन होता है। देखिए क्या है कि ये तो था यूपीएससी के थ्रू एग्जाम में हमने देखा, यानी हमने पहले देखा कि आप 10+2 के बाद आप 2 एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ग्रेजुएशन के बाद जो है आप एक परमानेंट कमीशन के लिए जा सकते हैं, एक अपना शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जा सकते हैं। अब एक और भी ब्रांचेस ऐसी होती हैं, जैसे एक जज एडवोकेट जनरल ब्रांच होती है जिसमें कि लॉ क्वालिफाइड लोग जाते हैं। इसकी वैकेंसी होती है हर कोर्स की तकरीबन 10 वैकेंसी होती है, ये भी साल में जो 2 बार होता है। और इसमें जिन बच्चों ने लॉ किया होता है, जो लॉ क्वालिफाइड होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं।
1: कन्हैया साहब ये सिर्फ आर्मी के लिए है कि तीनों सशस्त्र सेनाओं के लिए लागू है?
0: ये अभी हम आर्मी की बात कर रहे हैं, जो बाकी उसमें जाएंगे उसमें भी होता है लेकिन उसमें कंडीशंस क्या है वो हम डिटेल में बात करेंगे। अभी हम जो आर्मी की बात कर रहे हैं तो इसमें इनकी जो एज ग्रुप है 21 से 27 साल होती है, तो इस एज ग्रुप में अगर वो हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इनकी भी ट्रेनिंग जो होती है वो ओटीए चेन्नई में ही होती है, 1 साल की ट्रेनिंग के बाद इनको जो है कमीशन मिलता है। इसी तरह से एक स्पेशल एंट्री होती है एनसीसी के बच्चों के लिए जिसमें कि 50 वैकेंसीज होती हैं, ये भी साल में 2 बार होता है। इसका नोटिफिकेशन जो होता है वो डायरेक्टर जनरल रिक्रूटमेंट से आता है। अप्लाई जब करते हैं तो जो एनसीसी का डायरेक्टरेट होता है उसके थ्रू अप्लाई करते हैं। इसमें उम्र जो होती है बच्चे की वो 19 साल से ज्यादा होनी चाहिए, 25 साल से कम होनी चाहिए। और कंपलसरी बात यह है कि इसमें सी सर्टिफिकेट होना चाहिए उसका, एनसीसी सीनियर डिवीजन का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए विद बी ग्रेड मिनिमम, ये कंपलसरी है। तो इनको क्या होता है कि ये लोग जो होते हैं जो यूपीएससी का एग्जाम नहीं देते हैं इनका डायरेक्ट एसएसबी होता है
1: जी,
0: सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में ये लोग डायरेक्ट जाते हैं और वहां से फिर क्वालिफाई होने के बाद जो है एकेडमी ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा जो है और भी स्कीम्स आती है, जैसे एक टेक्निकल ग्रेजुएट्स एंट्री स्कीम होती है। इसमें भी क्या होता है कि तकरीबन 60 वैकेंसीज होती हैं, साल में 2 बार होती हैं, जिसमें कि जिन बच्चों ने बी कर लिया होता है, बी टेक जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया होता है, जिनकी उम्र 20 साल से ज्यादा है और 27 साल से कम है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इनकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है आईएमए देहरादून में। जैसे ये टेक्निकल एंट्री परमानेंट कमीशन हो गया जब वो आईएमए में जा रहा है, इसी तरह से एक शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए भी एक एंट्री होती है,
1: टेक्निकल एंट्री होती
0: है। इसमें मतलब 100 वैकेंसीज होती हैं साल में 2 बार जो होती हैं और इनकी ट्रेनिंग जो है ओटीए चेन्नई में होती है। काफी सारी एंट्रीज होती हैं, जैसे कि हमने बहुत पहले भी बताया था कि इट्स अ वेरी वास्ट स्पेक्ट्रम, काफी बड़ा स्पेक्ट्रम होता है आर्मी में, तो इसमें काफी और मतलब जो है तरह से आप जो है एंट्री कर सकते हैं। ये मेजर हैं जिनसे जा सकते हैं। अभी एक और सर्विस होती है जो कि बहुत फेमस है, दैट इज मेडिकल सर्विसेज
1: जी।
0: मेडिकल सर्विसेज का एक आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज होता है जो कि आर्मी का है, जिसमें कि डॉक्टर के लिए मतलब एंट्री लेवल उसका 10+2 होता है, उसके बाद क्वालिफाई करने के बाद वो पूरा का पूरा अपना मेडिकल की पढ़ाई वहीं उसी इंस्टीट्यूट में करते हैं, ये पुणे में है। और फिर इनके बाद ये आर्मी नेवी एयरफोर्स में डॉक्टर्स एज ए कमीशन ऑफिसर बन के कार्य करते हैं। इनका शॉर्ट सर्विस कमीशन भी होता है मेडिकल ऑफिसर्स का
1: जी।
0: उसकी एंट्री अलग होती है।
1: अच्छा।
0: इसी तरह से एक मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज होती है
1: जी।
0: उनकी भी एक एंट्री अलग होती है जिसमें कि लड़कियां जो है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ज्वाइन कर सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है जिसमें कि आप इस जब साइट पर जाते हैं joinindianarmy.tech पे आपको पूरी डिटेल्स पता चल सकती हैं।
1: लेटरल एंट्री की हम लोग आजकल बात करते हैं, जैसे अग्निवीर योजना की बात की उसमें लेटरल एंट्री हो गई, आर्मी में क्या इस तरह की लेटरल एंट्री संभावित है किसी स्पेशल विशेष कार्य के लिए?
0: समय समय पे ये तो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, उसके हिसाब से अगर कोई चेंजेस आते हैं तो वो इम्प्लीमेंट करे जाते हैं। अग्निपथ स्कीम आई है, ये एक तरह से बिल्कुल ही नया एक्सपेरिमेंट है
1: जी।
0: तो हो सकता है आगे चल के कुछ और आए, तो अभी तक लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हमने जितनी बात करी वो सिर्फ मेल
1: एस्पिरेंट्स जो हैं
0: उनके लिए थी, इसी तरह से इवन फीमेल विमेन के लिए भी एंट्रीज हैं
1: जी।
0: थोड़ा सा हम उसके बारे में भी जानकारी देना चाहेंगे। विमेन के लिए भी जो है 10+2 के बाद वो एनडीए में अप्लाई कर सकती हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में। अभी इनकी जो वैकेंसीज आती हैं वो एज पर नोटिफिकेशन होती हैं। क्वालिफिकेशन और बाकी चीज़ें सेम हैं जैसे हमने आपको पहले बताया था, उसमें कोई चेंज नहीं है। और एग्ज़ाम भी और कोर्सेज भी इनके सेम वही उसी तरह से हैं। 3 साल एनडीए करने के बाद 1 साल लिए आईएमए में ट्रेनिंग करके कमीशन ऑफिसर्स बनेंगे। वुमेन के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन में भी जो है वैकेंसीज होती हैं, इनकी 12 वैकेंसीज होती हैं साल में 2 बार। और अगेन उसका भी एज क्राइटेरिया और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है जो मेल का था, यानी कि 19-25 ईयर्स एज होनी चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, अनमैरिड होने चाहिए। और इनका भी ओटीए चेन्नई में ट्रेनिंग होता है। एनसीसी में भी अगेन जो है सेम, जैसे मेल का एंट्री होती है वैसे ही फीमेल के लिए वुमेन के लिए भी एंट्री है, जिसमें साल में इनके लिए अगेन 4 सीट्स होती हैं, ट्वाइस ए ईयर होता है, एज क्राइटेरिया सेम है 19-25 और सीनियर डिवीजन में मिनिमम बी ग्रेड के साथ सीटर सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। इनका डायरेक्ट एसएसबी होता है। जैग ब्रांच में भी जो कि हमने बोला था जज एडवोकेट एंड जनरल ब्रांच जिसमें कि लॉयर्स जाते हैं, इसमें भी वुमेन्स की वैकेंसी होती है और उसमें भी वो अप्लाई कर सकती हैं। एज क्राइटेरिया सेम है 21 से लेके 27 साल और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी सेम है कि लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए 55% एग्रीगेट के साथ और इनकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट के साथ, ये कंपलसरी होता है। इन एडिशन उनका जो है क्लैट पीजी स्कोर जो है प्रिसीडिंग ईयर का मैंडेटरी होता है। एंड इसके अलावा अगर कोई और क्वालिफिकेशन अगर उस समय जरूरत होती है तो टाइम टू टाइम जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन आते हैं या उस ब्रांच के नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको साइट पे उसकी जानकारी मिलती है। देन इसके अलावा वेमेन का जो है टेक्निकल एंट्री भी होती है शॉर्ट सर्विस कमीशन की, सेम वही उनका एज क्राइटेरिया 20-27 ईयर्स है, ओटीए चेन्नई में जाते हैं, साल में 2 बार इनके लिए एग्जाम होता है, 20 वैकेंसी पर 6 मंथ्स होती है। इसका भी सेम जैसे मेल का रहता है, इनका भी नोटिफिकेशन जो होता है सारे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में और डेली न्यूज़पेपर्स में आता है। मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था कि मेडिकल ऑफिसर्स के लिए भी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में तो स्पेशली लेडीज ही जाती हैं, आर्मी डेंटल कोर की वैकेंसीज होती हैं उसमें भी फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। तो ये मतलब सारी की सारी एंट्रीज हैं जिसमें कि फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं। एक और बात हम थोड़ा मिस कर गए थे, जो अग्निवीर स्कीम है उसमें भी हमारा आर्मी में कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस है
1: जी।
0: उसमें फीमेल यानी कि महिलाएं जाती हैं तो उनके लिए भी वो स्कीम लागू है
1: जी।
0: बाकी उनके जो क्राइटेरिया है सेम है, सेम एज जो हमने बताया था वही उनके लिए भी लागू होते हैं। आर्मी में जाने के लिए ऑफिसर बनने के लिए आपको रिटन एग्जाम के अलावा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में अपीयर होना होता है।
1: वो एक तरह का इंटरव्यू होता है
0: जी, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एक तरह का इंटरव्यू होता है लेकिन ये 5 दिन का होता है
1: जी।
0: तो 5 दिन का जो इंटरव्यू होता है ये काफी टफ होता है एंड इसके लिए काफी तैयारी करनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि जैसे जिस दिन जाते हैं आप, ये 2 स्टेजेस में होता है। इसमें पहले दिन जो है आपका एक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, उसके अलावा एक पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट बोलते हैं, ये इनिशियल स्क्रीनिंग होती है। इसमें जो बच्चे पास कर लेते हैं वो अगले 4 दिन के लिए टेस्ट देते हैं, जिसमें कि साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, ग्रुप टेस्ट होते हैं, ग्रुप टास्क होते हैं और इंटरव्यूज होते हैं। तो ये पूरा का पूरा 5 दिन के लिए होता है। एंड इसके लिए जो सर्विस सिलेक्शन सेंटर्स होते हैं जैसे भोपाल में है, बैंगलोर में है, जालंधर में है और इलाहाबाद में है, तो ये जो है सेंटर्स हैं। इसी तरह से एयरफोर्स के भी हैं सेंटर्स जो हैं अलग हैं, नेवी के भी हैं। एसएसबी जो है किसी भी ब्रांच में किसी भी विंग में ऑफिसर बनने के लिए कंपलसरी होता है
1: जी।
0: और यही डिसाइड करता है आपका सिलेक्शन जो है होगा या नहीं। श्रोता हैं वो और ज्यादा इसके बारे में जो है नेट के ऊपर जो है जानकारी हासिल कर सकते हैं एंड वी विश देम ऑल द बेस्ट।
1: बिल्कुल ऑल द बेस्ट। श्रोताओं के साथ साथ हम आपको बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां बताई और इतने अच्छे तरीके से बताई इस तरह से बताएं कि कोई भी हमारा युवा हतोत्साहित नहीं होगा, महिलाओं के लिए भी है, ग्रेजुएट्स के लिए भी है, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए भी है, सबके लिए हर स्तर पर कोई ना कोई एक अपॉर्चुनिटी उपस्थित है। कर्नल साहब, जो सिलसिला शुरू किया है हमने महत्वपूर्ण जानकारियों का, वो आगे भी जारी रहेगा। आप हमारे श्रोताओं से और महत्वपूर्ण बातें, जानकारियां साझा करें, इसी विनती के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। और गौरव की बात है कि आप हमारे साथ आए और हमारे साथ आपने जानकारियां साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू अदिति, जय हिंद श्रोताओं।
2: इस कार्यक्रम की परिकल्पना और निर्देशन का श्रेय जाता है अदिति गौड़ को। ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: साहस की बुलंद शुरुआत से लेकर आसमान की असीम ऊंचाइयों तक 8 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस।
4: वर्ष 1947-48, 1965 और 1971 के ऐतिहासिक युद्धों से लेकर ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना ने हर पल कर दिखाया है अदम्य पराक्रम, अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोच्च बलिदान।
2: तो मध्य प्रदेश के जाबाज युवाओं, क्या आप तैयार हैं? बादलों को चीरकर देश का मान बढ़ाने के लिए तो बनिए अग्निवीर वायु, हासिल कीजिए वो मुकाम जो जिंदगी भर की पहचान बन जाए और गर्व से कीजिए भारत माँ की सेवा।
4: भर्ती और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए
2: 15 एयरमैन चयन केंद्र के इंस्टाग्राम पेज 15ASC_भोपाल और आधिकारिक वेबसाइट IAFRecruitment.edcil.co.in पर विजिट करें।
4: नभस प्रशम दीप्तम,
5: जय हिंद।
6: वीर जी वोरा, वो व्यापारी राजकुमार जिसने यूरोपीय कंपनियों को अपने इशारों पर नचाया। 17वीं शताब्दी के व्यस्त सूरत बंदरगाह में अंग्रेजी और डच ईस्ट इंडिया कंपनियां समुद्री प्रभुत्व के सपने लेकर आईं, लेकिन उनका सामना एक ऐसे स्थानीय व्यापारी से हुआ जो वैश्विक बाजार को अपनी इच्छा शक्ति से मोड़ने की ताकत रखता था। उसका नाम था वीरजी वोरा, एक बनिया व्यापारी जिसका प्रभाव इतना व्यापक था कि तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में उसे सभी यूरोपीय वस्तुओं का एकमात्र एकाधिकार बताया गया है। हालांकि वोरा के पास कभी भी कंपनी ब्रोकर का औपचारिक पद नहीं था, फिर भी वो दोनों यूरोपीय शक्तियों के लिए अपरिहार्य बैंकर और मुख्य खरीदार था। सूरत में उसका मोनोपसोनी यानी एकमात्र खरीदार का अधिकार था, जिससे वो छोटे व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा करने से रोकता था और ये सुनिश्चित करता था कि हर बड़े सौदे का समय और कीमत उसके अपने निर्णय के अनुसार रहे। उसकी वित्तीय पहुंच चौंका देने वाली थी। 1622 में डच कंपनी VOC ने उससे 36,000 महमूदी उधार लिए थे। 1628 तक वो आगरा जैसे दूर दराज के क्षेत्रों के लिए भी EIC को भारी ऋण पत्र यानी लेटर्स ऑफ क्रेडिट जारी कर रहा था। वोरा की शक्ति अपनी शर्तें मनवाने की उसकी क्षमता में सबसे अच्छी तरह दिखाई देती थी। 1625 में जब अंग्रेजों ने काली मिर्च खरीदने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि वोरा ने पूरी आपूर्ति पर कब्जा कर रखा है। उसने तब तक बेचने से इनकार कर दिया जब तक कि कंपनी ने उसे अपने सबसे अच्छे मूंगे के 25 बक्से उस कीमत पर नहीं सौंप दिए, जिससे अंग्रेजों का मुनाफा काफी कम हो गया। चूंकि कंपनियों के पास अक्सर कपड़ा खरीदने के लिए नगदी सोना चांदी की कमी होती थी, इसलिए वे टिके रहने के लिए वोरा की विशाल तरल पूंजी पर निर्भर थे। उसने इस कमजोरी का बेरहमी से फायदा उठाया। कभी कभी कंपनियों को लंदन या बटाविया की अपनी यात्राओं में देरी करने के लिए मजबूर किया ताकि उनके जहाज सूरत के स्थानीय व्यापारियों के लिए माल ढोने का काम कर सकें। EIC अधिकारी एडवर्ड नाइप ने 1643 में कंपनी की हताशा को दर्ज किया। उन्होंने शिकायत की कि वोरा कालीकट में कोड़ियों के दाम पर काली मिर्च खरीदता और अंग्रेजों को उसे दोगुनी कीमत पर बेचता। नाइप ने अपने मालिकों को चेतावनी दी थी कि जब तक कंपनी वोरा के कर्ज में इतनी डूबी रहेगी, सूरत में नामात्र या कोई लाभ नहीं कमाया जा सकेगा, क्योंकि वोरा हमें तब तक दबाता है जब तक हम उसके अपने पेट पर नहीं आ जाते। दशकों तक वोरा शहर का सबसे अमीर आदमी और व्यापारिक समुदाय का शिखर बना रहा। हालांकि साल 1664 में तब एक विनाशकारी बदलाव आया जब मराठों ने सूरत पर आक्रमण किया। बताया जाता है कि इस हमले में वोरा को लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। एक ऐसा झटका जो छोटे व्यापारियों को नष्ट कर देता। फिर भी वो एक सक्रिय व्यक्ति बना रहा जो पारस्परिक निर्भरता के रिश्ते को दर्शाता है। जहां शक्तिशाली दिखने वाली यूरोपीय कंपनियां अक्सर भारतीय पूंजी की दया पर थीं। वीरजी वोरा की विरासत एक ऐसे मर्चेंट प्रिंस की है जिसने अंग्रेजों के भारत को जीतने से बहुत पहले उन पर महारत हासिल कर ली थी। उनकी कहानी याद दिलाती है कि कंपनियों का शुरुआती इतिहास तत्काल जीत का नहीं था, बल्कि स्थानीय दिग्गजों के साथ एक नाजुक रणनीतिक गठबंधन का था, जिनका अक्सर बाजार पर अपर हैंड रहता था।

0: श्रोताओं नमस्कार, ये है रेडियो आज़ाद हिंद। मैं हूँ मनीषा और हर साल 4 अक्टूबर को पूरी दुनिया में विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी धरती केवल मनुष्यों की नहीं बल्कि पशु पक्षियों और असंख्य जीव जंतुओं की भी साझा घर है। विश्व पशु दिवस हमें पशुओं के प्रति अपने व्यवहार, उनकी देखभाल, उनके स्वास्थ्य और उनके अधिकारों के बारे में सोचने का अवसर भी देता है। इस वर्ष पशु दिवस की थीम है सी द वर्ल्ड थ्रू देयर आईज, यानी दुनिया को हम उनकी आंखों से देखें। इसी विषय पर आज हम विस्तार से बात करेंगे एक ऐसे विशेषज्ञ से जो रोज पशुओं के स्वास्थ्य और उनकी तकलीफ को बहुत करीब से देखते और समझते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने पशु चिकित्सक ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अंकुर नारद। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार, और आप सभी श्रोताओं को विश्व पशु दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: हमारे सुनने वाले बिल्कुल समझ पाएंगे कि सुबह से शाम तक आप जिनके बीच में बैठे रहते हैं, जिनको देखते हैं, उनका ये खास दिन आपके लिए कितना अहम है और सभी के लिए होना चाहिए। सर, इस वर्ष पशु दिवस की थीम है सी द वर्ल्ड थ्रू देयर आईज। इस पूरी लाइन को, इस टैग लाइन को आप कैसे हमारे श्रोताओं के सामने डिस्क्राइब करेंगे?
1: सी द वर्ल्ड थ्रू देयर आईज, दुनिया को उनकी आंखों से देखें, ये एक टैगलाइन बहुत ही वास्तविक में एक बहुत ही अच्छी टैगलाइन साबित हो सकती है यदि हम हमारी रोज़मर्रा की जो सुविधाएं हैं, हम एसी में बैठे हैं, अपने डेली स्ट्रेस देख रहे हैं ऑफिस के, अपनी लाइफ देख रहे हैं, प्रेशर देख रहे हैं, टेंशन देख रहे हैं बॉस का, घर की चिक चिक चल रही है, लेकिन क्या हम ये महसूस कर पा रहे हैं कभी कि हमारा पेट भी हमारे साथ ही वही इन्वायरमेंट शेयर कर रहा है जो हम कर रहे हैं? यानी हमारे घर में यदि आज कहीं कोई डांट चल रही है, यदि किसी के आपस में झगड़े चल रहे हैं, या कोई हमारी कॉलोनी में किसी डॉग को मार पीट रहा है, देख रहा है, वो दृश्य हमारे डॉग की क्या साइकोलॉजी बना रहा होगा? तो यही हमारी आज की टैगलाइन है, सी द वर्ल्ड थ्रू देयर आईज।
0: सर, आपने इतनी गंभीर बात कही है, और चूंकि मैं भी पेट पेरेंट रही हूं तो मैं देखती थी कि आपस में जब कभी हम लोग ऐसे बात नहीं कर रहे हैं या मैंने अपने बच्चों को डांटा तो बीच में आ जाती थी एकदम से वो चक्कर जो मेरी पैट थी, और वो बचाती थी बच्चों को कि नहीं, डांट नहीं पड़नी चाहिए। तो ये जो आपकी बात है कि घर की बातों का असर क्या हम समझ पा रहे हैं कि हमारे पेट पे पड़ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है सर ये। लेकिन हम कैसे इस चीज़ को महसूस करें कि पशु क्या महसूस कर रहा है?
1: मैम, ये साइकोलॉजी आपको एनिमल बिहेवियरिस्ट एक टाइप का कोर्स भी आजकल शुरू हो गया है, जिस कोर्स में बच्चों को, जो कि ग्रेजुएशन का कोर्स है, उसमें बच्चे आते हैं और उसमें आकर कि ये सिर्फ यही सीखते हैं कि हाउ टू कम्युनिकेट विद देयर एनिमल्स, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स, जो उनके दिमाग में चल रहा है आप उसको कैसे भाप सकते हैं। जैसे कि हम एक बात करते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर की, जो आज की तारीख में बहुत ज्यादा लोगों का एक प्रचलित बिजनेस बन गया है, कई बार एक कुछ ऐप्स भी बन गए एस्ट्रो टॉक और इंस्टप के, तो आप उसमें देखेंगे कि लोग एक फेस रीडिंग करने लगते हैं। सेम इज विद द एनिमल्स, आपके पास की जो भी नेगेटिविटीज हैं, जो भी पॉजिटिविटीज हैं, जो भी एनर्जीज हैं आपके ऑरा में, दैट ऑल आर रिफ्लेक्टेड ऑन योर पेट्स। इफ द पेट इज हैविंग सम काइंड ऑफ इन्फेक्शंस related to the skins also, then it means that your surrounding has been unhygienic. ये clear cut है। आज की तारीख में हम स्वच्छता अभियान, एक बहुत major अभियान है हमारे देश का, जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ों को eliminate कर रहे हैं, हम छोटी छोटी गलियों को साफ कर रहे हैं, स्वच्छता पे ध्यान दे रहे हैं, कई जगह स्वच्छता पखवाड़ा सेलिब्रेट हो रहा है। तो इसका सिर्फ एक मेजर इशू यही नहीं कि सिर्फ हमारी साफ सफाई हो रही है, ये एक हाइजीन है। और आज हम देख रहे होंगे कि हमारे कंट्री में, हमारे पूरे देश में कई सारी ऐसी बीमारीज है जिनका इंसिडेंस रेट कम हो गया। क्यों कम हो गया? बिकॉज ऑफ द क्लीनलेस। थोड़ी थोड़ी साफ सफाई यदि बनती जा रही है तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ एरियाज में वो चीजों का जो पहले आउटब्रेक हो जाता था आज वो नहीं है। तो सेम इज विद योर पेट्स, यदि आपके घर में भी क्लीनलेस मेंटेन्ड है, इफ योर पेट इज ग्रूम्ड, इफ योर पेट इज हाइजीनिक, इट्स नीट एंड क्लीन, उसके आईज, ईयर्स, नोज, फर, नेल्स, एवरीथिंग इज प्रॉपर, देन इट सीम्स दैट इट रिफ्लेक्ट्स योर ऑरा ऑल्सो, दैट यू हैव बीन सो हाइजीनिक, यू हैव बीन सो पर्सनलाइज, आप इतना केयर करते हैं अपने घर की मेंबर्स की, इवन योर हाउस, आपकी सराउंडिंग साफ सुथरी हैं, ये आपका पेट रिफ्लेक्ट कर देता है।
0: बिल्कुल, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि जानवरों की उम्र इंसानों की तुलना में कम और छोटी होती है, इसलिए कोई ना कोई बीमारी अंततः उनके जाने की वजह बनती है। हम कैसे पहचानें कि, क्योंकि वो बोल भी नहीं पाते, हम कैसे पहचानें कि इन्हें क्या बीमारी है?
1: देखिए मैम, ऐसा औसतन कहा जाता है, जैसे प्रचलित रहता है कि भाई थोड़ी दूर थोड़ी पास, ये थोड़ा वाला कोई डिस्टेंस नहीं है, जिसको कोई लिमिट नहीं है, कोई इसका कैलिब्रेशन नहीं है। वैसे ही हम पेट्स के लिए बात करेंगे कि आज ये थोड़ा सुस्त है, तो ये जो थोड़ा सुस्त है, दो दिन से खाना नहीं खाया, शाम से सुबह से हम वेट करते रहे, या दो दिन हम घर से बाहर होंगे, बेटी घर से गई हुई है, को आज कोचिंग नहीं आई, आज इसका फेवरेट ट्रीट नहीं मिली खाने को, शायद यही सब छोटे छोटे छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं जिस समय हमको थोड़ा चिंतित हो जाना चाहिए कि यार शायद इसको कहीं कुछ हो तो नहीं रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब हमारे ह्यूमन के एक साल इक्विवेलेंट टू, मतलब डॉग का एक साल हमारे ह्यूमन के 7 ईयर्स के बराबर हो जाता है, तो 14 इयर्स एक मैक्सिमम एज मानी जाती है डॉग की औसतन। वैसे जैसे हमारी ह्यूमंस की एज आज की तारीख में धीरे धीरे घटती जा रही है, पहले 90 इयर्स 100 इयर्स तक भी हमारे ओल्डर पेशेंट्स अच्छे से जी लेते थे, आज हम देखते हैं तो पहले घटते घटते 60 तक, और कई बार तो आजकल 40-45 पे भी काफ़ी ज़्यादा ह्यूमंस की भी डेथ हो जाती है। तो वैसे ही हमारे डॉग्स के साथ भी है, बिकॉज क्योंकि हम भी वही एनवायरनमेंट शेयर कर रहे हैं और हमारा पेट भी वही एनवायरनमेंट शेयर कर रहा है। हम देखा जाए तो हमारा पेट भी उसी घर में रह रहा है जिस घर में हम रह रहे हैं, सेम ब्रीथ सेम सांस जो हम ले रहे हैं वही हमारा पेट ले रहा है, शायद जो हम खा रहे हैं वो भी हमारा पेट खा रहा है, और जो हम खा रहे हैं या हम जो कंजम्पशन ले रहे हैं उन्हीं से ही उनका पेट फूड भी तैयार हो रहा है, ये भी मान सकते हैं। तो जो मेडिसिन या प्रिजर्वेटिव हमारे खाने में, हमको लेज में, चिप्स में, इन सब में जो भी हम ले रहे हैं फूड्स स्नैक्स ये सब जो भी हैं ये ले रहे हैं स्टेपल फूड्स, तो यही जो प्रिजर्वेटिव हैं उनके भी ग्रेवीज में, उनके भी ड्राई फूड्स में, और साथ साथ उनकी ट्रीट्स में भी आ रही।
0: एक बात कही जाती है डॉक्टर साहब कि पालतू पशु रख लेने से या रखने वाले लोग अक्सर ये कहते हैं कि भाई हम समय पर भोजन दे रहे हैं, समय पर पानी दे रहे हैं, फिर भी हम समझ नहीं पा रहे कि ऐसा कौन सा व्यवहार करें कि हमारे डॉग को कोई बीमारी ना हो और वो कभी सुस्त ना हो, तो वो क्या एक अच्छे, जैसे बच्चों के संदर्भ में भी कहा जाता है कि अभिभावक बनना सबके बस की बात नहीं है, तो वैसे ही मुझे लगता है कि पेट पेरेंट्स बनना भी सबके बस की बात नहीं है, तो वो क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो एक अच्छे पेट के अभिभावक में होनी चाहिए?
1: सबसे अच्छे पेट अभिभावक वो हो सकते हैं जो अपने पेट के साथ समय बिताएं। आप अपने पेट को सिर्फ लायबिलिटी के तौर पे ना पालें, यदि आप अपने घर में पेट लाएं तो उसको एक सदस्य के तौर पे माने, सदस्य के तौर पे मानना ही और उसका दर्जा देना ही एक अलग बात होती है, आपको उसकी हर एक जरूरत का ख्याल रखना वो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है
0: जी।
1: उसका वैक्सीनेशन समय पर हो, उसको पेट के कीड़ों की दवाई समय पर दी जाए
0: जी।
1: उसको कुछ सप्लीमेंट्स की जरूरत है यदि सीनियर पेशेंट्स है या प्रेग्नेंट है तो उस समय उसकी सप्लीमेंट्स और इन सब की केयर देखरेख करना, साथ ही हमारे पेट्स को एक नियमित तौर पे एक्सरसाइज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, शायद हम इंसानों को भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। लेकिन क्या हो रहा है कि हमारी लाइफ ऐसी हो गई है कि अब हम लोग पार्क और ग्राउंड पे जाने की बजाय जिम में कन्फाइन हो गए हैं, तो जब हम पार्क और ग्राउंड में जाते थे तो शायद लोग अपने पेट्स को लेकर के वहाँ घूमते थे, अब जब से जिम का प्रचलन आया है तब से लोग पेट्स को जिम में तो इनकॉर्पोरेट कर नहीं पा रहे हैं, कई बार ऑफिस में पेट को, कई बार एक आजकल चलन चला था बीच में थोड़े समय में मेट्रो सिटीज में कि कुछ पेट पेरेंट्स या कुछ ऑफिस, मतलब जो भी ऑफिस में एम्प्लॉयज थे वो अपने पेट्स को ऑफिस लाने लग गए थे, क्यों? क्योंकि वो 7-8 घंटे वहां रहते थे और उनका पेट बहुत छोटा था, कभी कभी कोई कैट हो, छोटा पप्पी हो, तो वो लोग अपने पेट्स को ऑफिस में साथ में कैरी करने लगे थे, और कई बार आजकल रहता है कई लेडीज हैं जो कि किटी पार्टीज में भी एज अ शो के लिए अपने पेट्स को लेकर के जाते हैं, क्योंकि आजकल पेट बिल्कुल पॉकेट वाले हो गए, छोटे छोटे पेट्स हो गए, और जब हम ये देखते हैं कि हमारे पेट की एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो मान सकते हैं कि आजकल सोसाइटीज़ क्लोज्ड हैं तो कहीं कहीं जगह पर हमको उनके मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं कि भाई गंदगी ना हो, रोड्स पे नहीं जाएं, किसी दूसरे डॉग से फाइट ना हो जाए, तो कुछ पेट फ्रेंडली पार्क्स भी हैं भोपाल में, जिस पेट फ्रेंडली पार्क्स में आप जा सकते हैं, इवन कई सारे ग्राउंड्स हैं हमारे भोपाल में जो कि अभी रिसेंटली जैसे कोई त्यौहार नहीं है तो वो खाली भी रहते हैं, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं सुबह सुबह के टाइम या थोड़ा सा शाम लेट नाइट के टाइम, और वहाँ जा करके आप अपने पेट को भरपूर एक्सरसाइज कराने दे सकते हैं। आज ही रिसेंटली की बात है, एक कुछ पेट पेरेंट्स हमारे पास आए। उन्होंने बोला कि सर इसको हम घर के बाहर इसलिए नहीं ले जाते क्योंकि घर के बाहर हमारे बहुत सारे डॉग्स हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि आपकी कॉलोनी में लुकलाइट में काफ़ी सारे डॉग्स हैं, बट आपकी कॉलोनी में कोई तो पार्क होगा। बोले हाँ, हमारे घर के पास एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। तो मैंने बोला आप वहाँ क्यों नहीं ले जाते? तो वो बोले हम लोग वहाँ ले जा सकते हैं, बट हम ही लोग नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि ऑफिसेज और ये हस्बैंड नहीं रहते, तो कार नहीं रहती, तो वहाँ तक जाना और थोड़ा डिस्टेंस रहता है। तो मैंने बोला आप कोशिश करिए कि दिन में नहीं तो दो दिन में एक बार उसको वहाँ पे जाके वॉक कराइए। और उन्होंने ये नोटिस किया कि जब से उन्होंने लास्ट 15-10 डेज में उसको एक्सरसाइज कराना शुरू करी और वहाँ वो जाके इतना खूब खेलता है, इतना खेलता है। वो बताते हैं सर कि इसको टॉय वॉय की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ ये कम से कम 4-5 राउंड तो सिर्फ दौड़ता ही है। और वो यंग डॉग है, लैब्राडोर है, 1 साल का है, और वो खूब दौड़ता है। 4-5 राउंड दौड़ने के बाद बोले जब वो थक जाता है तब वो आ जाता है खुद से कि चलो अब वापस,
0: अब हो गया।
1: और अब उसके बाद से उनको ये समझ में आ रहा है कि जो उसकी एग्रेसिवनेस थी, जो उसकी बेचैनी थी, जो उसको दिन भर घर में रहती थी, वो उस चीज से वो छूट गई।
0: मेरे सामने ऐसे बहुत सारे घर और ऐसे बहुत सारे अभिभावक अब मेरे ध्यान में आ रहे हैं, जो आपने बताया था कि सिर्फ एक लाइबिलिटी की तरह की, भाई इसका खाना पीना देख लिया, अपने घर के बाहरी हिस्से में रखते हैं, जबकि अगर वो खतरनाक नहीं है डॉग तो घर के अंदर भी लिया जा सकता है। तो ये जो पूरे दिन अकेले रहने वाले डॉग होते हैं, जिन्हें समय से ले जाया जा रहा है, एक्सरसाइज हो रही है, लेकिन सब कुछ ठीक है, पर वो पूरे दिन अकेले हैं, फिर दूसरे दिन या रात में उनको वॉक पर ले जाया जाएगा, ये वाला नज़रिया कितना ठीक है कि घर के दरवाजे पर एक डॉग पूरे दिन बैठा हुआ है अकेला और आते जाते लोगों पर वो भूक रहा है क्योंकि उससे बात करने के लिए कोई नहीं है, उसके पास समय बिताने के लिए, इसको आप कैसे देखते हैं?
1: इसमें एक्चुअली क्या होता है मैम, एक फैमिली जैसे हम मान सकते हैं कि फैमिली में सिर्फ पेरेंट्स की ही ये जिम्मेदारी नहीं होती कि वो डॉग का पूरा केयर करें, लाते तो बच्चे हैं।
0: हाँ,
1: सही बात तो यह है कि लाते तो बच्चे हैं। अब बच्चे शौक शौक में ले आते हैं और फिर उसके बाद उनकी स्कूल और कोचिंग की पढ़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, जिसके बाद उनका एकदम ऐसा निग्लेक्ट होता है कि भाई आए तो कोचिंग से बैग पटका और फोन उठा के शुरू, या फिर आते ही होमवर्क शुरू हो जाता है।
0: आपने बहुत सारे अभिभावकों की दुख तिरक पर हाथ रख दिया, क्योंकि मैक्सिमम घरों में यही होता है डॉक्टर साहब की, लाते तो बच्चे हैं और फिर वो पूरी तरह से जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी बन जाता है।
1: ये बहुत बड़ा इश्यूज था मैम जब कोरोना खत्म हुआ था।
0: हाँ।
1: जब कोविड टाइम चल रहा था तो एक बार घर में कोरोना के कारण कई सारे लोगों के घर में डेथ भी हुई। उस डेथ को उन्होंने, उससे उभरने के लिए उन्होंने कुछ पेट्स इंट्रोड्यूस किए। किसी वाइफ ने हस्बैंड खोया तो उनने एक पेट दे दिया, किसी घर में किसी के पेरेंट ग्रैंड पेरेंट्स चले गए, किसी के बच्चे की डेथ हो गई, तो वो कहीं ना कहीं उनने एक पेट को इनकॉर्पोरेट कर लिया एज अ फैमिली मेंबर। फिर समय आया जब वापस लॉकडाउन ओपन हुआ और जो एम्प्लॉयज थे, जो सर्विस कर रहे थे प्रोफेशनल्स, वो वापस अपने अपने बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, जहां भी उनके मुंबई शिफ्ट होना शुरू हुए। अब समस्या आई पेट्स कहाँ जाएंगे, जो अब्रॉड जाने वाले थे, अभी भी एक वॉर हुआ था उस समय काफी सारे दुबई से लोग आए इंडिया में, देन अगेन दे उन्होंने यहाँ पे आके पेट्स रख लिए। अब पेट्स को साथ में ले जाना है वापस दुबई, तो कई बार कुछ पेट पेरेंट्स तो अफोर्ड कर सकते थे, बिल्कुल उनकी टिकट कराए और पूरे फॉर्मेलिटीज करके यहाँ से लेकर के गए, बट कुछ पेट पेरेंट्स ऐसे थे कि नहीं अब ये पेट यहाँ उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही रहेगा, तब बड़ी एक इशू आई। लेकिन आज की तारीख में भी मैं ऐसा बता सकता हूँ कि डॉग वॉकर्स की फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे ही हम अर्बन क्लब्स की बात करते हैं घर में क्लीनिंग के लिए, या फिर हम क्लाउड किचन की बात करते हैं घर में कोई गेस्ट आए तो फूड के लिए, वैसे ही आज डॉग वॉकर्स की भी अवेलेबिलिटी है। यदि आप एक डॉग वॉकर भी रख सकते हैं जो सुबह शाम आपकी एब्सेंस में आकर के उसको घुमा करके एक चक्कर, जो भी उसके डेली नीड्स हैं, यूरिन, पॉटी, जो भी उसको करना है, इतना भी करा देंगे तो शायद वो एंगेज हो जाए।
0: अब हम रुक करते हैं अपने घर की चार दीवारी से निकलकर सड़क की ओर और ऐसे बात करते हैं ऐसे पशुओं की जो घरों में नहीं रहते, उनकी हम और या और समाज के लोग किस तरह मदद कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि उनके आसपास सड़कों पर रहने वाले जानवर बीमार हैं या उन्हें कुछ ज़रूरतें हो सकती हैं, इसकी कंडीशनिंग के लिए क्या व्यवहार हो सकता है?
1: देखिए मैम, अपन ये देखें कि दयालुता जो होती है, दयालु जो आदमी है, वो सिर्फ सोचने भर की बात नहीं होनी चाहिए, हमारे कार्यों में दिखनी चाहिए।
0: जी।
1: यदि हम एक छोटे से चिड़िया के लिए एक पानी का सकोरा, हमारे घर के बाहर रहने वाले डॉग के लिए, कई बार होता है कि डॉग कार के नीचे, मेरी डेली कार खड़ी रहती है घर के बाहर और उस कार के नीचे हमेशा डॉग या फिर कोई कैट आराम करती ही है। अभी भी मैं जस्ट आया हूँ तो मेरे एक डॉग आराम कर रहा था, और मैंने उसको डॉग का फूड वहाँ पे खोल के रैपर डाला, वो उठ के आधा खाया और आधा वो वापस सो गया। मुझे मालूम है कि वो शाम को फिर खाएगा। तो ये दयालुता जो है, ये बेसिकली हमारे एक संवेदनशीलता सिर्फ मानसिक तक नहीं रहनी चाहिए, हमारी जो एक्टिविटीज हैं उसमें भी दिखनी चाहिए। जैसे ही हम ये थोड़ा सा अपना दिन का 1% भी उसमें ऐड कर देंगे तो हम लोग इस चीज पे ओवरकम कर पाएंगे। आज की तारीख में यदि हम बात करते हैं वन हेल्थ का कंसेप्ट जो है, जिसमें एनिमल्स, ह्यूमंस एंड द एग्रीकल्चर, ये तीनों चीज का कंसेप्ट है, जिसमें ये बात बहुत सही बात है कि फार्म टू फोर्क, यदि हम पोल्ट्री फार्म की बात करें, हम डेयरी फार्म की बात करें, या फिर हम कोई एग्रीकल्चरल लैंड की बात करें, इट कम्स ऑन टू अ टेबल। हमारी सुबह उठने की चाय, हमारी दिवाली की मिठाई, हर चीज दूध से आ रही है। तो क्या हमारी ये बेसिक नीड नहीं है कि एनिमल्स का होना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है? तो जो ये वन हेल्थ का कंसेप्ट है, ये भी बहुत जरूरी है हमको आज समझने के लिए कि हम उनकी आंखों से एक बार देखें कि हमारे पेट के घर के बाहर हैं, कोई बात नहीं, आप उसके लिए एक पानी रख दीजिए, एक कटोरी दूध मिला के पानी मिला के डाल दीजिए, आप कुछ बिस्किट्स डाल सकते हैं, कई लोग होते हैं जिनके घर में तो बिस्किट्स होते ही हैं, बिस्किट्स डाल सकते हैं, आपकी एक रोटी डाल सकते हैं। अभी तो वैसे भी श्राद्ध का महीना चल रहा है, डॉग्स को रोटी खिलाना एक है, श्राद्ध में एक दिन होता है उसमें डॉग्स को रोटी भी खिलाई जाती है, कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि गायों को गोग्रास दिया जा रहा है और चीटियों को भी दिया जा रहा है, कौओं को भी दिया जा रहा है। तो ये एक इस प्रकार का पुण्य को ही मान के हम क्यों ना कर लें कि हम साल भर ही एक गाय को रोटी खिला दें या एक डॉग को रोटी खिला दें।
0: बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक चीज और, मतलब आपके बहाने से ही, क्योंकि वो मैंने देखा है अनुभव से, मैं कहना चाहूंगी कि एक बहुत बड़ी चीज कॉन्टिन्यूटी की भी होती है। आप 10 दिन लगातार काम करें तो वो पंछी भी आपका इंतजार करने लगते हैं और वो पशु भी आपका इंतजार करने लगते हैं। क्योंकि मैं एक जगह ग्वालियर में गई थी तो मैंने देखा कि वहाँ सुबह होते ही सर वो दाना डालती हैं और लगभग 100-150 पक्षी आकर सुबह 5 बजे, अगर हम लोग गए हुए थे तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोल पाया तो उनकी दरवाजे पे बकायदा चिड़ियाँ चोंच मारने लगी। तो ये देख के लगा कि जैसे हम कोई पिक्चर देख रहे हैं, क्योंकि अब ये नहीं हो सकता। तो मतलब उन्हें भी इतनी सजगता है कि हमारा टाइम हो गया।
1: ये बताइए, मैं तो सिंपल सी बात कहता हूँ, आपने कौवा कब से नहीं देखा?
0: सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बहुत दिनों से नहीं देखा। हम जैसे सब लोगों ने बहुत दिनों से नहीं देखा।
1: आज की तारीख में भोपाल में कौवे ढूंढना भी एक बड़ी टास्क हो गई। बहुत सारे बर्ड वॉचर्स से मैंने पूछा, वो बोले कई लोग बताए कि वन विहार साइड में देखे गए, कोई लोग बताए कि न्यू मार्केट में रोशनपुरा चौराहे के आसपास कहीं देखा गया। तो आज अभी 2-3 दिन पहले की बात है, एक न्यूज़पेपर में ही बात चल रही थी कि कौवे कहाँ हैं। तो यदि हम एक छोटा सा, जैसा आपने बताया एक प्रयास है, यदि आप एक छोटे से बर्ड्स को दाना डाल रहे हैं तो इससे कम से कम बर्ड्स आपका इंतजार कर रहे हैं। तो मैं ये बोलता हूँ कि शायद आज हम भी दाना डालना शुरू करें और हमारे भोपाल में कौवे वापस आए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वरना वो गाने खत्म हो जाएंगे जो झूठ बोले कौवा काटे। मुझे लगता है ऐसे गानों की कहीं प्रासंगिकता ही नहीं बचेगी। तो शुरू से हमारे देश में समृद्धता का परिचय ही ऐसे होता था सर कि पशु मवेशी अगर हमारे घर में है, अनाज हमारे यहाँ भरपूर है तो समृद्ध हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि हम लोग बहुत आपस में ही सिमट के रह गए हैं। बहुत अच्छी बातें हो रही हैं आपसे, और भी मेरा जाने का मन है। एक जो और सवाल है मेरा कि कोई सड़क के पशु पक्षियों के लिए अगर कोई मदद करना चाहता है तो कई बार हम दया के चलते खुद ही मदद करने लग जाते हैं, और इसका कई बार उल्टा भी होता है। अगर डॉग परेशान है या और भी कोई पशु परेशान है तो उल्टा कई बार वो लोग पलट के भी हमला कर देते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं, हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है।
1: सबसे पहले तो मैम देखिए, हमारे घर के आसपास यदि कोई पेट तो नहीं बोल सकते, स्ट्रे डॉग, यदि कहीं स्ट्रे डॉग, स्ट्रे कैटल, बफेलोज या कोई भी एनिमल आपको वाइल्ड भी मिल सकता है हाईवेज पे, तो सबसे जरूरी चीज है कि आप कहाँ पर खड़े हैं पहले ये डिसाइड करें। इफ यू आर इन द सिटी या आप हाईवे पे हैं या जिस भी एरिया में है, वहां पे 1962 एक डायल करके एक एनिमल एम्बुलेंस चल रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चल रही है, और इसमें वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया का भी बहुत बड़ा योगदान रहा इस एम्बुलेंस को डिजाइन कराइंग में और इसका इम्पैनलमेंट में, इसको स्टार्ट करने में पॉलिसी को। तो जैसे ही ये पॉलिसी और ये एम्बुलेंस स्टार्ट हो गई, ये सेवाएं अब चालू हैं। हम कभी सोचते थे कि हमको डायल 108 आके एम्बुलेंस ह्यूमंस के लिए लेगी
0: जी,
1: बट आज 1962 जा करके पेट्स का, स्ट्रे एनिमल्स का, इवन जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं यदि कहीं रोड पे एक्सीडेंटल हैं तो आप उस एम्बुलेंस को बुला करके उनका प्राथमिक उपचार करा सकते हैं या रिपोर्ट कर सकते हैं आसपास के। फिर उसमें जो सर्विलेंस टीम रहती है वो आगे आसपास में कोऑर्डिनेट करके उस चीज़ को रेस्क्यू करवा लेती है उस एनिमल को।
0: बिल्कुल, 1962 ये नंबर याद रखा जाए श्रोताओं, क्योंकि एक बहुत ही अहम नंबर है। एक और समस्या है, एक तरफ हैं जो लोग बहुत मतलब कहते हैं कि डॉग लवर्स हैं, और दूसरी तरफ हैं जिन्हें लगता है कि घर के आसपास और सड़क पर इतने डॉग्स नहीं होने चाहिए। ये एक बहुत बड़ा कारण है जो कई बार मैंने देखा है पड़ोसी पड़ोसी से बहस कर जाते हैं। इस विषय में अगर आप कुछ प्रकाश डालना चाहें।
1: मैम, मैंने तो ये देखा है कि एक आज रात है तो कल सुबह होगी और सुबह है तो रात होगी। यदि कोई एक पशुपालक है, यदि कोई पशु पाल रहा है, जैसे अभी हमारी चर्चा हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो मैम ने यही कहा कि भाई अब सर एक के बाद दूसरा रखने के मन नहीं मान रहा। क्यों? क्योंकि पहले हम रख रहे थे, फिर अब हम नहीं रख रहे हैं। ऐसे ही हमारे घर में भी बहुत, हमारी दादी जी थी और हमारी नानी जी हैं, वो लोग का ये है कि नहीं, पशु नहीं होना चाहिए। और आज की तारीख में ये है कि हमारी नानी जी भी पशु रखी हैं और हमारी दादी जी के हमारे घर में भी पशु है। तो ऐसा मन बदलने में देर नहीं लगती, जैसे ही ये उनके मन में, और मैं बता रहा हूँ ना, आप उनके घर में देखेंगे जैसे ही जनरेशन 1, 2, 4, 5, 10 साल हो सकता है आदमी के अंदर हट रहेगी, जैसे ही नाती पोते आते हैं और घर में सब बदल जाते हैं,
0: बिल्कुल
1: सबको मना लेते हैं।
0: आपसे बात करके बहुत बेहतरीन दृष्टि भी मिल रही है कि कैसे पशुओं की नज़र से संसार को देखा जाए। सर, एक आखिरी सवाल है हमारे श्रोताओं के लिए कि हमारे श्रोताओं को हम ये बात कैसे समझा पाएं, किस संदेश के माध्यम से समझा पाएं, ताकि पशुओं के प्रति अधिक संवेदनशील, जिम्मेदार और जागरूक समाज बनाने में वो भी अपनी भूमिका निभा सकें।
1: पशुओं की देखभाल केवल भोजन और आश्रय तक सीमित नहीं है। समय पर टीकाकरण, नियमित स्वास्थ्य जांच, सही पोषण और तनाव मुक्त वातावरण देना भी बेहद जरूरी है। यही पशु पालतू पशुओं की संवेदनशीलता और देखभाल रखने के लिए बेसिक नीड है।
0: श्रोताओं, आज जो हमारी बातचीत हुई है उस लिहाज से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि पशुओं के स्वास्थ्य, उनकी देखभाल, उनके प्रति जिम्मेदारी से जुड़े इतने महत्वपूर्ण विषय आज इस बातचीत में उठे हैं। और निश्चित ही आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये साझी धरती है इंसानों की भी और जानवरों की भी, पशुओं की भी, पक्षियों की भी। तो हमको थोड़ा और संवेदनशील होने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप स्टूडियो में आए, आपने हमसे इतनी अच्छी और इतनी जानकारी भरी बातें की, आपका बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद, और आप सभी को भी एक बार फिर विश्व पशु दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: अभी आप सुन रहे थे विश्व पशु दिवस पर विशेष कार्यक्रम। इस बातचीत में हमारे साथ थे डॉक्टर अंकुर नारद। इसी के साथ ये बातचीत अब यहीं समाप्त होती है। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: साहस की बुलंद शुरुआत से लेकर आसमान की असीम ऊंचाइयों तक 8 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस।
3: वर्ष 1947-48, 1965 और 1971 के ऐतिहासिक युद्धों से लेकर ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना ने हर पल कर दिखाया है अदम्य पराक्रम, अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोच्च बलिदान।
2: तो मध्य प्रदेश के जाबाज युवाओं, क्या आप तैयार हैं? बादलों को चीरकर देश का मान बढ़ाने के लिए तो बनिए अग्निवीर वायु, हासिल कीजिए वो मुकाम जो जिंदगी भर की पहचान बन जाए, और गर्व से कीजिए भारत माँ की सेवा।
3: भर्ती और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए
2: 15 एयरमैन चयन केंद्र के इंस्टाग्राम पेज 15ASC_भोपाल और आधिकारिक वेबसाइट IAFRecruitment.edcil.gov.in। co.in पर विजिट करें।
3: नभास प्रशम दीप्तम।
2: जय हिंद।
4: लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, भ्रष्टाचार की सफाई और दीवानी का खेल। क्या आप जानते कि जब लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव 1765 में कलकत्ता लौटे तो उन्हें एक अनुशासित व्यापारिक केंद्र नहीं मिला, बल्कि एक ऐसा शहर मिला जिसे उन्होंने कल्पना से परे लालची और विलासी बताया था। पलासी की जीत के बाद यह तथाकथित स्वर्ग से जन्मा सेनापति अपनी प्रसिद्धि और अपनी आयरिश पियरिज यानी कुलीन पद का आनंद लेने के लिए इंग्लैंड लौट गया था, लेकिन पीछे जो बंगाल छूटा था वह भ्रष्टाचार के गर्त में गिर चुका था। क्या आप जानते हैं कि कंपनी के कर्मचारी वह बन चुके थे जिन्हें एडमंड बर्क ने बाद में शिकारी पक्षियों की नई उड़ान कहा था। धन की अदम्य भूख से प्रेरित मामूली वेतन पाने वाले युवा क्लर्क राइटर अचानक राजकुमारों की तरह रहने लगे थे। वे स्थानीय शासकों से भारी उपहार वसूलते थे और दस्तक निजी व्यापार पास के दुरुपयोग के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में आतंक फैलाते थे। नवाब का हर बदलाव एक और 5 अंकों वाले इनाम का बहाना बन गया, जबकि कंपनी खुद दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी। लॉर्ड क्लाइव अपने तीसरे कार्यकाल के लिए इस व्यापक भ्रष्टाचार की सफाई करने के जनादेश के साथ आए थे। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपने ही सहयोगियों का शिकार करने के लिए एक सेलेक्ट कमेटी का इस्तेमाल किया? क्लाइव ने उन्हें मनाने में समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने पार्षदों को उनकी अचानक बड़ी संपत्ति का विवरण देने के लिए बुलाया और हर अधिकारी को भविष्य में उपहार न लेने के लिए एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। लेकिन क्लाइव के सुधारों में एक अजीब विडंबना थी। क्या आप जानते हैं कि जहां वे ईमानदारी की मांग कर रहे थे वहीं वे खुद अपनी कुख्यात जागीर से सालाना बड़ी रकम प्राप्त कर रहे थे। जब अपमानित पार्षदों ने उन्हें याद दिलाया कि वे केवल उनके द्वारा स्थापित उपहार लेने के उदाहरण का पालन कर रहे थे तो क्लाइव का जवाब अभिजात्यवाद का एक उत्कृष्ट नमूना था। उन्होंने दावा किया कि उनके पुरस्कार वास्तविक सेवाओं के लिए थे, जबकि उनके सहयोगियों के पुरस्कार निम्न श्रेणी के दावों की लूट थे। निजी व्यापार के मुद्दे को हल करने के लिए क्लाइव ने वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए नमक और तंबाकू पर राज्य स्वीकृत एकाधिकार पेश किया। हालांकि इसका उद्देश्य अधिकारियों के लिए कानूनी आय सुनिश्चित करना था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका परिणाम भूखे किसानों के लिए बढ़ी हुई कीमतों के रूप में निकला, जबकि क्लाइव का व्यक्तिगत हिस्सा बहुत बड़ी रकम से भी बहुत ऊपर पहुंच गया था। सबसे बड़ा सुधार तब आया जब क्लाइव ने मुगल सम्राट से दीवानी अर्थात पूरे बंगाल का राजस्व एकत्र करने का अधिकार प्राप्त किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस ऐतिहासिक समारोह के लिए इस्तेमाल किया गया सिंहासन वास्तव में क्लाइव की अपनी डाइनिंग टेबल थी, जिसे कठपुतली सम्राट के लिए कपड़े से ढक दिया गया था। इस एक कार्य के साथ कंपनी व्यापारियों की एक साधारण समिति से हटकर एक संप्रभु शक्ति बन गई। अंततः क्लाइव का दूसरा प्रशासन एक दृढ़ और जिम्मेदार कमान थोपने में सफल रहा, लेकिन भ्रष्टाचार का वह अस्तबल पूरी तरह साफ होने से कोसों दूर था। उनके भ्रष्टाचार विरोधी अभियान ने घूसखोरी के भाईचारे का उल्लंघन किया, जिससे वे कलकत्ता में सबसे नफरत किए जाने वाले व्यक्ति बन गए और यह सुनिश्चित कर दिया कि उनकी ईश्वरीय विरासत का अंत संसदीय महाभियोग के गंभीर गलियारों में होगा।
5: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद और अब समय है हमारे कार्यक्रम देश के संस्थान का। और आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे अर्थव्यवस्था का प्रहरी भारतीय रिजर्व बैंक की।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान।
1: श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम देश के संस्थान में रक्षा संस्थानों की यात्रा के बाद अब शुरू हो रही है हमारी नई श्रृंखला भारत के वित्तीय संस्थान, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़।
2: जी हाँ श्रोताओं, भारत की पहचान सिर्फ उसकी सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों से नहीं है, देश की मजबूती उसकी अर्थव्यवस्था से भी तय होती है। जिस तरह सीमा पर तैनात सैनिक देश की सुरक्षा का प्रहरी होता है, उसी तरह आर्थिक व्यवस्था में कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो देश की मुद्रा, बैंकिंग व्यवस्था और वित्तीय स्थिरता पर लगातार नजर रखती हैं।
1: इन्हीं महत्वपूर्ण संस्थानों की यात्रा में आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, भारत के वित्तीय संस्थान, अर्थव्यवस्था की रीढ़। और इस यात्रा की शुरुआत होगी उस संस्था से जिसे भारत की बैंकिंग और मौद्रिक व्यवस्था का केंद्र कहा जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI।
3: दादू दादू, ये क्या हो रहा है?
4: अरे बिटिया, सुबह सुबह इतनी घबराई हुई क्यों दौड़ी चली आ रही हो?
3: दादू, एक बड़ी गड़बड़ हो गई है।
4: क्या हुआ?
3: मैं दुकान से सामान लेकर आई थी, मैंने दुकानदार को 500 रुपए दिए और उसने मुझे वापस पैसे भी दिए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसने कितने पैसे मुझे वापस किए।
4: अरे तो इसमें गड़बड़ क्या है, हिसाब लगाओ।
3: अरे दादू, यही तो नहीं हो रहा ना। देखिए, मेरे पास ये 10 का सिक्का है, ये 20 का नोट है और ये 50 का नोट और ये।
4: अच्छा, अरे भाई पहले सामान की कीमत बताओ।
3: दादू, कुल 370 रुपए।
4: तो 500 में से 370 घटाओ।
3: एक मिनट दादाजी, 130 रुपए हुए।
4: हाँ बिल्कुल सही।
3: ओह, तो हिसाब तो हो गया, लेकिन दादू एक बात बताइए।
4: पूछो बेटा।
3: ये नोट और सिक्के आते कहाँ से हैं? और कौन तय करता है कि देश में कितने पैसे होने चाहिए?
4: वाह बिटिया वाह, आज सुबह सुबह तुमने ऐसा सवाल पूछ दिया है कि हमारी नई यात्रा की शुरुआत हो गई।
3: नई यात्रा की शुरुआत? लेकिन दादू, आज तो ना सेना है, ना कोई मिसाइल है, ना कोई रक्षा संस्थान, फिर कौन सी नई यात्रा पर ले जा रहे हो आप मुझे?
4: अरे बिटिया, देश की रक्षा सिर्फ बंदूक और मिसाइल से नहीं होती।
3: तो फिर कैसे होती है दादू, मैं कुछ समझी नहीं।
4: अच्छा, तुमने अब तक देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले संस्थानों के बारे में जाना, लेकिन क्या कभी सोचा है कि देश की अर्थव्यवस्था की रक्षा कौन करता है?
3: अच्छा, अर्थव्यवस्था की भी रक्षा होती है दादू?
4: बिल्कुल बिटिया, होती है। जैसे देश की सीमा पर सेना प्रहरी होती है, वैसे ही देश की आर्थिक व्यवस्था में कुछ संस्थाएं प्रहरी की भूमिका निभाती हैं।
3: और उनमें सबसे बड़ा प्रहरी कौन होता है?
4: आज की हमारी कहानी उसी प्रहरी की है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI।
3: तो यानी आज हमारी कहानी नोटों से शुरू होने वाली है दादू?
4: नोटों से शुरू होगी, लेकिन सिर्फ नोटों पर खत्म नहीं होगी। आज हम जानेंगे उस संस्था के बारे में जो भारत की मौद्रिक और बैंकिंग व्यवस्था में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
3: सो तो है दादू, पर आप ये बताइए कि ये RBI बना ही क्यों?
4: इसका जवाब जानने के लिए हमें आज से लगभग 9 दशक पीछे जाना होगा। उस समय भारत की बैंकिंग और मुद्रा व्यवस्था आज जैसी विकसित और संगठित नहीं थी। देश को एक ऐसी केंद्रीय संस्था की आवश्यकता महसूस हो रही थी जो मुद्रा और ऋण व्यवस्था को व्यवस्थित करे और बैंकिंग प्रणाली में स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।
3: मतलब एक ऐसी संस्था जो पूरी आर्थिक व्यवस्था के लिए केंद्र की तरह काम करे। सही कहा ना मैंने?
4: बिल्कुल, इसी दिशा में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशें महत्वपूर्ण रहीं। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 बनाया गया और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, इसी दिन भारतीय रिजर्व बैंक ने काम करना शुरू किया।
3: तो RBI की स्थापना की तारीख क्या थी दादाजी?
4: बिटिया रानी, वो ऐतिहासिक दिन 1 अप्रैल 1935 का था।
3: अच्छा
4: हाँ
3: दादू, वैसे मैं इस तारीख को अब कभी नहीं भूलूंगी।
4: ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा।
3: अच्छा दादू, ये बताइए ना कि जब आरबीआई बना था तो उसका मुख्यालय कहाँ पर था?
4: शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था।
3: अच्छा, फिर वो मुंबई कैसे पहुंचा?
4: सिर्फ 2 साल बाद यानी 1937 में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। तुम इसे ऐसे याद रखो रुचि, 1935 कोलकाता से शुरुआत और 1937 मुंबई में स्थायी ठिकाना।
3: और आज?
4: अरे आज भी आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय मुंबई में ही है।
3: एक बात बताइए दादाजी,
4: हाँ?
3: क्या आरबीआई सरकार का बैंक है?
4: दरअसल आरबीआई केंद्र सरकार का बैंकर है और समझौते के आधार पर राज्य सरकारों के लिए भी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है।
3: मतलब सरकार के भी बैंकिंग काम होते हैं दादा?
4: हाँ बिल्कुल, सरकार को धन प्राप्त करना होता है, भुगतान करना होता है, खातों का प्रबंधन करना होता है और सरकार के ऋण का प्रबंधन भी करना होता है। इन कार्यों में आरबीआई की महत्वपूर्ण भूमिका है।
3: तो जैसे हमारा बैंक हमारे पैसों से जुड़े काम करता है, वैसे ही आरबीआई सरकार के बैंकिंग कामों में मदद करता होगा।
4: हाँ, लेकिन आरबीआई की भूमिका इससे कहीं बड़ी है।
3: बैंक जहाँ हम पैसे जमा करते हैं दादू?
4: हाँ, और यहीं आता है आरबीआई का एक बहुत महत्वपूर्ण परिचय, आरबीआई यानी बैंकों का बैंक।
3: बैंकों का बैंक?
4: हाँ बिटिया, कल्पना करो किसी स्कूल में बच्चे अपनी कक्षा के शिक्षक के पास जाते हैं, लेकिन शिक्षकों के लिए भी एक व्यवस्था होती है। ठीक उसी तरह बैंकिंग प्रणाली के लिए आरबीआई केंद्रीय भूमिका निभाता है। बैंकों के आरबीआई के साथ खाते होते हैं। बैंकिंग व्यवस्था में भुगतान और निपटान से जुड़े कई काम आरबीआई की व्यवस्था के माध्यम से होते हैं और यदि बैंकिंग व्यवस्था में तरलता की जरूरत हो तो आरबीआई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
3: तरलता, ये क्या है दादू?
4: हाँ बेटी, लिक्विडिटी यानी आसानी से उपलब्ध धन।
3: अच्छा, यानी बैंकिंग व्यवस्था में पैसे का प्रवाह ठीक रहना भी जरूरी है।
4: बिल्कुल, और इसी कारण आरबीआई को कई बार लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट भी कहा जाता है, यानी आवश्यकता की अंतिम स्थिति में पात्र बैंकों को सहायता देने वाली केंद्रीय संस्था।
3: दादू
4: हाँ?
3: अब मेरी सबसे बड़ी उलझन दूर कर दीजिए।
4: बताओ,
3: आरबीआई का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में नोट क्यों आने लगते हैं दादू?
4: क्योंकि आरबीआई मुद्रा व्यवस्था से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है।
3: तो आरबीआई सारे नोट छापता है दादू?
4: रुचि, यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा। आरबीआई बैंक नोटों के जारीकरण और मुद्रा प्रबंधन की प्रमुख जिम्मेदारी निभाता है, लेकिन सिक्कों को भारत सरकार ढालती है और आरबीआई उन्हें प्रचलन में लाता है।
3: तो नोट और सिक्कों की दोनों की पूरी कहानी अलग अलग है दादाजी?
4: हाँ, और मुद्रा प्रबंधन का मतलब केवल नोट छापना नहीं है, इसमें ये सुनिश्चित करना भी शामिल है कि देश में जरूरत के अनुसार पर्याप्त मुद्रा उपलब्ध हो, अच्छी गुणवत्ता की मुद्रा लोगों तक पहुँचे और अनुपयुक्त या पुराने नोट व्यवस्था से हटाए जाएं।
3: मतलब नोट हमारे हाथ तक पहुँचने से पहले एक पूरी व्यवस्था से गुजरता है?
4: बिल्कुल।
3: दादू, आरबीआई आज भारत सरकार के स्वामित्व में है, क्या ये हमेशा से ऐसा था?
4: नहीं, ये तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा रुचि। जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तब ये शेयर धारकों के स्वामित्व वाली संस्था थी, लेकिन स्वतंत्र भारत में इसका एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ।
3: यानी तब आरबीआई भारत सरकार के स्वामित्व में आ गया दादू?
4: हाँ, और इसके बाद आरबीआई स्वतंत्र भारत की आर्थिक व्यवस्था के निर्माण में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा।
3: तो आरबीआई की कहानी में 3 तारीखें बहुत जरूरी हुई दादू, पहली 1935 की स्थापना, दूसरी 1937 में मुंबई आना और तीसरी 1949 में राष्ट्रीयकरण।
4: शाबाश रुचि, तुम्हारी याददाश्त तो कमाल की है।
3: थैंक यू दादू।
4: बहुत अच्छे।
3: अच्छा, अब आप मुझे वो शब्द बताइए दादाजी।

0: के लिए क्या किया जाए।
1: ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक यानी RBI ब्याज दरों जैसे कुछ नीतिगत साधनों का इस्तेमाल करके अर्थव्यवस्था में पैसे और कर्ज के प्रवाह को प्रभावित करने की कोशिश करता है।
0: लेकिन दादू, RBI ये कैसे करता है?
1: अच्छा, हम मान लो RBI ब्याज दरें बढ़ाता है, तब बैंकों के लिए RBI से पैसा लेना महंगा हो सकता है। इसका असर आगे चलकर बैंकों की ब्याज दरों पर भी पड़ सकता है,
0: और फिर लोग ज्यादा ब्याज देकर कम लोन लेंगे।
1: हाँ, इससे बाजार में खर्च और उधारी की रफ्तार पर असर पड़ सकता है और महंगाई के दबाव को कम करने में मदद मिल सकती है।
0: अच्छा।
1: हाँ,
0: तो अगर RBI ब्याज दरें घटाए तो इसका उल्टा असर हो सकता है दादू।
1: अब सही समझी, ब्याज दरें कम होने पर कर्ज लेना अपेक्षाकृत सस्ता हो सकता है। इससे लोग और कंपनियां ज्यादा उधार लेकर घर, गाड़ी, कारोबार या दूसरे कामों में निवेश कर सकते हैं। इससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है।
0: अब समझे दादू, यानी RBI ब्याज दरों और दूसरे साधनों के जरिए अर्थव्यवस्था में पैसे और कर्ज की रफ्तार को प्रभावित करता है।
1: बिल्कुल बिटिया, और यही समझने की सबसे आसान कुंजी है, मौद्रिक नीति यानी RBI की वो नीति जिसके जरिए वो अर्थव्यवस्था में पैसे और कर्ज की परिस्थितियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है।
0: समझ गए दादू, अब आपकी रुचि मौद्रिक नीति सुनकर डरेगी नहीं।
1: ये अभी तो हमने बस शुरुआत की है बिटिया, अब तुम्हें समझना है कि इस पूरी कहानी में रेपो रेट का क्या काम है।
0: रेपो रेट?
1: हाँ। अच्छा, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो किसी बैंक को थोड़े समय के लिए धन की जरूरत है। कुछ परिस्थितियों में बैंक RBI से निर्धारित व्यवस्था के तहत धन उधार ले सकता है। जिस ब्याज दर पर ये धन उधार दिया जाता है उसे रेपो रेट कहा जाता है।
0: और रेपो रेट बढ़ जाए दादाजी
1: तो सामान्यतः बैंकों के लिए RBI से धन लेना महंगा हो जाता है। इसका असर आगे चलकर बैंक की ब्याज दरों और ऋण की लागत पर पड़ सकता है।
0: मतलब दादू, अगर मैंने घर खरीदने के लिए लोन लिया हो तो ब्याज दर बढ़ने पर मेरी EMI भी प्रभावित हो सकती है।
1: हाँ, खासकर फ्लोटिंग और रेट लोन्स में।
0: और अगर रेपो रेट घटे तो?
1: तो परिस्थितियों के अनुसार बैंकों के लिए धन की लागत कम हो सकती है और उसका असर ऋण की ब्याज दरों तक पहुँच सकता है।
0: तो RBI का एक फैसला बैंक से होता हुआ आम आदमी की जेब तक पहुंच सकता है।
1: हाँ, बिल्कुल सही समझी, यही वजह है कि RBI की मौद्रिक नीति की घोषणा पर पूरा देश ध्यान देता है।
0: दादू, अगर बाजार में चीजें महंगी हो रही हो तो RBI इसमें क्या करता है?
1: सबसे पहले बिटिया ये समझो कि महंगाई यानी इन्फ्लेशन कई कारणों से बढ़ सकती है। खाद्य पदार्थों की कीमतें, ईंधन, आपूर्ति में बाधा, मांग में बदलाव, वैश्विक परिस्थितियां और बहुत से कारण हो सकते हैं। RBI का काम हर वस्तु की कीमत तय करना नहीं है, लेकिन मौद्रिक नीति के माध्यम से RBI व्यवस्था में मांग और ऋण की स्थितियों को प्रभावित कर सकता है और मूल्य स्थिरता के लक्ष्य की दिशा में काम करता है।
0: यानी अगर अर्थव्यवस्था में महंगाई का दबाव बहुत ज्यादा हो तो ब्याज दरों में बदलाव एक रास्ता हो सकता है दादू।
1: हाँ, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है।
0: मतलब RBI कहे और अगले दिन सब्जी 20 रुपए किलो सस्ती?
1: अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं।
0: तो मैं कल सब्जी वाले से ये नहीं कह सकती कि RBI ने दरें बदल दी है, आप टमाटर सस्ता करो?
1: अरे बिल्कुल नहीं।
0: अच्छा दादू, एक सवाल और, भारत के पास डॉलर कहाँ से आते हैं?
1: देखो, भारत दुनिया के अनेक देशों के साथ व्यापार करता है। हम वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करते हैं, विदेशों से निवेश आता है और अनेक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन होते हैं। इन सब के बीच देश के पास विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां होती हैं।
0: और इन्हें संभालता कौन है?
1: RBI देश के विदेशी मुद्रा भंडार का भी प्रबंधन करता है।
0: विदेशी मुद्रा भंडार मतलब देश के पास दूसरे देशों की मुद्राओं और संबंधित विदेशी परिसंपत्तियों का भंडार?
1: हाँ, सही समझी, ये भंडार देश की बाहरी आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। RBI विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
0: तो RBI सिर्फ भारत के रुपए को नहीं देखता दादाजी, बल्कि दुनिया के साथ भारत के आर्थिक संबंधों पर भी नजर रखता है।
1: बिल्कुल
0: दादू, मान लो किसी कैफे में मैंने कॉफी पी,
1: हाँ?
0: और उसको मोबाइल से पेमेंट कर दिया।
1: बहुत बढ़िया।
0: लेकिन दादू, आरबीआई तो 1935

0: में बना था ना, तब तो मोबाइल ही नहीं था।
1: अरे यही तो भारत की आर्थिक यात्रा है बिटिया। 1935 में जब RBI शुरू हुआ था तब दुनिया अलग थी। आज हम डिजिटल पेमेंट्स के युग में हैं। लोग मोबाइल से पैसे भेजते हैं, QR कोड स्कैन करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं और कुछ ही सेकंड में भुगतान हो जाता है।
0: वो तो मुझे समझ में आया दादू, लेकिन इसमें RBI की क्या भूमिका है?
1: बिटिया, RBI देश की भुगतान और निपटान प्रणालियों के नियमन और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि पेमेंट सिस्टम्स सुरक्षित, कुशल और भरोसेमंद तरीके से काम करें।
0: यानी मेरे मोबाइल पर सिर्फ पेमेंट सक्सेसफुल लिखा दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे पूरी वित्तीय व्यवस्था काम कर रही होती है।
1: बिल्कुल, तुम्हें कुछ सेकंड दिखाई देते हैं, लेकिन उस छोटे से डिजिटल पेमेंट के पीछे बैंक, पेमेंट सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की पूरी दुनिया काम कर रही होती है।
0: दादू, मैं तो अब तक सोचती थी कि RBI का काम सिर्फ बड़े बड़े बैंक और सरकार से ही जुड़ा होता होगा।
1: नहीं बिटिया, RBI का काम आम आदमी के जीवन को भी कई तरीकों से प्रभावित करता है।
0: कैसे?
1: अच्छा, जब तुम बैंक में खाता खोलती हो, जब बैंक से लोन लेती हो, या जब ब्याज दरों में बदलाव होता है, या फिर जब डिजिटल पेमेंट करती हो, जब देश की मुद्रा व्यवस्था की बात करती हो, तो इन सब के पीछे RBI की किसी न किसी भूमिका को समझा जा सकता है।
0: और अगर बैंकिंग व्यवस्था में भरोसा और स्थिरता ना हो
1: तो पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है बिटिया। इसीलिए केंद्रीय बैंक की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण होती है।
0: ओ, अब मैं समझी दादू कि आपने RBI को अर्थव्यवस्था का प्रहरी क्यों कहा था।
1: अच्छा, तो बताओ क्यों कहा जाता है?
0: वो इसलिए क्योंकि RBI मुद्रा व्यवस्था पर नजर रखता है, बैंकों के लिए केंद्रीय भूमिका निभाता है, सरकार का बैंकर है, मौद्रिक नीति संभालता है, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है और डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था को भी सुरक्षित और व्यवस्थित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: बहुत खूब, लेकिन एक बात और, RBI का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में विश्वास और स्थिरता बनाए रखने में योगदान देना भी है, क्योंकि किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ पैसा नहीं, भरोसा है।
0: भरोसा?
1: हाँ, लोगों को भरोसा होना चाहिए कि उनका बैंकिंग सिस्टम काम करेगा, भुगतान प्रणाली काम करेगी, मुद्रा व्यवस्था व्यवस्थित रहेगी और आर्थिक नीतियाँ देश की स्थिरता को ध्यान में रखकर बनाई जाएंगी। बिटिया, इसी भरोसे से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है।
0: दादू, ये बात तो एकदम सही कही आपने।
1: अच्छा, कितनी मजे की बात है ना रुचि बेटा, 1935 में शुरू हुई एक संस्था की कहानी हमें भारत की आर्थिक यात्रा के कई पड़ावों से होकर यहाँ ले आई। कोलकाता से मुंबई तक नोटों से डिजिटल भुगतान तक, बैंकों से मौद्रिक नीति तक और देश की मुद्रा व्यवस्था से वैश्विक वित्तीय दुनिया तक।
0: बिल्कुल सही कहा दादा जी आपने। अच्छा दादू, एक बात और बताइए ना, अगर RBI 1935 में बना था तो फिर इसकी कहानी आगे कैसे बढ़ी?
1: बिटिया, संस्थाएं भी समय के साथ बदलती हैं। देश बदला, अर्थव्यवस्था बदली, तकनीक बदली, बैंकिंग बदली और RBI की जिम्मेदारियां भी समय के साथ विकसित होती गईं। आज का RBI केवल कागजी नोटों की दुनिया का संस्थान नहीं है, ये आधुनिक भारत की बैंकिंग, मौद्रिक व्यवस्था, वित्तीय स्थिरता, विदेशी मुद्रा और भुगतान प्रणाली से जुड़ी एक महत्वपूर्ण संस्था है।
0: सो तो है दादू। वैसे एक बात बताइए, आज की इस पूरी कहानी को मैं एक वाक्य में कैसे याद रखूं भला?
1: अरे बहुत आसान है, जब भी RBI का नाम सुनो, याद करो कि भारत की मुद्रा और मौद्रिक व्यवस्था का केंद्रीय प्रहरी है।
0: अब मुझे लग रहा है कि RBI सिर्फ बैंकिंग व्यवस्था का कोई दूर बैठा हुआ संस्थान नहीं है। इसका असर तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तक भी आता है।
1: बिल्कुल बिटिया, और यही बात समझना सबसे जरूरी है। लेकिन अब मैं तुम्हें RBI की एक ऐसी भूमिका के बारे में बताता हूँ जिसके बारे में आमतौर पर कम बात होती है।
0: कैसी भूमिका दादू?
1: फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी वित्तीय स्थिरता।
0: वित्तीय स्थिरता, इसका क्या मतलब हुआ?
1: इसका मतलब है कि देश का फाइनेंशियल सिस्टम इतना मजबूत और भरोसेमंद हो कि बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और पेमेंट सिस्टम्स सामान्य परिस्थितियों के साथ साथ मुश्किल परिस्थितियों में भी अपना काम करते रहें।
0: यानी अगर फाइनेंशियल सिस्टम में अगर कोई परेशानी आ जाए तो उसका असर सिर्फ बैंकों तक नहीं रहेगा।
1: हम बिल्कुल नहीं, सोचो अगर बैंकिंग सिस्टम में लोगों का भरोसा कमजोर हो जाए, पेमेंट्स रुकने लगे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बड़ी समस्या पैदा हो जाए तो उसका असर बिजनेसेस, जॉब्स, इन्वेस्टमेंट्स और आम लोगों की जिंदगी तक पहुंच सकता है। इसलिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिर्फ इकोनॉमिस्ट की चिंता नहीं है बेटी, ये पूरी इकोनॉमी के लिए जरूरी है।
0: वो सब तो ठीक है दादू,
2: हाँ।
0: लेकिन आरबीआई इसमें क्या करता है?
1: अरे आरबीआई बैंकिंग सेक्टर की निगरानी और रेगुलेशन करता है, बताया ना प्रहरी, बैंकों की फाइनेंशियल हेल्थ, रिस्क मैनेजमेंट और उनके कामकाज से जुड़े नियमों पर नजर रखना इसी व्यापक व्यवस्था का हिस्सा है।
0: यानी आरबीआई सिर्फ ये नहीं देखता कि बैंक पैसा दे रहा है या नहीं, बल्कि ये भी देखता है कि बैंक खुद कितना सुरक्षित तरीके से काम कर रहा है।
1: हाँ बिल्कुल सही
0: दादू, आजकल तो बैंकिंग पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर होती जा रही है, क्या इससे आरबीआई के सामने नई चुनौतियाँ भी आती होंगी?
1: बिटिया आज किसी बैंक की शाखा सिर्फ उसकी बिल्डिंग नहीं है, उसके पीछे विशाल कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा सेंटर्स, मोबाइल एप्लीकेशन, पेमेंट प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर काम करता है। अच्छा एक ग्राहक अपने मोबाइल पर कुछ सेकंड में पेमेंट कर देता है, लेकिन उस पेमेंट के पीछे कई तकनीकी प्रणालियां एक साथ काम कर रही होती हैं।
0: वो तो है, लेकिन अगर इन सिस्टम्स में कोई गड़बड़ी हो जाए फिर?
1: तो फाइनेंशियल सिस्टम पर असर पड़ सकता है, इसलिए टेक्नोलॉजी रिस्क और साइबर सिक्योरिटी आज बैंकिंग रेगुलेशन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं।
0: यानी आने वाले समय में आरबीआई को इकोनॉमिक्स के साथ टेक्नोलॉजी भी समझनी पड़ेगी।
1: हाँ बिल्कुल, और यही वजह है कि आधुनिक सेंट्रल बैंकिंग पहले की तुलना में कहीं ज्यादा बहुविषयक हो गई है।
0: दादू अगर कोई स्टूडेंट्स आरबीआई और फाइनेंशियल सेक्टर को समझना चाहता है तो उसे किन सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए?
1: रुचि बेटा सबसे पहले ये समझो कि फाइनेंस सिर्फ कॉमर्स तक सीमित नहीं है, अगर किसी स्टूडेंट को इकोनॉमिक्स पसंद है तो मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और फाइनेंशियल मार्केट्स को समझने का रास्ता खुलता है।
0: और दादू अगर किसी को मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स अच्छे लगते हो
1: तो इकोनॉमिक मॉडलिंग, डेटा एनालिसिस और रिसर्च जैसे क्षेत्रों में अवसर है। अगर कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी में रुचि है ना बेटा, तो डिजिटल बैंकिंग, पेमेंट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, डेटा सिस्टम्स और फिनटेक जैसे क्षेत्र तेजी से महत्वपूर्ण हो रहे हैं।
0: वैसे दादू मेरी एक क्लासमेट तो लॉ पढ़ना चाहती है, तो क्या वो भी इस क्षेत्र में आ सकती है?
1: हाँ बिल्कुल आ सकती है, बैंकिंग रेगुलेशन, फाइनेंशियल लॉज, कंप्लाइंसेस, ये सब लॉ से जुड़े क्षेत्र हैं। और अगर किसी को पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस में रुचि है, जैसे तुम्हारा नाम रुचि है, तो मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल पॉलिसी से जुड़े विषयों को समझा जा सकता है।
0: दादो यानी स्टूडेंट्स को सिर्फ ये सोचकर करियर चूज नहीं करना चाहिए कि मुझे बैंक में नौकरी करनी है।
1: हाँ बिल्कुल, उसे पहले ये देखना चाहिए कि उसकी रुचि किस क्षेत्र में है, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, डेटा, टेक्नोलॉजी, लॉ या पब्लिक पॉलिसी, और फिर उसी दिशा में अपनी पढ़ाई और स्किल्स को मजबूत करना चाहिए।
0: दादू
1: हुँ?
0: एक आखिरी सवाल और।
1: अरे कितने सवाल पूछती हो तुम?
0: बस एक आखिरी दादू, आरबीआई इतना बड़ा संस्थान है लेकिन आम आदमी इसके बारे में सबसे ज्यादा कब सोचता है?
1: अक्सर तब जब कोई आर्थिक बदलाव उसकी जिंदगी को सीधे प्रभावित करता है, लोन की इंटरेस्ट रेट बदले, महंगाई बढ़े या बैंकिंग सिस्टम में कोई बड़ा बदलाव हो, या फिर डिजिटल पेमेंट से जुड़ा कोई नया नियम आए, या विदेशी मुद्रा बाजार में बड़ी हलचल हो, तब लोगों का ध्यान आरबीआई की तरफ जाता है। लेकिन वास्तव में आरबीआई की भूमिका लगातार चलती रहती है, हमें चाहे उसका एहसास हो या नहीं।
0: दादू यानी जैसे हमारे घर में बिजली की पूरी वायरिंग हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हर कमरे में उसका असर होता है।
1: हाँ बिल्कुल बिटिया सही समझे, 1935 में शुरू हुई आरबीआई की इस यात्रा ने स्वतंत्र भारत की बदलती आर्थिक जरूरतों के साथ कई नए आयाम देखे और समय के साथ लगातार विकसित होती रही है।
0: ये तो सही कहा दादू आपने, किसी संस्था की कहानी सिर्फ उसकी स्थापना की तारीख जान लेना नहीं होती है, बल्कि उसकी असली कहानी ये जानना है कि उसने देश के विकास में क्या भूमिका निभाई है।
1: हाँ, और यही हमारी इस पूरी श्रृंखला का उद्देश्य है, भारत के उन संस्थानों को समझना जिनके काम का असर कभी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई देता है और कभी बिना दिखाई दिए पूरी व्यवस्था को मजबूत करता रहता है।
0: वैसे दादू,
1: हाँ?
0: अगली कहानी क्या होने वाली है?
1: अरे भाई, अभी एक तो खत्म नहीं हुई। चलो ठीक है, बताते हैं भाई। अगली कहानी होगी 1955 की, और इस बार कहानी सिर्फ बैंक की नहीं होगी बल्कि बदलते हुए भारत की बैंकिंग जरूरतों की होगी।
0: चलिए दादू, अब आज के लिए यही रोकते हैं। आपकी चाय का टाइम जो हो गया है।
1: हाँ भाई, चलो अब मुझे गर्मा गर्म एक कड़क चाय पिलाओ।
0: बिल्कुल दादू। श्रोताओं, याद रखिए, देश की आर्थिक मजबूती केवल उसके बाजारों और उद्योगों से नहीं बनती, उसे मजबूत बनाते हैं वे संस्थान जो बचत, निवेश, बैंकिंग, भुगतान और वित्तीय व्यवस्था को दिशा देते हैं। और ऐसे ही संस्थानों की कहानी भारत के संस्थान में आगे भी जारी रहेगी। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने, समन्वय सहयोग था सतीश बाथम का। आपके साथ मैं थी भगवती सक्सेना,
1: और मैं संदीप शर्मा।
0: लेखन था स्वाति गिरी का। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: देश का चैनल देश के लिए।

0: साहस की बुलंद शुरुआत से लेकर आसमान की असीम ऊंचाइयों तक 8 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस।
1: वर्ष 1947-48, 1965 और 1971 के ऐतिहासिक युद्धों से लेकर ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना ने हर पल कर दिखाया है अदम्य पराक्रम, अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोच्च बलिदान।
0: तो मध्य प्रदेश के जाबाज युवाओं, क्या आप तैयार हैं? बादलों को चीरकर देश का मान बढ़ाने के लिए तो बनिए अग्निवीर वायु, हासिल कीजिए वो मुकाम जो जिंदगी भर की पहचान बन जाए और गर्व से कीजिए भारत माँ की सेवा।
1: भर्ती और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए
0: 15 एयरमैन चयन केंद्र के इंस्टाग्राम पेज 15ASC_भोपाल और आधिकारिक वेबसाइट IAFRecruitment.edcil.co.in पर विजिट करें।
1: नभास प्रशम दीप्तम,
0: जय हिंद।
2: भारतीय चांदी से बना लंदन, बंगाल की मलमल और सेंट पॉल कैथेड्रल। सितंबर 1666 में पुडिंग लेन की एक बेकरी से उठी एक चिंगारी ने ऐसी भयावह आग का रूप धारण किया जिसने लंदन को राख के ढेर में बदल दिया। जब धुआं छटा तो 13,000 घर और 89 चर्च गायब हो चुके थे, जिससे एक ऐसा वित्तीय घाटा हुआ जिसका अनुमान आज के समय में 37 पाउंड बिलियन लगाया जाता है। राजधानी को पुनर्जीवित करने के लिए ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते मुनाफे का सहारा लिया। जब शहर खंडहर में तब्दील था तब कंपनी लंदन के कुलीन फैशन सर्कलों में सफेद सोना, बंगाल की उत्कृष्ट मलमल जिसे बुनी हुई हवा कहा जाता था, इसका व्यापार कर रही थी। सैद्धांतिक रूप से इन भारतीय वस्त्रों और मसालों से होने वाली आय लंदन को 4 बार फिर से खड़ा कर सकती थी। इस विशाल पुनर्निर्माण के लिए अधिकांश धन 160 साल के कोयला कर से आया जिसने लंदन शहर को अपने वैश्विक व्यापार मुनाफे का उपयोग करके अपने कर्ज चुकाने की अनुमति दी। इस पुनरुत्थान की स्थापत्य पहचान क्रिस्टोफर व्रेन द्वारा 52 चर्चों का पुनर्निर्माण था जिसमें राजसी सेंट पॉल कैथेड्रल भी शामिल था। ये बहाली प्रभावी रूप से भारतीय कपड़ा उद्योग से निकाले गए धन की देन थी। हर बार जब आप उन ऐतिहासिक चर्चों के शिखरों को देखते हैं तो आप वास्तव में बंगाल, मैसूर और गुजरात के उन भूले बिसरे बुनकरों की मेहनत को देख रहे होते हैं। आधुनिक लंदन के पत्थर भारतीय चांदी से जुड़े हुए थे जो शहर के अस्तित्व को पूर्व के प्रेत और आत्माओं का एक गहरा वसीयतनामा बनाते हैं।

स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन, लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

0: आजाद हिंद कार्यक्रम के श्रोताओं, इतिहास का नमस्कार आप सभी को,
1: और साथ ही तारीख का भी अभिवादन स्वीकार कीजिए श्रोताओं। इतिहास
0: जी,
1: जैसा कि हमारे श्रोता जानते हैं कि हम उनके लिए लेकर आते हैं हर दिन एक क्रांतिकारी वीर की गाथा, तो बताएं आज किसकी बारी है।
0: तारीख आज हम चर्चा करेंगे लोकनायक जयप्रकाश नारायण की। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा से लगे सीता बदियरा गांव में 11 अक्टूबर 1902 को विजयादशमी के दिन हुआ। इनके पिता का नाम हरसुदयाल और माता का नाम फूल रानी था। जयप्रकाश जी को अपनी दादी से बड़ा लगाव था, इसलिए वो पढ़ाई के लिए गांव से बाहर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन गांव में हाई स्कूल न होने की वजह से उन्हें पढ़ने के लिए पटना जाना पड़ा।
1: स्कूल में पढ़ने के दौरान जयप्रकाश नारायण को मैथिली शरण गुप्त और भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे महान कवियों की रचनाओं को पढ़ने का अवसर मिला, और साथ ही उन्होंने भगवद गीता का भी अध्ययन किया।
0: जयप्रकाश नारायण का विवाह बिहार के मशहूर गांधीवादी ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री प्रभावती के साथ अक्टूबर 1920 में हुआ। शादी के बाद प्रभावती गांधी आश्रम में रहने चली गईं और जयप्रकाश नारायण ने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की।
1: जयप्रकाश नारायण महान क्रांतिकारी मौलाना अबुल कलाम आजाद के संपर्क में उन दिनों आए जब वे गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे रोलेट एक्ट में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। जयप्रकाश भी मौलाना के व्यक्तित्व और उनकी विचारधारा से इतने प्रभावित हुए कि अपनी कॉलेज की पढ़ाई को बीच में छोड़कर वे बिहार विद्यापीठ की गतिविधियों में शामिल हो गए।
0: विद्यापीठ में कुछ दिनों रहने के बाद जयप्रकाश नारायण अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए उन्होंने एक फैक्ट्री में काम किया, गैरेज में मैकेनिक रहे और विद्यार्थियों को ट्यूशन भी पढ़ाया। इससे वो अपनी पढ़ाई का खर्च भी चलाते थे।
1: जब कैलिफोर्निया के कॉलेज की फीस ज्यादा हो गई तो जयप्रकाश नारायण लोवा स्टेट आ गए, जहां उनकी मुलाकात प्रोफेसर एडवर्ड रॉस जैसे प्रसिद्ध समाजशास्त्री से हुई। उनके मार्गदर्शन में जयप्रकाश जी ने समाजशास्त्र की पढ़ाई की। माता जी की बीमारी की वजह से जयप्रकाश जी को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर 1929 में भारत वापस आना पड़ा।
0: जयप्रकाश जी की सोच में गहराई और समाज के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा उनके विचारों में नजर आता था। उनके लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं था कि देश राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो जाए। देश की आजादी से उनका तात्पर्य था देश की जनता को भूख, गरीबी और चिंता से मुक्त कराना।

0: जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थी। जयप्रकाश जी उनके विचारों का सम्मान करते थे। 1929 में जयप्रकाश नारायण और प्रभावती ने लाहौर का कांग्रेस सत्र छोड़ दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर वे दोबारा कांग्रेस में आए और काम करना शुरू कर दिया।
1: 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। इसमें कई कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। जयप्रकाश जी ने कांग्रेस की गतिविधियों को निरंतरता देने के आशय से मुंबई में कांग्रेस कार्यालय की स्थापना की। उन्होंने पूरे देश की यात्रा की। दल से संबंधित लोगों के लिए देश के विभिन्न जगहों पर उन्होंने गुप्त सभाओं का संचालन भी किया। बनारस में कांग्रेस की गुप्त सभा आयोजित करने के बाद जब वे मद्रास गए तो उन्हें वहां गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन अखबार में ये खबर छपी कि कांग्रेस के मस्तिष्क जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया है।
0: नासिक की जेल में रहने के दौरान जयप्रकाश जी की मुलाकात उस समय के कई नेताओं से हुई, जिनमें राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता और अच्युत पटवर्धन जैसे महान क्रांतिकारी भी थे। ये सभी देश की आजादी की जंग में लगे हुए थे। जयप्रकाश और उनके मित्रों ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की शुरुआत की। इसके सचिव बने खुद जयप्रकाश नारायण। कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद को बनाने पर जयप्रकाश जी ने किताब लिखी वाई सोशलिज्म। इसमें उन्होंने विशेष रूप से लिखा कि भारत में समाजवाद क्यों जरूरी है। इस पुस्तक की प्रशंसा पूरे देश में हुई।
1: 1939 में जयप्रकाश नारायण ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ लोक आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने टाटा स्टील कंपनी में हड़ताल कराई ताकि अंग्रेजों तक इस्पात ना पहुंच पाए। उन्हें गिरफ्तार किया गया और 9 माह की सजा दी गई। किराया और राजस्व रोकने के खिलाफ उन्होंने कई अभियान भी चलाए। 1940 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्हें फिर गिरफ्तार किया गया और उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़वाने पर 10,000 रुपयों का इनाम भी रखा।
0: उन्होंने नेपाल जाकर आजाद दस्ते का संगठन किया। नेपाल में जब उन्हें लगा कि वे गिरफ्तार किए जा सकते हैं तो वे राम मनोहर लोहिया के साथ बिहार चले गए। खान अब्दुल गफ्फार खान से मिलने के लिए जब वे रावलपिंडी जा रहे थे तो उन्हें ट्रेन में गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग 16 माह जेल में रहकर 12 अप्रैल 1946 को वे रिहा हुए।

0: कांग्रेस कमेटी ने भारत के विभाजन की बात को मंजूर नहीं किया। आखिर में स्वतंत्रता सेनानियों के भरसक प्रयत्नों और अमर शहीदों के बलिदान से भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। सन 1952 के चुनाव में समाजवादी दल की हार हुई। नेहरू जी ने जयप्रकाश जी को कैबिनेट में शामिल होने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने मंजूर नहीं किया। सन 1954 में 19 अप्रैल को गया में उन्होंने एक सभा का आयोजन किया, जिसमें जयप्रकाश नारायण ने औपचारिक घोषणा की कि वे अपना बाकी जीवन विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन को दान कर रहे हैं।
1: जयप्रकाश ने हजारीबाग में एक आश्रम बनवाया, जो एक गरीब और पिछड़ा हुआ गांव था। उन्होंने गांवों की प्रगति के लिए गांधी जी की विचारधारा को अपनाया और आधुनिक तकनीकों से गांवों के विकास का हर संभव प्रयास किया।
0: जयप्रकाश नारायण का मानना था कि प्रत्येक गांव को इतना सक्षम होना चाहिए कि वहां के लोग मिलकर स्वतंत्रता और राजनीतिक विचारों में परिवर्तन ला सके। जून 1970 में मुजफ्फरपुर और बिहार में उन्हें जान से मारने का आदेश दिया गया। उस इलाके में नक्सलवादियों का आधिपत्य था, जिसमें अधिकतर युवा कार्यकर्ता थे। जयप्रकाश जी ने उनके प्रति प्रेम और सहानुभूति को प्रदर्शित किया, क्योंकि वो जानते थे कि अधिक गरीबी और बेरोजगारी की वजह से युवा इस दिशा की ओर जा रहे हैं। जयप्रकाश खुद उन प्रमुख व्यक्तियों में एक हैं जिन्होंने चंबल घाटी में बसने वाले डकैतों को आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित किया। 15 अप्रैल 1973 में प्रभावती की मृत्यु हो गई। उसके बाद जयप्रकाश जी अकेले हो गए। 8 अप्रैल 1973 को 72 वर्ष की आयु में उन्होंने पटना में लाठीचार्ज का मौन जुलूस निकाला।
1: जयप्रकाश नारायण अब बीमार रहने लगे थे और बहुत कमजोर भी हो गए थे। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1979 को उनकी मृत्यु हो गई। लोगों ने उन्हें लोकनायक और लोगों के नेता के नाम से याद किया। विनोबा भावे ने उनकी मृत्यु के बाद कहा था,
0: जयप्रकाश खुद को लोक सेवक या लोगों के लिए काम करने वाला मानते थे। उन्होंने देश के लिए अथक प्रयास किए और अपने आखिरी समय तक जन कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। तो तारीख, ये थी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की गौरव गाथा। जयप्रकाश नारायण न सिर्फ राजनीति से संबंधित थे, बल्कि उन्होंने समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा योगदान दिया। ऐसे महान सपूत को हम नमन करते हैं।

0: एकता फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय। अब हमें इजाजत दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों रणबांकुरों जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: साहस की बुलंद शुरुआत से लेकर आसमान की असीम ऊंचाइयों तक 8 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस।
2: वर्ष 1947-48, 1965 और 1971 के ऐतिहासिक युद्धों से लेकर ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना ने हर पल कर दिखाया है अदम्य पराक्रम, अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोच्च बलिदान।
1: तो मध्य प्रदेश के जाबाज युवाओं, क्या आप तैयार हैं? बादलों को चीरकर देश का मान बढ़ाने के लिए तो बनिए अग्निवीर वायु, हासिल कीजिए वो मुकाम जो जिंदगी भर की पहचान बन जाए और गर्व से कीजिए भारत माँ की सेवा।
2: भर्ती और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए
1: 15 एयरमैन चयन केंद्र के इंस्टाग्राम पेज 15ASC_भोपाल और आधिकारिक वेबसाइट IAFRecruitment.edcil.co.in पर विजिट करें।
2: नभस प्रशम दीप्तम,
3: जय हिंद।
4: रेशम का रहस्य, इतालवी एकाधिकार को चुनौती देने की एक नाकाम कोशिश। 18वीं शताब्दी के उच्च स्तरीय फैशन की दुनिया में एक वस्तु में ऐसा रहस्य छिपा था जिसने लंदन के सबसे बड़े व्यापारियों को भी चकित कर दिया था। वह था थ्रोन सिल्क। जहां कच्चा रेशम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, वहीं ऑर्गेन्सिन विलासी कपड़ों के लिए आवश्यक मुड़ा हुआ ताना और धागा बनाने का रहस्य पूरी तरह से इटली के एकाधिकार में था। इटालियन अपनी जल शक्ति से चलने वाली मिलों की सुरक्षा बड़ी कड़ाई से करते थे, जिससे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस पकड़ को तोड़ने के लिए एशिया की ओर देखने पर मजबूर होना पड़ा। कंपनी की योजना बेहद आधुनिक और साहसी थी। वे चीन और बंगाल से कच्चा रेशम आयात करेंगे और उसे इतालवी मानकों के अनुरूप तैयार करने का प्रयास करेंगे। चीन के कैंटीन में सुपर कार्गो को सख्त निर्देश दिए गए थे कि रेशम को एक विशिष्ट सूक्ष्मता के साथ रीलों पर लपेटा जाए, ताकि कई एकल धागों को मिलाकर एक ऐसा धागा बनाया जा सके जो इतालवी ट्विस्ट की नकल कर सके। लेकिन इस रहस्य की असली जड़ तकनीकी बदलाव में छिपी थी। 1755 में कंपनी ने बंगाल के उत्पादन में क्रांति लाने के लिए कासिम बाजार में यूरोपीय मशीनें, जिनमें विशेष भट्टियां, तांबे के बेसिन और रीलें शामिल थीं, भेजी। हालांकि इस प्रयोग को एक अप्रत्याशित बाधा का सामना करना पड़ा। स्थानीय कारीगरों ने यूरोपीय पद्धति को पूरी तरह से विदेशी और शारीरिक रूप से थका देने वाला पाया, क्योंकि इसमें पारंपरिक भारतीय तकनीकों की तुलना में कहीं अधिक श्रम और ध्यान की आवश्यकता थी। यद्यपि मशीन से काता गया धागा असाधारण रूप से एक समान था, लेकिन इसका उत्पादन करना काफी महंगा साबित हुआ। तकनीकों के इस टकराव ने यह साबित कर दिया कि बेहतरीन रेशम का रहस्य केवल मशीनों में नहीं, बल्कि करघे के पीछे बैठे लोगों की शारीरिक निपुणता और उनकी ऐतिहासिक परंपराओं में भी छिपा था।

इसका निर्देशन किया कुलदीप कुणाल ने। आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए रविंद्र भवन सभागार में और सुनते हैं इस नाटक के संपादित अंश।

0: नाविल लिखी है हमने।
1: उपन्यास है?
0: उपन्यास ना है, नाविल है। मोटी भाई किताब कहानी।
1: ठीक है भाई, नाविल है तो नाविल है, करना क्या इसका?
0: तुम तो पढ़े लिखे हो, पढ़ के बता देते कैसी लिखी।
1: अच्छा, पढ़ के बताना है। अरे अब इसको भाई दिन भर ऑफिस में लिए लिए कहां घूमूंगा मैं। एक काम कर, तू इसको अभी अपने पास रख, जब मैं शाम को लौटूंगा तब मैं तेरे से ले लूंगा। ठीक है
0: सांझ को?
1: हाँ सांझ को।
0: तो तुम तो जानता हूँ कहाँ रहता है।
1: तू टेंट हाउस में रहता है ना?
0: हाँ टेंट हाउस में, गोदाम में।
1: अच्छा गोदाम में रहता है।
0: हाँ
1: ठीक है, वहीं से ले लूंगा। ठीक है
0: कहता है।
1: हाँ चलो ध्यान रखो।
0: तुम हमारे संग में क्या करोगे? तुम जाओ खेलो।

गाने गाता है।

0: साहस की बुलंद शुरुआत से लेकर आसमान की असीम ऊंचाइयों तक 8 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस।
1: वर्ष 1947-48, 1965 और 1971 के ऐतिहासिक युद्धों से लेकर ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना ने हर पल कर दिखाया है अदम्य पराक्रम, अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोच्च बलिदान।
0: तो मध्य प्रदेश के जाबाज युवाओं, क्या आप तैयार हैं? बादलों को चीरकर देश का मान बढ़ाने के लिए तो बनिए अग्निवीर वायु, हासिल कीजिए वो मुकाम जो जिंदगी भर की पहचान बन जाए और गर्व से कीजिए भारत माँ की सेवा।
1: भर्ती और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए
0: 15 एयरमैन चयन केंद्र के इंस्टाग्राम पेज 15ASC_भोपाल और आधिकारिक वेबसाइट IAFRecruitment.edcil.co.in पर विजिट करें।
1: नभास प्रशम दीप्तम,
0: जय हिंद।
2: यूनियन नामक जुड़वा जहाज एक कॉरपोरेट गृह युद्ध की कहानी। क्या आप जानते कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत में समुद्र की लहरों पर एक अजीब संयोग देखने को मिला था? दो कट्टर प्रतिद्वंदी कंपनियों के पास दो बिल्कुल एक जैसे जहाज थे और दोनों का नाम था यूनियन। ये जहाज बनाने वालों की कोई गलती या कल्पना की कमी नहीं थी, बल्कि ये जुड़वा जहाज अंग्रेजी मसाला व्यापार के अस्तित्व को बचाने के लिए की गई एक हताशा का प्रतिनिधित्व करते थे। इस भ्रम को समझने के लिए आपको उस कॉरपोरेट गृह युद्ध को देखना होगा जिसने लंदन शहर को दो हिस्सों में बांट दिया था। लगभग एक सदी तक पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्ण एकाधिकार का आनंद लिया था, लेकिन 1690 के दशक तक उन्हें उन राजनेताओं और व्यापारियों ने घेर लिया जो उनके विशेष अधिकारों को एक असंवैधानिक अवशेष मानते थे। क्या आप जानते हैं कि ये प्रतिद्वंदिता कितनी तीव्र थी? दोनों कंपनियों ने केवल काली मिर्च के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं की, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ तोड़फोड़ का युद्ध छेड़ दिया। सूरत में नई कंपनी की कौंसिल सर निकोलस वेट ने मुगल अधिकारियों को रिश्वत देकर पुरानी कंपनी के अध्यक्ष सर जॉन गियर को 9 साल तक जेल के एक गंदे छेद में बंद रखा। हिंद महासागर के पार दोनों फर्मों के एजेंटों ने स्थानीय राजाओं के सामने एक दूसरे को चोर और समुद्री डाकू घोषित कर दिया, जबकि उनके कर्मचारी एक दूसरे को कालकोठरी में फेंक रहे थे। लंदन में बैठे निदेशकों ने जब अपने बैंक खातों को देखा तो वे कांप गए। इस आंतरिक युद्ध की लागत अनुमान से अधिक थी। इसके अलावा फ्रांस के साथ एक नया युद्ध वॉर ऑफ द स्पेनिश सक्सेशन करीब आ रहा था और ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी थी कि रॉयल नेवी दो विभाजित और झगड़ालू बेड़ों की सुरक्षा का खर्च नहीं उठा सकती। दोनों कंपनियों को एहसास होने लगा कि अगर वे विलय नहीं करती हैं तो दोनों दिवालिया हो जाएंगी। अतीत में उन्होंने स्पीड वेल या ट्रेड्स इंक्रीज जैसे आशावादी नाम चुने थे। अब दोनों ने यूनियन नाम से एक जहाज का निर्माण कराया जो इस बात का संकेत था कि विलय ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। अप्रैल 1702 में अंततः इंस्ट्रूमेंट ऑफ यूनियन पर हस्ताक्षर किए गए, लेकिन यहां सबसे दिलचस्प हिस्सा है। क्या आप जानते हैं कि यूनियन ने वास्तव में भ्रम को समाप्त नहीं किया? 7 साल की संक्रमण अवधि के लिए तकनीकी रूप से एक साथ 3 कंपनियां काम कर रही थी, पुरानी नई और नई बनी यूनाइटेड कंपनी, जो अपने अलग अलग ऋणों को निपटाने की कोशिश कर रही थी और एक ही जहाज साझा कर रही थी। बंगाल में इसने पूर्ण भ्रम की स्थिति पैदा कर दी, जहां दो प्रतिद्वंदी अध्यक्ष हर हफ्ते बारी बारी से गवर्नर की कुर्सी पर बैठते थे। दो जहाज जिनका नाम यूनियन था उस समय के प्रमाण हैं जब व्यापारिक लालच ने एशिया में ब्रिटिश उपस्थिति को लगभग नष्ट कर दिया था। केवल जहाज के पतवार पर लिखा वह हताश नाम उस यूनाइटेड कंपनी की ओर इशारा कर रहा था जो आगे चलकर एक विशाल साम्राज्य पर राज करने वाली थी।

0: भारतीय चांदी से बना लंदन बंगाल की मलमल और सेंट पॉल कैथेड्रल। सितंबर 1666 में पुडिंग लेन की एक बेकरी से उठी एक चिंगारी ने ऐसी भयावह आग का रूप धारण किया जिसने लंदन को राख के ढेर में बदल दिया। जब धुआं छटा तो 13,000 घर और 89 चर्च गायब हो चुके थे, जिससे एक ऐसा वित्तीय घाटा हुआ जिसका अनुमान आज के समय में 37 बिलियन लगाया जाता है। राजधानी को पुनर्जीवित करने के लिए ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते मुनाफे का सहारा लिया। जब शहर खंडहर में तब्दील था तब कंपनी लंदन के कुलीन फैशन सर्कलों में सफेद सोना, बंगाल की उत्कृष्ट मलमल जिसे बुनी हुई हवा कहा जाता था, इसका व्यापार कर रही थी। सैद्धांतिक रूप से इन भारतीय वस्त्रों और मसालों से होने वाली आय लंदन को 4 बार फिर से खड़ा कर सकती थी। इस विशाल पुनर्निर्माण के लिए अधिकांश धन 160 साल के कोयला कर से आया, जिसने लंदन शहर को अपने वैश्विक व्यापार मुनाफे का उपयोग करके अपने कर्ज चुकाने की अनुमति दी। इस पुनरुत्थान की स्थापत्य पहचान क्रिस्टोफर व्रेन द्वारा 52 चर्चों का पुनर्निर्माण था, जिसमें राजसी सेंट पॉल कैथेड्रल भी शामिल था। ये बहाली प्रभावी रूप से भारतीय कपड़ा उद्योग से निकाले गए धन की देन थी। हर बार जब आप उन ऐतिहासिक चर्चों के शिखरों को देखते हैं तो आप वास्तव में बंगाल, मैसूर और गुजरात के उन भूले बिसरे बुनकरों की मेहनत को देख रहे होते हैं। आधुनिक लंदन के पत्थर भारतीय चांदी से जुड़े हुए थे, जो शहर के अस्तित्व को पूर्व के प्रेत और आत्माओं का एक गहरा वसीयतनामा बनाते हैं।
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी प्यार।

0: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश। आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 मेगाहर्ट्ज, रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: भारतीय नारी ने चिरकाल से जिस आदर्श पर चलने का प्रयास किया है, स्वामी विवेकानंद ने कई बार बड़ी उद्दीप्त भाषा में उसके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। उन्होंने कहा था कि संन्यास जीवन के समान ही नारी जीवन भी बाह्य अभिव्यक्ति की वस्तु नहीं है, इसका मूल लक्ष्य है आंतरिक जीवन को समृद्ध बनाना। और भारतीय नारी ने त्याग, पवित्रता, धैर्य, दया, संतोष तथा सेवा आदि सद्गुणों का विकास करके राष्ट्र की सांस्कृतिक उदात्तता और आध्यात्मिकता के उच्च स्तर को अक्षुण्य बनाए रखा है।
1: परंतु वर्तमान कालखंड में भारतीय नारी एक दुराहे पर खड़ी है। उसके सामने आज दो विपरीत आदर्श उपस्थित हैं। एक तो परंपरागत आदर्श और दूसरा आधुनिक नागरिक आदर्श। प्रत्येक सामाजिक विकास के पीछे उसका आदर्श ही उसे सक्रिय बनाता है और हर विकास की प्रक्रिया उसके आदर्श को सबल बनाते हैं। यदि भारतीय नारी को अन्य सभी देश की नारियों के साथ आगे बढ़ना है, एक अभिनव समाज गढ़ने का सपना देखना है, तो उसे ये निर्णय लेना होगा कि इनमें से कौन सा आदर्श अपनाया जाए।
0: स्वामी विवेकानंद की विविध उक्तियां इन दो तरह के आदर्शों पर प्रकाश डालती हैं। उन्होंने कहा है,
2: भारतवर्ष में प्राचीन काल में परिवार आदि का ही प्राबल्य रहा है। परिवार यद्यपि समाज की लघुतम इकाई है, परंतु भारतीय जीवन पद्धति में इसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन को गढ़ने वाली सभी मार्गदर्शक एवं नियामक प्रेरणाएं परिवार से ही आती प्रतीत होती हैं। जाति की शुद्धता, विवाह बंधन की पवित्रता, मातृत्व आदि सभी विचारों का लक्ष्य है परिवार के संगठन को सुरक्षित रखना।
1: उन्होंने हमारे विवाह व्रत और मातृत्व के आदर्शों की भूरी भूरी प्रशंसा की एवं अन्य जातियों तथा राष्ट्रों से अनुरोध किया कि इस क्षेत्र में वे भारत का अनुसरण करें।
2: मेरे विचार से पूर्ण ब्रह्मचर्य के आदर्श को प्राप्त करने के लिए किसी भी जाति को मातृत्व के प्रति परम आदर की धारणा दृढ़ करनी चाहिए और वो विवाह को अच्छेद्य एवं पवित्र धर्म संस्कार मानने से ही हो सकती है।
0: वे अमेरिकन स्त्रियों की स्वच्छंदता देखकर अवाक हो गए थे, परंतु उनमें मातृत्व भाव की कमी देखकर उन्होंने अमेरिकन स्त्रियों से कहा था,
2: माता के रूप में अमेरिकन स्त्री कहाँ है? उस तपस्विनी एवं ओजस्विनी माता का जिसने हमें जन्म दिया, तुमने क्या सम्मान किया है? जिसने हमें अपने शरीर में 9 मास तक वहन किया, वो माता क्या है? जो हमारे जीवन के लिए यदि प्राणों की आहुति देने की आवश्यकता हो तो 20 बार भी देने को उद्यत है, वो माता कहाँ है? कहाँ है वो जिसका प्रेम कभी नहीं मरता? मैं कितना ही दुष्ट और अधम क्यों ना हो जाऊं, हे अमेरिका की स्त्रियों, वो माता कहाँ है?
1: उन्हें भारतीय माताओं का दिव्य रूप ज्यादा पसंद था। माता तथा संतान में जो जुड़ाव भारत में दिखता है, वो उन्हें और किसी देश में नहीं मिला। इसलिए उन्होंने अमेरिकन स्त्रियों से कहा था,
2: मेरे माता पिता ने कितने दिनों तक भगवान से प्रार्थना की थी और व्रत रखा था कि उन्हें एक संतान प्राप्त हो। प्रत्येक बच्चे के लिए माता पिता को प्रार्थना करनी चाहिए। अमेरिका की माताओं, इस पर जरा विचार कीजिए। हृदय के अंतःस्थल में जरा सोचिए कि क्या आप सचमुच नारी होना चाहती हैं? इसमें किसी जाति या किसी देश का प्रश्न नहीं। किसी प्रकार के राष्ट्रीय गौरव के मिथ्या गर्व का स्थान नहीं। आप सबसे आज रात मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आप अपनी संतान की प्राप्ति के लिए ईश्वर से हार्दिक प्रार्थना करती हैं? क्या आप माता होने के लिए कृतज्ञ हैं? क्या आप ये समझती हैं कि मातृत्व प्राप्त करके आप पवित्र गौरव को प्राप्त करती हैं? आप अपना हृदय टटोलें और पूछें, यदि नहीं तो आपका विवाह मिथ्या है, आपका नारीत्व मिथ्या है और आपकी शिक्षा एक ढकोसला है। और यदि आपके बच्चे प्रार्थना के बिना जन्म लेते हैं तो वे संसार के लिए अभिशाप सिद्ध होंगे।
0: जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे तो वे वहां की शिक्षित, साहसी और दयालु महिलाओं को पक्षियों के समान स्वाधीन देखकर बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने देखा कि वहां की स्त्रियां बड़े आत्मसम्मान के साथ अपने समुदाय के नागरिक जीवन में हिस्सेदारी निभाती हैं। विस्मय एवं प्रशंसा के साथ उन्होंने अमेरिका से अपने एक मित्र को लिखा था,
2: मैंने जैसी शिष्ट और शिक्षित महिलाएं यहां देखी वैसी कभी कहीं नहीं देखी। हमारे देश में शिक्षित पुरुष हैं, परंतु अमेरिका जैसी महिलाएं मुश्किल से कहीं और दिखाई देंगी। मैंने यहां हजारों महिलाएं देखी जिनके हृदय हिमालय के समान पवित्र और निर्मल हैं। आहा, वे कैसी स्वतंत्र होती हैं, सामाजिक और नागरिक कार्यों का नियंत्रण करती हैं। पाठशालाएं और विद्यालय महिलाओं से भरे हैं और हमारे देश में महिलाओं के लिए राह चलना भी निरापद नहीं। यहां लोग स्त्रियों को इसी रूप में देखते हैं और इसलिए ये लोग इतने सुखी, विद्वान, स्वतंत्र और उद्योगी हैं, और हम लोग स्त्री जाति को नीच, अधम, महाहेय एवं अपवित्र कहते हैं। फल हुआ हम लोग पशु, दास, उद्यमहीन और दरिद्र हो गए।
1: इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वामी जी ने दोनों आदर्शों की ही प्रशंसा की है, परंतु दोनों के प्रति उनकी समालोचना भी उतनी ही कठोर है। भारतीय स्त्रियों की हालत के बारे में उन्होंने एक बार कहा था,
2: अब तक तो उन्होंने केवल असहाय अवस्था में दूसरों पर आश्रित हो जीवन यापन करना और थोड़ी सी भी अनिष्ट या संकट की आशंका होने पर आंसू बहाना ही सीखा है।
0: दूसरी ओर उन्होंने न्यूयॉर्क में अमेरिकन महिलाओं को सुस्पष्ट और कठोरता पूर्वक कहा,
2: मैं बहुत चाहता हूं कि हमारी स्त्रियों में तुम्हारी बौद्धिकता होती, परंतु यदि वो चारित्रिक पवित्रता का मूल्य देकर ही पा सकती हो तो मैं उसे नहीं चाहूंगा। तुमको जो कुछ आता है उसके लिए मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं, लेकिन जो बुरा है उसे गुलाबों से ढककर उसे अच्छा कहने का जो यत्न तुम करती हो उससे मैं नफरत करता हूं। बौद्धिकता ही परम श्रेय नहीं है, नैतिकता और आध्यात्मिकता के लिए हम प्रयत्न करते हैं। हमारी स्त्रियां इतनी विद्वान नहीं, परंतु वे अधिक पवित्र हैं।
1: इस प्रकार अपने देश से बिल्कुल ही अलग आदर्श पर चलने वाली महिलाओं के एक वर्ग के संपर्क में आने के बाद इन दोनों आदर्शों तथा दोनों समाजों में महिलाओं की दशा का भेद उनके सामने उजागर हुआ। कालांतर में जब उनके मन में अपने देश की महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करने की तीव्र आकांक्षा हुई तो स्वाभाविक रूप से ही उनके मन में ये प्रश्न उठा कि भारतीय नारी किस हद तक अपने आदर्शों से समझौता करते अन्य देशीय आदर्शों को अपना सकती है। इस विषय पर स्वामी जी ने हमें जो गहन और सर्वांगीण विचार दिए हैं वे शत वर्षों से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद आज भी प्रासंगिक हैं।
0: उनका मत था कि संशोधित उपयोग दोनों ही आदर्शों के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु निर्माण करेगा। उनके इस विचार को और भी स्पष्ट करते हुए उनकी शिष्या भगिनी निवेदिता ने लिखा है,
3: वे भविष्य की भारतीय नारी को ध्यान की प्राचीन शक्ति से अलग करके कल्पना तक नहीं कर पाते थे। महिलाएं आधुनिक विज्ञान अवश्य सीखें, पर प्राचीन आध्यात्मिकता को त्याग कर नहीं। उन्होंने स्पष्ट रूप से समझा कि वही शिक्षा आदर्श होगी जो संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के प्रत्यक्ष परिवर्तन को कम से कम प्रभावित करेगी। इसके फलस्वरूप प्रत्येक महिला अतीत भारत की समस्त नारियों की महानता को अपने आप में पूर्ण रूपेण मिला लेने में समर्थ होगी। सामाजिक उन्नति के लिए ये अत्यंत आवश्यक है।
1: स्वामी विवेकानंद जब कभी भारतीय नारी तथा उसकी समस्याओं के बारे में बोलते थे, तब वे एक तीसरे आदर्श के बारे में भी सचेत रहते थे, और वो था आध्यात्मिक आदर्श। भारतीय जीवन, चिंतन एवं संस्कृति में आध्यात्मिकता इतनी ओतप्रोत है कि इसे एक अलग आदर्श के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता। अतः हम अपने राष्ट्र के सामाजिक धार्मिक इतिहास में सन्यासी एवं गृही दोनों ही प्रकार के अनेक महान विभूतियों का उल्लेख पाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति की इस महानता को भली भांति पहचाना। उन्होंने कहा था,
2: राष्ट्र की आध्यात्मिकता के इस उच्च स्तर को बनाए रखने में महिलाओं का योगदान पुरुषों के समकक्ष ही रहा है। अति प्राचीन वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक महिलाओं ने अपने ढंग से इस आदर्श को जीवंत रखा है। मैत्रेयी से लेकर श्री शारदा देवी तक ये सांस्कृतिक विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती आई है। ऋषि याज्ञवल्क्य ने संसार त्याग कर वन में जाने से पूर्व अपनी पत्नी मैत्रेयी के जीवन निर्वाह हेतु अपनी संपत्ति का एक अंश उन्हें देने की इच्छा व्यक्त की थी। इस पर मैत्रेयी ने कहा था, जो संपदा मुझे अमरत्व प्रदान नहीं कर सकती, उसे लेकर मैं क्या करूंगी। इस पर याज्ञवल्क्य बड़े प्रसन्न हुए थे और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया था। श्री रामकृष्ण ने जब शारदा देवी से पूछा कि क्या तुम पत्नी के रूप में अपने अधिकार का दावा करने आई हो, तो उन्होंने उत्तर दिया था, तुम्हें संसार में खींचने को नहीं, तुम्हारे धर्म पथ में सहायता करने आई है। उसी समय से वे श्री रामकृष्ण की प्रमुख शिष्या के रूप में स्वीकृत हुई।
0: स्वामी विवेकानंद के सामाजिक कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य था स्त्रियों की उन्नति या स्त्रियों की स्थिति में सुधार, स्त्रियों को शिक्षित करना, समाज में बराबर का स्थान दिलाना, उन्हें समर्थ बनाना। ये विचार हमेशा उनके मन में रहता। उन्होंने निवेदिता से कहा था, कभी मत भूलो, पहले स्त्रियां और फिर बाद में और लोग। इन शब्दों को हमेशा याद रखना।
1: स्वामी जी के व्याख्यान संभाषण हमेशा स्त्री उन्नति विषयक उद्गारों से भरे रहते थे। वे कहा करते थे,
2: भारत में दो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्तियां हैं। पहली तो स्त्रियों का उत्पीड़न या पैरों तले कुचलना, और दूसरा गरीबों का शोषण यानी उनका दमन। सर्वप्रथम स्त्रियों का उद्धार करना होगा, सामान्य जन में इस बाबत जागृति लानी होगी, तभी अपने देश भारत की उन्नति हो सकेगी, उसका भविष्यकाल उज्जवल हो सकेगा। जिस देश में या जिस घर में स्त्रियों की स्थिति ठीक नहीं है, वे कष्ट में हैं, जहां उन्हें सम्मान न मिलता हो, उनका कोई उचित स्थान नहीं है, उस परिवार की या उस देश की उन्नति की आशा ही व्यर्थ है। इसलिए सर्वप्रथम स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाओ, उन्हें शिक्षित करो, उन्हें समर्थ बनाओ, उनमें आत्मविश्वास जगाओ, उन्हें सम्मान दो। इस कार्य के लिए शिक्षित स्त्रियों के एक आदर्श मठ की शुरुआत करनी होगी। सामाजिक उन्नति के लिए ये अत्यंत आवश्यक है।
0: विवेकानंद जब अमेरिका और यूरोप गए, वहां की उच्च शिक्षित स्त्रियों से मिले, उनके ज्ञान, विवेक और विचार शक्ति से वे प्रभावित हुए। वहां स्त्री पुरुष में भेद नहीं था, सभी को अपना मत प्रदर्शन करने का मौका मिलता था। स्त्रियां अकेले कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र थीं। सभी सामाजिक कार्यों में पुरुषों के साथ कंधा मिलाकर भागीदारी करती थीं। ये सब देखकर स्वामी जी अत्यंत प्रसन्न हुए, पर उनका मन हमेशा भारतीय नारी की दयनीय दशा को याद कर रोता रहता था। उनके मन में भारतीय नारी को उनकी सही जगह दिलवाने की इच्छा थी।
1: उन्होंने इसका एकमात्र उपाय सोचा, स्त्री शिक्षा। शिक्षा ही भारतीय नारी की बेड़ी को तोड़ेगी, शिक्षा ही उनकी आंखों के सामने विशाल आकाश और पाश्चात्य जगत के आलोकित स्वरूप का विराट रूप खोल देगी। उन्हें लगता था शिक्षा ही वो पंख है जिसके सहारे भारतीय नारी उड़ पाएगी। स्वतंत्र विचार और भय रहित स्वतंत्र जीवन, यही सपना देखा था स्वामी जी ने उनके लिए। इसलिए उन्होंने कहा,
2: पहले स्त्रियों को उचित शिक्षा दो, फिर उन्हें इतनी स्वतंत्रता दो कि वे अपने जीवन संबंधी निर्णय खुद ले सकें। उन्हें अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता दो, फिर वे तुम्हें खुद ही बताएंगी कि उनकी उन्नति के लिए कौन कौन से सुधार आवश्यक हैं। वे अपनी उन्नति का मार्ग खुद ही प्रशस्त करेंगी। ये भी जान लो कि आज की दुखद स्थिति को खत्म करने के लिए स्त्रियों और सामान्य जनता की स्थिति सुधारना जरूरी है, और इसके लिए आवश्यक है स्त्रियों और सामान्य जनता को शिक्षित करना। शिक्षा के महत्व को वे खुद समझें तथा शिक्षा प्राप्ति हेतु खुद ही आगे आएं, अन्यथा समाज का पतन निश्चित है और किसी भी मार्ग से समाज की उन्नति हो ही नहीं सकती। स्त्रियों की समस्याएं अनेक हैं और उनमें से कुछ समस्याएं तो गंभीर भी हैं, ये बात सत्य है, पर फिर भी सारी समस्याओं के निराकरण हेतु सिर्फ एक ही जादुई शब्द शिक्षा काफी होगा। शिक्षा के जादू से वे अपनी सभी समस्याओं से जल्द ही छुटकारा पा सकती हैं।
0: भारत में स्त्री शिक्षा के प्रसार का भार स्वामी जी ने सिस्टर निवेदिता को दिया था। निवेदिता भी अपने गुरु के आज्ञानुसार इसी मार्ग पर चल पड़ी थी। पथ आसान नहीं था, पर इस दुर्गम पथ पर वे अपने कुछ साथियों के साथ अग्रसर हो चली थी। उन्होंने स्वयं इस बारे में कहा है,
3: स्वामी जी को बहुत पहले ही पता चल गया था कि स्त्री शिक्षा के बिना समाज की उन्नति संभव ही नहीं। उनकी दृष्टि में अनेक विचारों में यह बात स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती थी कि इस समय की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता सिर्फ एक ही है, और वो है स्त्रियों को शिक्षित करने हेतु महिला शिक्षा शास्त्रियों की एक ऐसी सेना तैयार करना जो स्त्रियों की समस्याओं को समझेंगी, उनका निराकरण करेंगी। इसके अलावा उनका कार्य ही उनका घर होगा। धर्म के अलावा उनके ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। देश, जनता, गुरु और अपना कार्य, यही उनके लिए सब कुछ होगा।
0: ये कार्य उतना आसान नहीं था, पर स्कूल की शुरुआत हो ही गई।
1: स्त्रियों के लिए एक मठ की स्थापना करने की स्वामी जी की कल्पना उस समय की परिस्थिति के हिसाब से एक असाध्य कल्पना भले ही लगती हो, पर राष्ट्रीय आदर्शों के प्रेरित स्त्रियों के लिए एक शिक्षा संस्था का शुरू होना यानी बुरी शुरुआत नहीं थी। और यही कारण था कि स्वामी जी को निवेदिता के छोटे से स्कूल में अगाध रुचि थी, आस्था थी। वो स्कूल अर्थात उन्हें अपने सपने साकार करने का एक साधन लगता। स्कूल, स्त्री शिक्षा और पाठशाला में होने वाले कार्यों की योजना के संबंध में वे घंटों निवेदिता के साथ विचार विमर्श करते। भारतीय स्त्रियां और उनकी शिक्षा, इस विषय पर निवेदिता के जो विचार थे, इस विषय पर वो जो भी लेखन कार्य करती थीं, उन सब पर स्वामी जी के विचारों और उनकी कल्पनाओं की छाप स्पष्ट रूप से दिख पड़ती है।
0: निवेदिता का शैक्षणिक प्रयोग अवश्य ही सफल होगा, ये स्वामी जी को पूर्ण विश्वास था। इस प्रयोग की असफलता की उन्हें थोड़ी सी भी शंका नहीं थी, पर उसके लिए धन और कार्यकर्ता दोनों की आवश्यकता थी। उन्हें इस बारे में कोई आशा नहीं थी कि समाज की अविवाहित लड़कियां इस विषय में निवेदिता को कुछ मदद कर सकेंगी। अतः उनका मुख्य लक्ष्य था समाज की विधवा तथा निराश्रित अनाथ लड़कियों तथा स्त्रियों को शिक्षित करना और उनका कार्यकर्ता के रूप में इस कार्य के लिए उपयोग करना, ताकि निवेदिता को थोड़ी बहुत मदद मिल सके। पर इसके लिए जब तक निवेदिता अनाथ तथा विधवा स्त्रियों के लिए एक आश्रम शुरू नहीं कर लेती, तब तक इस कार्य के लिए कोई ठोस आधार नहीं मिल सकेगा। ऐसा स्वामी जी का निश्चित मत था।
1: स्वामी जी स्त्रियों को स्वनिर्भर बनाने की बात भी सोचते थे। गृह उद्योगों का एक केंद्र बेलूर मठ में स्थापित हो, यही स्वामी जी की इच्छा थी। जहां निवेदिता के स्कूल की छात्राएं अचार, चटनी, मुरब्बा आदि बनाएं एवं इस तरह की चीजें बनाकर बिक्री हेतु बाजार में भेजें। इस तरह का प्रस्ताव स्वामी जी ने निवेदिता के समक्ष रखा। स्वामी जी का यह प्रस्ताव निवेदिता को बहुत ही अधिक पसंद आया, क्योंकि वो सोचती थीं कि इस तरह के केंद्र स्थापना से लड़कियों की प्रगति और विकास के कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। उन्हें विभिन्न दिशाओं में प्रगति के क्षेत्र नजर आएंगे और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकेंगी।
0: स्वामी जी ने स्वयं को आमूल चूल सुधारक घोषित किया था, पर इस सुधार का आधार आध्यात्मिक मूल्य थे और वो विकास की प्रक्रिया में से होकर गुजरता। उन्होंने कहा, मैं जिसमें विश्वास करता हूँ वो है विकास। वो आम जनता के द्वारा लाया जाना था, वो बाहर से उन पर लादा नहीं जा सकता था। उन्होंने लिखा,
2: उन स्त्रियों में विचार पैदा करना होगा, उनकी चारों ओर दुनिया में क्या क्या हो रहा है इस संबंध में उनकी आंखें खोल देनी होंगी, बस फिर वे अपनी मुक्ति स्वयं सिद्ध कर लेंगी। हमें केवल रासायनिक सामग्रियों को इकट्ठा भर कर देना है, उसका निर्दिष्ट आकार प्राप्त करना, रवा बंद हो जाना तो प्राकृतिक नियमों से ही साधित होगा। हमारा कर्तव्य है उनमें भावों का संचार कर देना, बाकी वे स्वयं कर लेंगे।
0: उन्होंने और भी कहा, इस देश में पुरुष और स्त्रियों में इतना अंतर क्यों समझा जाता है, ये समझना कठिन है। वेदांत शास्त्र में तो कहा है, एक ही चित सत्ता सर्वभूतों में विद्यमान है।
1: इसी कारण उन्होंने महिलाओं के उच्चतर आध्यात्मिक प्रशिक्षण के विरोध में उठाई गई आवाज को सुनने से इनकार कर दिया। किस शास्त्र में ऐसी बात है कि स्त्रियां ज्ञान भक्ति की अधिकारिणी नहीं होंगी? इन सब आदर्श विदुषी स्त्रियों, मैत्रेयी, गार्गी आदि को जब उस समय आध्यात्म ज्ञान का अधिकार था, तब फिर आज की स्त्रियों को वो अधिकार क्यों ना रहेगा? एक बार जो हुआ है वो फिर अवश्य ही हो सकता है। इतिहास की पुनरावृत्ति हुआ करती है और इसीलिए वे चाहते थे कि हमारे देश की महिलाएं श्री शारदा देवी की प्रत्यक्ष प्रेरणा एवं देखरेख में त्याग एवं सेवा के राष्ट्रीय आदर्शों के अनुसार जीवन गठन करें।
0: आधुनिक भारत की महिलाएं जो प्रगति के नाम पर वस्तुतः अपने रूपांतरण पर चल पड़ी हैं, उनको चाहिए कि वे प्राचीन आदर्शों के आधार पर ही अपनी उन्नति एवं प्रगति करें और साथ ही नागरिक कार्यों के क्षेत्र में भी अपने प्रभाव का विस्तार करें। इसके फलस्वरूप उनका पारिवारिक जीवन सुखी होगा, नागरिक जीवन सहायक होगा और आध्यात्मिक जीवन समृद्ध होगा। साथ ही स्वामी जी का ये आदेश भी स्मरण रखना होगा,
2: इस देश की नारियों को वही बात कहूंगा जो पुरुषों से कहता हूं, भारत में विश्वास करो और भारतीय धर्म में विश्वास करो, शक्तिशाली बनो, आशावान बनो और संकोच छोड़ो। और याद रखो कि यदि हम बाहर से कोई वस्तु लेते हैं तो संसार की किसी अन्य जाति की तुलना में भारतीयों के पास उसके बदले में देने को अनंत

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: तो ये था कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। आपने ट्यून किया अपने रेडियो सेट पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए।
1: ये दुनिया 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। ये मेरा इंडिया, देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: साहस की बुलंद शुरुआत से लेकर आसमान की असीम ऊंचाइयों तक 8 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस।
3: वर्ष 1947-48, 1965 और 1971 के ऐतिहासिक युद्धों से लेकर ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना ने हर पल कर दिखाया है अदम्य पराक्रम, अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोच्च बलिदान।
2: तो मध्य प्रदेश के जाबाज युवाओं, क्या आप तैयार हैं? बादलों को चीरकर देश का मान बढ़ाने के लिए तो बनिए अग्निवीर वायु, हासिल कीजिए वो मुकाम जो जिंदगी भर की पहचान बन जाए और गर्व से कीजिए भारत माँ की सेवा।
3: भर्ती और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए
2: 15 एयरमैन चयन केंद्र के इंस्टाग्राम पेज 15ASC_भोपाल और आधिकारिक वेबसाइट IAFRecruitment.edcil.co.in पर विजिट करें।
3: नभास प्रशम दीप्तम।
2: जय हिंद।
0: अभी आप सुन रहे थे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हमारी आज की सभा यहीं समाप्त होती है। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय हिंद।